वशिष्ठाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सौतान सुंदर कांड श्लोक शांतम शाश्वतय प्रमेयमनघम

रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंतिर दयति भाई। अब लगी मोई पर खेव तुम भाई सही दुखन मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी हुई ही काज मोई हर्ष विशेखी। कई नाई सबन को माता चलियो हर्ष ये धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उतायु पर। बार बार रघुवीर सवारी करके।

चढ़ी लंका देखी कही न जाय अति दुर्ग विसेखी अति उतंग जल निचो पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मन कर सुंदर आयत नागनौ चौ हट हट सुबट बीती चार पूर्व विधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरु थन कोग ने बहु रूप निश्चर जूते अति बल सेन वर्णत नहीं बने बल भाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहूं माल देह विशाल शैल समान अति बल घर

नगर करो पैसार मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिर नर हरी नाम लंकिनी एक चरी सुख जल सि मोहिनी जाने नहीं मर मो सट मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुटका एक महाकनी रुतिर्भवधरणी धनमनी उन संभारी उठी सो लंका जोरी पान कर विनय ससंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना तरत विरंच कहा मोई चीना विकल होस तय कपि के मारे तब

கரட சுதாரிப்பு கரைமை தாயி கோபத சிந்து அல்லசி துலாயி கருட சுமேரே ரேணு சமதாயி ராம கிருபா கரிச்சித வாஜாயி அதலகு ரூப தரோ ஹனுமானா பைட்டா நகர் சுமிர் பகவானா மந்திர மந்திர பிரதி கர சோதா தேகே ஜெய தய அக்னி துஜோதா கயவு தசானல் மந்திர மாஹி அதி விசித்திர கை ஜாத சுனாயி சயனகே தேகா கபிதேஹி மந்திர மௌன தேக வை தேஹி பவன ஏக முனி தீக சுஹாவா ஹரி மந்திர தஹ பின்ன பனாவா ராமாயுதி அங்கித கிரஹ சோபா பர்ண ஜாயி நவ துளசி கா பிரந்த தஹா தேக ஹர்ஷ கபிராயி लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा हनम उतरक करे कपिलादा ते ही समय विभीषण जागा राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसन हट करि हो पहचानी साधु ते हो न कार जहानी विप्र रूप दरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उड़ते आए हरि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा बुझाई की तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई करण बड़ भागी अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुन ग्राम सुनौ पवन सुत रहनी हमारी जिम दसन मौ जीव बिचारी ताक कबो मोई जानिए ना था करि है कृपा भानुकुल ना था आमस्तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोई भाव रोस हनुमंता बिन और कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्श घट दीना।

समय दम सखा सुनो मोह पर रघुवीर इनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर जानत हुआ स्वामी विसारी फिर तकाई न होई दुखारी ऐ विद कहते राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा उन सब कथा विभीषण कही जय विद जनक सुदाता रही अब हनुमंत कहा सुनि बाता देखी चहु दान की माता जगत विभीषण सकल सुनाई गले भवन सुध विदा कराई हर सोई रूप गयो पुन तैवा बने अशोक सीता रह जयवा देख मन मन कीन प्रणामा बैठे बीत जात निस जामा ग्रस्त शीश जटा एक बैनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी

दो दरिया दी सवरानी तवे चरी करो पन मोरा एक बार भी लुक ममियोरा रण धरी उठ के तवे दे सुमरिय वधपति परम सने सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा कब हो किनल नी करे विकासा असमन समझ के जान की खल सुध नहीं रघुवीर बाण की सट सोने हरियाने मोही अदम नीलज लाज नहीं तो ही आप ही सुन कर ज्योत सम राम ही बान समान परश वचन सुनिकाड़ियसी बोला अति किसियान सीता ते मम गति अपमाना कटियो तो सिर कटिन कृपाना आहित शब्द मानु मम वाणी समक होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रोभुज कर कर समद सकंदर सोभुज कंठ की तवियस गोरा सुनसठ अस्प्रमाण पन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरे अनल संजातम शीतल निषद वैस वर धारा के सीता हरु मम दुख बारा सुनत वचन पुनि मारन धावा मैथनिया कई नीति बुझावा कैसी सकल निश्चिन्न बोला

चरण रत निपुण विवेका सपने बोल सुनाए से सपना सीता ही सेव करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना समारी खरे आरूढ़ नगंद सीसा मंडित सिर खंडित भुज वीसा ऐ विद सोद छिंद से जाई लंका मनो विभीषण पाई अगर फिरी रघुवीर दुहाई तब्रो सीता बोली बठाई ऐ सपना मैं कहूँ पुकारी हुई सत्य गए दिल चारी आसुभ जन सुन दे सब

सत्य करे मम प्रीत सयानी सुने को श्रवण सूल संबानी सुनत बचन पद कही समझाए सि प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए सि जिस नाल मिल सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी ऐसी ता विधि बाप ते कूला मिले न पावक मिटे न सूला देखिए ते प्रकट गगन अंगारा अपनि नयावते कौतारा पावक में सही सवत नया गी मानो मोहि जान हत भागी सुने विनय मम बिटव अशोका सत्य नाम करो हर मम सोका नूतन किसल अनल समाना दे अग्नि जन करई निदाना देख परम विरहा कुल सीता सोचन कपि कल्प संबीता कब कर हृदय विचार तीन मुद्रिका डार तब जन्म सुख अंगार दीन हर्ष कुट कर गए हु तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यदि सुंदर चकित चिदव मुदरी पहचानी हर्ष विषा दे गए खुलानी जीत को सके दे रघुराई माया ते अस नहीं रच जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वर नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई श्रवणा मज्जे कथा सुहाई कई सो प्रकट होत किर भाई तब हनुमंत निकट चले गए हु फिर बैठी वन विस्मय भयो राम दूत मैं मात जानकी सत्य जपत करुणा निदान की है मुद्रिका मात मैं आनी दीन राम तुम कोई सही दानी नरवान रहे संग कहो कैसे कही कथा भई संगत जैसे सबके वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास गाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास हर जन जान प्रीति अति गाड़ी सजल नयन पुल का बलिबाड़ी घोड़त फिर चल दि हनुमाना भयो तात मोह कहूँ जल जाना अब कहो कुशल जाऊँ बलिहारी अनुसहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कब के हेत धरी निठुराई सहजवान सेवक सुखदायक कबो के सुरत करत रघुनायक कबो नयन मम शीतल ताता हुई है निरक्षा मम मधुगाता चन नयाव नयन भरे बारी आहा नाथ हो निपट बिसारी देख परम विरहा कुल सीता बोला कवि मधु भजन विनीता मात कुशल प्रभु अनुसमेता तव दुख दुखी सुख पान के जन जननी मानो जी ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपद कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कही कवि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर कहो राम भी योग तव सीता मोको सकल भये विपरीता अवतर किसल मनो करसानो काल निशासम निस्स शिवानु कबल विपिन कंद बन सरसा बारे तपल तेल जन बरसा जय हित रहे करत ते पीरा उरक श्वास संत्रवि सवीरा कहो ते कछु दुखट होई का कहो ये जान न कोई अत प्रेम करो मम यर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रह तोई पाई जान प्रीति रस इतने माई प्रभु संदेश सुरत बैठे

रघुवीर ओत सुध पाई करते नई विलंब रघुराई राम बान रवि कुए जानकी तंबरूत कौ जात दानकी अवय मात मैं जाऊं लवाई प्रभुआ स्ने राम दुहाई अचुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित थे हई रघुवीरा शरमार तो ले जय है त्रिपुर नारदा दिज सु गई है सुत कवि सब तुम्हें समाना जात उधान अति बट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर प्रकट कीन निर्देहा कनक भूधरा का शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब हो पुन लग रूप पवन सुत लय हो सुन माता सा का मृग नई बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाय परम लघु व्याल मन संतोष सुनत कवि बाणी भक्ति प्रताप तेज बलसानी आशिष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निसुद हो करो बहुत रघुनायक जो करो कृपा प्रभु सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार ना स्पर सीसा भोला वचन जोर कर कीसा अब कत कत भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनो मातमो यस्य भूखा लागि देख सुंदर फल रूखा सुर सुत करे विपिन रखवारी परम सुभद्र नीचर भारी दिन कर वह माता मोई नाही जो तुम सुख मानो मन माई देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ चले ना सिर पैठो बागा फल खा स्तर तोरे लागा रहे तहां बहु भट रखवारे कछु मारस कछु जाय पुकारे नात एक आवा कवि भारी दैय सुख बाटिका उजारी हय स्फलिय रु बिटव उबारे रक्षक मर्द मर्द मई

बलवाना।

मर्दैन जेंगा तिनैन पाद ताहि सन बाजा भिरे जुगल मानो गज राजा मटका मार चढ़ा तुर जाई ताहि एक चन मुरछा आई उठे बहोर की रसिवो माया जीति न जाई प्रभंजन छाया ब्रह्म हस्त से साधा अभिमन कीन विचार लो न ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटय पार ब्रह्म बाण कपि कौते मारा परते उबार कटुक संहारा हे देखा कपि मूर्छित भय हो नाग पास बांधे सिले गए हो रास नाम जप सुनो भवानी भवंदन काटे नर ज्ञानी पास दूत की बंतर वावा प्रोकार जिले कपि बनावा कपि बंदन सुन निश्चर धाये कौतुक लाग सभा सब आए असुमुख सभा देख कपि जाई कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई कर जोरे सुरज से विनीता वृत्ति विलोक सकल सविता देख प्रताप न कपि मन शंका जिमे गण मन करुण असंका कपि विलोकित सानन बेसाखी दुर्वाद सुत पद सुरत कीन पुनी उपजा हृदय विषाद है लंकेश कवंत की साखी केवल गाली बन की सा दो श्रवण सुने नहीं मोही।

आयो पल प्रभु लागी भूखा कम स्वभाव ते तोरे रूखा सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे मोहिन कछु बांधे कहे लाजा कीन कहूं निज प्रभु कर गाजा विनती करूं चोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन देखूं तुम निज कुले बिचारी भ्रम तज भजो भगत बहारी जाके डरे ति काल डेराई सो सिर असुर चरा चर खाई आसो बैर कदो नहीं की जय मोरे कहे जान की दी जय प्रणत बाल रघु नायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राख है तवे अपराध विसार रामचरण पंकज उर धर लंका अचल राज तुम करहु शुभलस्त जसु विमल भयंका ते सज मौजन होई कलंका राम नाम बिन गिरान सोहा देख विचार त्याग मद मोहा बसन हीन नहीं सो सुरारी सब भूषण भूषित भर नारी राम विमुख संपति प्रभु थाई जाई रही पाए बिन पाई सजल मूल जिन सरतन नाही वर्ष गए पुनि तबई सुखाई सुंदस कंठ कहो पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकै न राख राम कर द्रोही मोह मूल बोसूल प्रद त्यागो तवि अभिमान भजौ राम रघु नायक कृपा सिंधु भगवान जद भी कही कवि अतिहित वाणी भक्ति विवेक विरत सानी बोला भी असि महा अभिमानी मिला हमें कवि गुर बड़ ज्ञानी नत्तु निकट आई कल तो ही लाग सी अदम सिखावन मोही उल्टा हुई ही कही हनुमाना मतवम तोर प्रकट मैं जाना सुन कवि वचन बहुत खिसियाना बेगिन हरो मोड़ कर प्राणा सुनत निसाचर मारण धाये सजवन सहित विभीषण आए नाई सीज कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिये दूता आन दंड कछु करी गुसाई सब ही कहा मंत्र बलवाई सुनत पे सि बोला दस कंदर अंग

जाओ मैं तिनके ब्रोताई। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। गातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सुई रचना। रहान नगर बसन गतेला, बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। कौतुक आए पुरवासी, मारे चरण करे मोहासी। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर पेर पुनि पूछ पुजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। विभुक चढ़ो कभी कनक अटारी, भई सभी तन साचर नारी। हर प्रेरित दे अवसर, चले मरत उन चास। अट्टहास करी कर जा, कभी बड़ लागे आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। जरई नगर बालोक बिहाला, जबट लबट वो कोटि कराना। आत्मा तहा सुनिए पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। हम जो काये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर ये नाथ।

मजारी पूछ बुझाई खोई समय धरी लग रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर मात मोई दी जय कछु चीना जैसे रघुनायक मोई दीना चूड़ामणि उतार तब दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो कहो ताते से मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरण कामा दीन दयाल विदस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी तात सुख सुत कथा सुनायो बाण प्रताप प्रभु समझायो मास दिवस मौनाथ नयावा दोपन मोई जीत नहीं पावा ओ कपि के विधि राखो प्राणा तुम हो तात कहते अब जाना हो ही देख शीतल भई छाती पुन मोदिन को सोई दिन राती कनक सुत समझाई करी बहु विध धीर दीन चरण कमल सिर नाई कपी गवर राम पाकीन चरत महातुनि कर जैसे भारी गर्भ सबई सुनि निश्चर भारी नाग सिंधु ऐ पारई आवा शब्द किलकिला सबई सुनावा हर्षे सब बिलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिंदव जाना ओ प्रसन्न तन तेज विराजा कीन श्री राम चंद्र कर काजा मिले सकल यति भय सुखारी तलपद मीन पाव जे भारी चले हर्ष रघुनायक पासा पूछत कैत नवल इतिहासा सौ मधुवन भीतर सब आए अंगद सम्मद मधु बल गाए रखवारे चौ भर्जन लागे मुष्टि प्रहार अनस जाई पुकारी ते सब बने उजार जुबराज सुन सुग्रीव हर्ष कवि करियाए प्रभु काज जौ न होत सीता सुत पाई मधुबन के फल सकई की खाई ए विधि मन विचार कर राजा आए गयो कब कबिन समाजा आई सबन्ना वापस सीसा मिलु सबन अति प्रेम कपीसा ऊंची कुशल कुशल पद देखी राम कर बाबा काज विशेखी नाथ काज की न्यो हनुमाना राखे सकल कबिन के प्राणा उन सुग्रीव बहुरते मिले हो कबिन सहित रघुपति पै चले हो राम कबिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेखा फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कबि चलन जाए।

भाई सदा शुभ कुशल निरंतर स्वर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजय भी नई गुण सागर तासु जत्रई लोक उजागर प्रभु की कृपा वह सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू नाथ तो अंशुद कीन जो करनी से सो मुख न जाय सो बरनी अवंतन के चरित सुहाय जाम बंत रघुपति सुनाये सुनत कृपा निधि मनियति भाए पुनि हनुमान ऋषि लाए भाऊ तात की बात जानकी रहत करत रक्षा सुपान।

प्राण करे हटिबादा फिर यज्ञ तन तूल समीरा श्वास जरे छन माय शरीरा नयन सवे जल निहित लागी जरे न पाव देह विरहाकी सीता के यति विपति विशाला विनय कहे बल दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप संभीत मेघ चले प्रभु आनी है भुजबल खल दल जीत सुन सीता दुख प्रभु सुख आई ना भरिया जल राजीव नैना चन काय मन मंगत जाही सपने बूझ विपत की ताही कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई एतिक बात प्रभु जातु धान की कोई जीत यानी बिजान की सुन कपि तो समानी उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी अति उपकार करे का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तो उरिण मैं नाही देखो कर विचार मन माही पुन पुन कपि चित सुर काता लोचन नीर पुलक यति गाता सुन प्रभु वचन बिलोक मुख गात हर्ष हनुमंत चरण पर प्रेमा कुल त्राई त्राई भगवंत बार बार प्रभु चढ़े उठावा प्रेम मगन ते उठव न भावा प्रभु कर पंकज कब कैसी सा सुमिर सुध सा मगन गौरी सा सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा भव कपि रावण पालित लंका के विदि दहेव दुर्गे अति भंगा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगति अनुमाना शाखा मृके बड़ मन स्वाई शाखा ते शाखा पर जाई नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चरगन विधि विपिन उजारा सोसव तो प्रताप रघुराई नाथ नगज मोरी प्रभु ताई ताको प्रभु कुछ यगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बड़वा नल ही जार सके गल तूल नाथ भगत यदि सुख दायनी देव कृपा कर अन पायनी सुन प्रभु परम सरल कपि वाणी एवं

रघुपति कपि प्रति बुलावा, कहा चले कर करो बनावा। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरंत कपिन कहो आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु वर्षी, नवते भवन चले सुर हर्षी। अभिपति वेग बुलाए आए जूतब जूत, नाना वर्णिय तुलवल पानर बालू बरूत। द्रौपद पंकज नावै सीसा, गर्जे बालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नैना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भयो

जान कई देई जोई जोई सगुर जान की होई अजगुन भयो रावण ही सोई चला कटुको भर नहीं पारा कर जई बानर भालू अपारा रखिया विदगिरी पाद बदारी चले गगन में इच्छा चारी गेरी नाद बालू कभी कर ही डगमगाई दिग चिकर शिकरा ही दिग्गज डोल मई गिरी लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर।

रसायन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सोख में सोहई रघुवीर रुचिर प्रयान प्रसिद्ध जान परम सुहावनी जन कमट कर पर सर्प राज सुलिखते हुए चल पावनी कैविध जायक पान दी उतरे सागर तीर जैतै लागे खान फल बालू पुलक विभीर वहां साचर रही ससंका जपते जार गय कपि लंका निज निग्रह सब करे बिचारा नी निश्चर पुल के रुबारा रासुदूत बल भरने न जाई ते आए पुर कवन बलाई दूतन सन सुनि गुरजन बानी मंदोदरी अधिक गुलानी जैसे जोर कर पद पद लागी बोली वचन नीति रस भागी अंत कर शहर सन परि हरियो मोर का अति हित हे धरियो समझत जासुदूत कई करनी गर्भ तवई रजनी चर धरनी आसुनार ने सचिव बुलाई पटवो कंद जगहों बलाई सब कुल कमल विपिन दुख दाई सीता सीत ने सांस में आई सुनौ नाथ सीता बिन दीन इतना तुम्हार शंभु अज कीने राम बान आई गण सरस निकर निसाचर भेक जब ले गसन तब लगी जतन करो तजे श्रवण सुनी चढ़ता करि बानी बेसा जगत विदि अभिमानी सबे सुभाव नारि कर साचा मंगल मऊ में बनी अति काचा जो आवे पर कट कट काई जिए बिचारे निश्चर खाई हम पई लोक बजाकी त्रासा तासुनार सबित बढ़हासा हसकई व्यसिताई उर लाई चलो सवा ममता दिखाई मंदोदर हृदय कर चिंता भयो कंत पर विद विपरीता बैठो सवा कबर सिपाही सिंधु बार सेना सब आई मुझे सचिव जित मत कहु ते सभा से मष्ट करी रहू जिते सुरास तो शमनाई नरवा नर के लिखे माई सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले बै आस राज धर्म धर तीन कर होई बे गई नाथ सुई रावण को बनी सहाई अस्तुति करे सुनाई सुनाई अवसर जान भीषण आवा प्राता करण शीश दे लावा मन सिर नाई बैठ निज आसन भूला वजन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मई वाता मतिन रूप कहो हिताता जो आपन चाहे कल्याण सुज सुमत सुभग सुख नाना सो पर नार ललार गुसाई तजो चोत के चंद्र किनाई चौदह भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई गुण सागर

सरतात मालवंत अति सचिव सयाना दासो वचन सुनी अति सुखमाना आते नुस्तव नीति भूषण सोर धरो जो कहत विभीषण निपोत कर सकेट सड़ दो दूरी न करो यहाँ को मालवंत के गयो बहुरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी सुमत कुमत सब के उर रही नाथ पुराण निगम सकही जहाँ सुमत ता संपद नाना जहाँ कुमत ता विपत निवाना कवि रुकुमति वसी विपरीता

चरण प्रहारा अनुज गए पद बारे बारा उमा संत के बड़ाई मंत कर जो करे भलाई तुम पिद सरस भले मैं मारा राम बजे इतना तुम्हारा सचिव संग लय नौ पद गए हो सबई सुनाई कहते सबय हो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी मैं रघुवीर शरणे अब जाऊं दे जन खोरी अस्कई चलावे भीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभिन्दर वही अभागा चले हर्ष रघु नायक पाही करत मनोरथ भव मन माही देखियो जाई चरण जल जाता अरुण बदन सेवक सुखदाता हे पद परस तरी रिस नारी दंडक कानन पावन कारी हे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाए हरिवर सर सरोज पद ते अहो भाग मैं देखियो ते जन पायन के पाद कुनी भरत रहे मन लाए हे पद आज विलोक हो इन्ने ननिय बिजाए हे विधि करत सप्रेम बिचारा आयो शबद सिंधु ए पारा कपिन विभीषण आवत देखा जाना कौर दूत विशेखा समाचार सब ताई सुनाए है सुख जीव सुनो रघुराई आवा मिलंद सानन भाई है प्रोस का पूजिए कहा कहे कपीस सुनो नर नाहा जाने न जाए निसाचर माया काम रूप के कारण आवा भेद हमार लेन सटियावा राखिए बांध मोहि स्वभावा अकानिक तुम नीक बिचारी मम पर शरणागत बहारी सुन प्रभु वचन हर्ष अनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना शरणागत गौ जे तजही निज अनित अनुमान ते नर पावर पाप मय तिने बिलोक दहान कोट विप्र बद लागे जाओ आए शरण तजो नहीं ताहो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगनासो तब ही पापवंत कर सह स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख भाव किसोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा भेद लेन बटवा दस सीसा तब न कुछ मैं हानि कपीसा जग मोह सका निसाचर जेते लक्ष्मण हनी निमिष माते ते जो सभी ते आवा सिरु नाही रखियो ताई प्राण के नाही उभय भांति ते आनी है हसके कृपा निकेत जय कृपाल कई कपि चले अंगद हनु समेत सादर ते आगे करिवानर चले जहां रघुपति करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता नैना नंद दान के दाता गौरी राम छवि धाम बिलोकी रहु टटक एक पल रोकी कुछ पलम कंजारुण लोचन श्यामल गाद प्रणत भय मोचन सिंध कंदे आयत उर सुहान नियमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित यति गाता मन धर धीर कहो विधवाता नाद दसानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा सदा उलूख तम पर ने श्रवण सुज सुनी आयो प्रोभंजन भवीर ताहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर अस्कै करत दंडवत देखा तुरते उठे प्रभु हर्ष विशेखा दीन वचन सुन प्रभु मन बावा भुज विशाल गई हृदय लगावा अनुसहित मिल टिक बैठारी भोले वचन भगत बहारी अवलंके सहित परिवारा कुशल कुटा हर बास तुम्हारा कल मंडली बसो दिन राति सखा धर्म निभै के भांति मैं जानो तुम्हारी सब रीति अतनय निपुण भावे अनीति परबल बास नरक करता था दुष्ट संग जन देई विधाता अपते कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन दाया तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने मन विश्राम जब लगे वेतन राम कहूं सोक धाम तज काम तब लगे हृदय बसत कल नाना लोभ मोह मच्छर मद नाना जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिबा था ममता तरुण तमी दियारी राग देश ओ लुक सुकारी तब लगे बसत जीव मन माई जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाई अव मैं कुशल मिटे वह भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर्यन फूला ताहि न व्याप्ति विर बल सूला मैं निश्चर अति अदम स्वभाव सुभ आचरण की नहीं काहू ना स्वरूप मुनि ध्यान न आवा ते प्रभु हर्ष हृदय मोहिला अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखौ नयन विरंज शिव शिव जुगल पद कंज सुनो सखा निज कहौ स्वभाव जान बुसुंड संभु गिर जाओ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबे शरण तक मोही अजमद मोह कपट छल नाना करौ सद्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत तारा तंदन भवन सुरत परिवारा सबके ममता पाक बटोरी मम पद मन बांध पर डोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मनवाई अस जन्म उर्वस कैसे लोभी हृदय बसे तन जैसे तुम सारी संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन्य होरे सगुण उपासक पर हित नृत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम सुन लंके सकल गुण तोरे

में अपारा स्वरोदय सचराचर स्वामी भरतपाल उर अंतर जामी उर कचपतम वासना रही द्रौपद पीत सरि सोबही अब कृपाल निज भक्ति भावनी देव सदा शिव मन भावनी एव मस्तु के प्रवरण धीरा मांगा तुर सिंधु कर नीरा जद भी सका तब इच्छा नाही मोर दरस मोह जग माही अस्कई राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नव भई।

नाथ, स्वयं संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस्त्रोचाड़ जय जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निजन जान पाई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। गुण सर्वज्ञ सर्व वर वासी, सर्व रूप सवरे।

ऐ लंके सुनो रघुनायक कोट सिंधु सो शक्तव सायक तदवि तदव नीति सगाई विनय करिय सागर सन जाई प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलद कहीं उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार सका कही तुम नीकि उपाय करिय दैव जो होय सहाय मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा ना दैव कर कवन भरोसा सोशे सिंधु करिय मन रोसा आदर मन कहो एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा सुरत बेसी बोली रघुवीरा ऐसे ही करम धरो मन धीरा अस्कै प्रभु जी समझाई सिंधु समीप गए रघुराई अदम प्रणाम की सुरनाई बैठे पुण तन टर्ब टसाई जबई विभीषण

प्रकट बखाने राम स्वभाव अत्स प्रेम का विसर तुराओ रिपके दूत कपिन तब जाने सकल बांध कपिस्पयाने जय सुग्रीव सुनौ सो बानर अंग भंग करि पटवो निश्चर सुन सुग्रीव वचन कपि धाये बांध कटुक चौपास फिराए बहु प्रकार मारण कपि लागे दीन पुकार तद बिना त्यागे जो हमार हर नासा काना तई कौशला दीस कयाना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाग हस्तुर छुड़ाए रावण कर दी जो ये पाती लक्ष्मण बचन बाच कुल खाती कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उतार सीता देव मिलो नता आवा काल तुम्हार पुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनद गुण गाथा कहते राम जस लंका आए रावण चरण शीश त्रिनाए व्यसित सानन पूछी बाता कैसे न सुख आपन कुशला था उनको खबर विभीषण खेरी जाहि मृत्यु आई न तेरी करत राज लंका सड़ त्यागी होए जीव कर कीटे भागी उनको बालु बीज कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मदलचित सिंध बिचारा कब तप सिंह के बाद बहोरी जिनके हृदय ताजे तिमोरी।

सरमुख हर निसट सट रामवंत बलराज एक कभी सब सुग्रीव समाना इन सब कोटिन घने गुनाना राम कृपा त्रित बल तिन्ही तर समान त्रय लोक गिनही असमय सुना श्रवण दस कंदर पदुम अठारह दूत बंदर नाथ कटुकमा शोक विनाई जो न तो मई थी तई मन माही परम क्रोध मी जय सब हाता आयु सुपै न देह रघुनाथा सोशिय सिंधु सहित जस ब्याला पूरे नत पर कुदर विशाला मर्द गर्द मिल वै दस सीसा ऐसे वचन कहे सब कीसा तर जय सह असंका मानव संचहित है लंका सहज सूर कभी भालू सब पुन श्री प्रभु राम रावण काले कोट कहूं जीत सकई संग्राम राम तेज बल बुद्ध विपुलाई से सह सक सकई नगाई अक्सर एक सोत सत सागर तब राते पूछे नई नागर आसु बचन सुन सागर पाई मांगत बंद कर पामन माही सुनत बचन बेसा दस सीसा जो असिमत सहाय कत कीसा सहज वीर कर बचन दड़ाई सागर संठानी मचलाई मूढ़ वशाका कर सि बढ़ाई रिपल बुद्ध था मैं पाई सचि सवित विभीषण जाके विजय विभूत कहाँ जगता के सुन खल बचन दूतरे से बाड़ी समय विचार पत्रिका गाड़ी रामानुज दीनी है पापी नाथ बचाई जुड़ावो छाती वैसे बाम कर लीनी रावण सचिव बोल सट लाग बचावन बातन मने नि जाई सट जनघाल स्कूल कीस राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस पीतज मानी अनुज एव द्रौपद पंकज भंग होई कि राम सरानर खलकुल सहित पतंग सुनत सबै मन मुख मुसकाई कह दसान सबै सुनाई ओमे परा कर कहते कासा लघु तापस कर बात दिलासा है सुखनाथ सत्य संवाणी समझो छाड़ प्रगति मानी सुनो वचन मम परि हरि क्रोधा नाथ राम सन तजो विरोधा अति कोमल रघुवीर सुभाओ यद्यपि अकल लोक कर राओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही और अपराध न एक उधरही जनक सुता रघुनाथ दी जय एतन कहा मोर प्रभु की जय जब ते कहा देन भय दे चरण प्रहार कीन सड़ते ही नाई शरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहां हरि प्रणाम

लक्ष्मण बाण सरासन आनो सौ शोभार सिख सानो नट सर विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीत ममता रसन ज्ञान कहानी अति लोभे सन वृत्ति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा उसर बीज भय बल जथा अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा ये मत लक्ष्मण की मन भावा संधान सिख कराला उदी उदत उर जंतर ज्वाला मकर उरग जश कन्या कुलानी जरत जन दुजल नित तब जाने करक्तार भर मन गन्ना ना विप

गगन समीर अनल जड़ धरनी इनके नाद से जड़ करनी अप्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब गंथन गाए प्रभु आए देखे जस नही सोते मात रहे सुख लही प्रबल कीन मोह सिख दीनी मर जादा पुन कुमरी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ नाके अधिकारी प्रभु प्रताप मैं जाप सुखाई उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई प्रभु अज्ञा अपेल शुद्ध गाई करो सवेग जो तुम्हे सहाय सुरत विनीत वचन अति कह कृपाल मुझकाई जय विधि उतरे कवि कटकू आज तो कहो उपाई नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आसित भाई तनके परस के गिर बारे तरि है विल्दि प्रताप तुम्हारी मैं पुनि उर्धर प्रभु प्रदाई करि हों बल अनुमान सहाई जय विधि नाथ पयोद बंधाई है जय सुजस लोक त्यु गई है जय सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ नरख लय अग्रासी सुन कृपाल सागर मन पीरा तुरते हरि राम रण धीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निर्भयो सुखारी सकल चरित कई प्रभु सुनावा चरण बंदे पादोत्सिधामज भवन गवन्यो सिंधु श्री रघुपति है मत भायो ये चरित कलमल हर जथामति दास तुलसी गायो सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुनगना तई सकल आस भरोस गावै सुनै संतन सट मना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनै तितरै भव सिंधु बिना जलयान सियावर रामचंद्र की जय।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: स्वादी
3: फुके।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: पे, क्या बात है, इतना खूबसूरत सा गाना और इतनी रोमांटिक सी मॉर्निंग। आरजे अदनान लाइव है आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, हम आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर के आया है और किस तरह से आज का थॉट हमारे साथ चलने वाला है और साथ ही साथ किन किन बातों को शायद हम समझ पाते हैं, क्योंकि देखिए थॉट ही ऐसे होते हैं जो हमको काफ़ी कुछ समझा कर जाते हैं। एंड यस, ऑब्वियस सी बात है कि हम थॉट से बने होते हैं, क्योंकि कई महान लोगों ने भी कहा है कि हम जो बने होते हैं वो हमारे थॉट से बने होते हैं, हम वही होते हैं जो हमारे थॉट होते हैं, यानी हम जैसा जो सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। ये कोई शक की बात नहीं, ये सच में ऐसा होता है। एंड यस, फिलहाल अगर हम शायद अपने थॉट पे काम करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है, क्योंकि हम शायद खुद से ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों को बनाने लग जाते हैं। सो फिलहाल आज का यानी ट्यूसडे मॉर्निंग वाला थॉट क्या कह रहा है, क्या है आज का थॉट ऑफ द डे, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। यही तो है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे अहम बात यह है कि चलने की अपनी इच्छा को कभी ना खोए। जी हाँ, अपने चलने की इच्छा को कभी ना खोए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे अहम बात है और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। क्योंकि चलने की इच्छा जब और जिस पल ख़त्म होने लगती है, तब और उस पल वहीं से चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको चलने की जो इच्छा है वो रखना होगा। चलने की इच्छा ही हमको आगे तक लेके जाती है, ऐसा आज का थॉट बता रहा है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ में रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो हम उसको शायद यूज़ भी कर लेते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान भी देते हैं, पर ये चीज़ हमेशा हमारे जहन में रहनी ही चाहिए कि चलना ज़रूरी है, आगे बढ़ जाना ज़रूरी है। कितना भी, कैसा भी सिनारियो हो, क्या भी हो लाइफ में, क्यों? क्योंकि लाइफ तो चलती रहती है ना, लाइफ कभी नहीं रुकती है, वक्त तो बीतता ही रहेगा और वक्त से ही बनी है हमारी लाइफ। यानी हम वही होते हैं जो हमारे वक्त के साथ हमको करना होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अहम बात चलते रहने की जो इच्छा है, इसको कभी भी खोना नहीं होता है। क्योंकि सही होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो आगे प्रॉब्लम आती है, और जब आगे प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके आगे फिर सब सही चलता है। तो यानी ये एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन रुकना नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिससे कि हम रुक जाएं। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों और शायद लाखों ऐसे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग दौर के हैं, अलग अलग जगहों के हैं, जब हमें ये पता चला कि अगर फला शख्स रुक गया होता तो आज वो ना होता, या उसके बारे में हम पढ़ ना रहे होते हैं, या उसके बारे में हम डिस्कस ना कर रहे होते हैं। और ऐसे ना जाने कितने हज़ारों लोग होते हैं जो रुक जाते हैं और जिनकी कोई अपनी कहानी नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने चलने की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, उसको कभी ना खोना है आपको। तो चलते रहिए, क्योंकि चलते रहने से लाइफ के अलग अलग आयाम आपको नज़र आते हैं, आप बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहने से आपको राहें मिल ही जाती है। बहुत परेशानियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा रोका भी जाता है, बहुत कुछ हर्डल्स दिए जाते हैं, या इवन शायद आपको आपकी निगाह में गिराने की कोशिश भी की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, चलते रहना है दोस्त, क्योंकि ये एक ऐसी उम्मीद है जिसमें ज़िंदगी है। इसके अलावा अगर बहुत कुछ बुरा है या सब कुछ बुरा है तो भी यही एक चीज़ है जो हमको उन सारी चीज़ों से आगे, उससे परे ले जाती है। और यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का, यानी ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट बता रहा है कि सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अपने चलने की इच्छा को कभी भी नहीं खोना है। सो आई होप कि ये थॉट आप तक पहुंच ही गया होगा। चलिए, कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे ये भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी विशेस जो आती है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन की चैट पर, वो भी आप भेज सकते हैं, हम तक आ सकती है, क्योंकि आप उस पर जो कुछ लिखते हैं वो डायरेक्ट हम तक आता है। फिलहाल आरजे अदनान मॉर्निंग वाले शो में मौजूद हैं आपके साथ कोंडा एफएम पर।

0: सो बड़े ही खूबसूरत से सॉन्ग के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और अब वक्त है आपकी विशेस को पढ़ने का और चैट पर आए हुए आपके मैसेजेस को रीड करने का।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

मैसेजेस की शुरुआत करें तो बता दें कि भाई इरशाद जी सबसे पहले आए हैं स्टार्स के साथ, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद इरफान शाह ने लिखा है, जिस इंसान के अंदर संतोष है जग में वो सबसे अमीर इंसान है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यहाँ तो हमारे रेडियो स्टेशन में ही संतोष भैया हैं, अब बताइए हम कितने अमीर इंसान हुए। आशु मिश्र जी लखनऊ से लिखती हैं, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। वाह क्या बात है। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिखते हैं, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, घमंड किस बात का करना, मिट्टी के बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, रोते हुए आए थे रुलाते हुए चले जाओगे। वाह गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। हमारी सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। अनोखी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। और आशु जी लिखती हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया, थॉट अनोखी को भी अच्छा लगा, थैंक यू। सविता जी ने लिखा है कि मुझे चलना बहुत पसंद है सर, सुविचार मेरी जिंदगी से मिलता जुलता है। क्या बात है, चलिए जब जिंदगी से मिलती जुलती चीज़ें मिल जाती हैं तो ना जाने क्यों और भी ज़्यादा चीज़ें भाने लग जाती हैं, ये बहुत अपने आप में ही अच्छी बात है। एंड सोनिया तिवारी मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अब जो है वो हम चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, क्योंकि आपके मैसेजेस पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ हम वेलकम करते हैं फ्रीक्वेंसी से जिन लोगों ने ट्यून किया हुआ है उनका, जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और वो जो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं और मौजूद हैं लाइव शो में। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आइए इसी सुबह में, जब मिले जुली सुबह हो यानी बदली के साथ साथ धूप भी अब धीरे धीरे निकल रही हो, तो फिर हम चलते हैं एक ऐसे सॉन्ग की तरफ जो मिला जुला असर लेके आ रहा है, यानी अपने अंदर समेट के ला रहा है आज की सुबह। सुनिए।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: वैसे एक बात बतानी थी आपको, और बात जो है वो डेंगू से जुड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे डेंगू से जुड़ी हुई, अच्छा शायद हम रिपोर्ट बताया कि कितना डेंगू फैल रहा है या फिर किस तरह से डेंगू को लेकर के प्लानिंग की जा रही है, राइट? नहीं, फिलहाल इससे अलग हट करके है, क्योंकि बात ये है कि भारत में फिलहाल भारत को मिल गई है डेंगू की पहली वैक्सीन। जी हाँ, सो आखिर ये जो डेंगू जिसे हम बोलते हैं, इसकी वैक्सीन जो है ये किस तरह से भारत में आई और किस तरह से इस वैक्सीन का फ़ायदा आम जन को मिल सकता है, ये हम आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले आइए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद आपको बताते हैं कि आखिर इस वैक्सीन का ऐसा क्या सीन है जो इतना ज़्यादा विशेष है, जिसका काफ़ी महत्व है। क्यों, ये सब कुछ बताएंगे आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है वो अपडेट जिसको हम बताने के लिए बोले थे, यानी डेंगू के बारे में। सो डेंगू की आखिर क्या वैक्सीन मिली है और किस तरह से इसका फ़ायदा हम सबको मिल सकता है, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, RJ Khan.

सो देखिए, इंडिया में पहली बार जो है वो डेंगू वैक्सीन QDENGA को मंजूरी फ़िलहाल दे गई है। जी हाँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसे 4 से 60 साल की एज के लोगों के लिए परमिट किया है। और ये वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकार यानी सेरोटाइप्स से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है फिलहाल, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ है जो डेंगू की वैक्सीन है जिसको हम कह रहे हैं QDENGA, इसको मंजूरी मिली है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसे 4 से 60 साल की एज के लोगों के लिए परमिट किया है कि भाई उनको दिया जा सकता है। सो क्या ये वैक्सीन किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, ख़ास हो जाती है? सो जिनकी भी एज 4 साल से 60 साल की एज की है, लोगों के लिए उनको मंजूर किया गया है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि डेंगू टेस्ट कराए बिना भी इसको लगाई जा सकती है, यानी इसके लिए डेंगी पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप पहले भी इसको लगवा सकते हैं बिना डेंगू के टेस्ट को कराए। इसके अलावा डेंगू वायरस के चारों प्रकार से सुरक्षा देने में मदद भी करेगी। सो जो भी चार प्रकार होते हैं डेंगू के, उन चारों प्रकारों में सुरक्षा देने की मदद करेगी ऐसा बताया जा रहा है। और इसके बाद भारत में चूंकि डेंगू से बचाव की दिशा में ये एक कदम साबित हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं ये एक बेहतरी हो सकती है। अगर हम डेंगू की बात करें तो जिस तरह से केसेस डेंगू के आया करते हैं, और ये वैक्सीन अगर उस तरह से असर कर रही है, तो डेफिनेटली ये एक कदम हो सकता है डेंगू को लेकर के, क्योंकि डेंगू एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर हम अपने यहाँ की बात करें, जिस तरह से मच्छरों का प्रकोप होता है और मच्छरों से फैलने वाली बीमारी ये डेंगू होती है, जिसको लेकर के लगातार अपील अलग अलग मंचों से, अलग अलग माध्यमों से आप तक पहुँचाई जाती है, जिसमें हम साफ़ सफाई की बात करते हैं, पूरी बाह का कपड़ा पहनने की बात करते हैं, मच्छरदानी के इस्तेमाल की बात करते हैं, और इस तरह आसपास साफ़ सफाई रखने की बात का हम कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाते रहते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि भाई आपको भी अगर इस बारे में नहीं पता था तो आज पता चल गया है कि फ़िलहाल डेंगू की वैक्सीन भारत में भी इसको परमिशन दे दी गई है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी अहम साबित होगा अगर ये उस तरह वर्क करने लग गया। और जैसा कि हमने वैक्सीन का नाम बता दिया है, वो है QDENGA। सो ये वैक्सीन है जो कि डेंगू की है। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी। सो फिलहाल अच्छी बात है भाई, डेंगू से बचे रहिए, बाकी बीमारियों से बचे रहिए, लेकिन ना बचिए तो कुछ खूबसूरत से सॉन्ग से, जैसे कि अब ये आ रहा है आपके लिए आपके मॉर्निंग वाले शो में RJ अदनान के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। क्यों? क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: अरे सुना
2: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल स्टेनोग्राफर की जो है वैकेंसी आई हुई है राजस्थान में, और आइए चलते हैं आपको बता देते हैं कि इसमें किस तरह से कौन लोग एलिजिबल हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ है। सारी डिटेल्स इस जॉब वैकेंसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो आपको हम बता रहे हैं हाई कोर्ट वैकेंसी आई है 2026 में, 12th पास को मिलने वाली है ये नौकरी। सो राजस्थान हाई कोर्ट ने निकाली है स्टेनोग्राफर की भर्ती। राजस्थान में फ़िलहाल कोर्ट में जॉब करने का जो अगर कोई सोच रहा है उसके लिए एक मौका हो सकता है। एंड राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर में ज़िला न्यायालय में स्टेनोग्राफर के जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ में राज्य के विधिक प्राधिकरण और स्थायी लोक अदालतों में भी भर्ती के ज़रिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है पूरी की जाएगी। ऐसे में जिन भी कैंडिडेट्स को कोर्ट में नौकरी लेनी है वो 22 जुलाई से ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। जिला कोर्ट में हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और विधिक प्राधिकरण में सिर्फ हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी भरी जाएगी। 163 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें सिर्फ स्टेनोग्राफी टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और कम इंटरव्यू के ज़रिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको चुना जाएगा। सो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए योग्यता आखिर क्या चाहिए? सो इसके लिए देखिए, जो शैक्षणिक योग्यता यानी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12th आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से पास की हो। इसके अलावा कैंडिडेट को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी और राजस्थान की बोलियों का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो कैंडिडेट के पास में डुएक द्वारा आयोजित ओ लेवल सर्टिफिकेट या NCVT, SCVT, कोपा या DPCS सर्टिफिकेट, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या इसके बराबर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हासिल किया हो। 12th में अगर कंप्यूटर साइंस यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो तो वो भी मान्य होगा। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट्स जो हैं मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए जिससे वो अपने इस पद पर सौंपे गए काम को पूरा प्रॉपर कर पाए। अगर हम एज के क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 का हो, उससे ऊपर नहीं। एज लिमिट 1 जुलाई 2027 के बेस पर काउंट की जाएगी। वहीं ऊपरी उम्र में रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नियम के हिसाब से छूट है। सो आपको बता दिया है कि भाई कोर्ट जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर है और इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ज़िला न्यायालयों में और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतों में। पदों की जो संख्या है वो 163 है। आवेदन जो है वो 22 जुलाई से आप कर सकते हैं यानी कल से दोपहर 1 बजे के बाद से, और लास्ट डेट इसकी है 10 अगस्त 2026 यानी मंडे शाम 5 बजे तक। ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in। योग्यता है 12th पास प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया है, स्टेनोग्राफी या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। एंड जो परीक्षा का स्थान है वो जयपुर में सितंबर 2026 में एग्ज़ाम होने की संभावना है और इसकी डेट अलग से जो है मेंशन किए जाने की बात बताई गई है। सो ये इस तरह से है और ये भर्ती ज़िला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 नियमों के तहत पूरी की जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद चयनित अभ्यर्थियों के शुरू के 2 साल की जो अवधि है उसमें प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में काम करना होगा। इस दौरान उन्हें 23,700 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद कैंडिडेट को पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L10 के हिसाब से पे स्केल 33,800 से 1,06,700 तक प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया है किस तरह से, थोड़ा सा विस्तार से आपको बता सकते हैं। इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट में 80 शब्द प्रति मिनट लिखने होंगे। इसके लिए 6 मिनट का वक्त मिलेगा।
वहीं 50 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन और पैसेज को कंप्यूटर पर टाइप करने को मिलेगा। इसके 100 नंबर्स होंगे। वहीं हिंदी स्टेनोग्राफी में 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन और करनी होगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। सो कंप्यूटर टेस्ट में ग्रुप सी में कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 10-10 मिनट का स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। इसके भी 50-50 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू की बात करें तो वैकेंसी के संख्या के बराबर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई मार्क्स नहीं होगा। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि कितना लगेगा, सो जनरल ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को ₹750 आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं राजस्थान के ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹600, दिव्यांगजन, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को ₹450 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सो आवेदन का जो प्रोसेस है उसके शुरू होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन का लिंक ओपन हो जाएगा। साथ में ही फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसी के मुताबिक कैंडिडेट से फॉर्म भरने की अपेक्षा की जाएगी। सो यस, ये थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी की बात। आई होप आप तक पहुँच गई है और ज़रूर आपके काम की है। और अगर ऐसा कोई भी है जो कोर्ट में वर्क करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो आप उन तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वक्त है आपको एक बेहतरीन से सॉन्ग को सुनाने का। ये सुनते हैं मिलकर के ये खूबसूरत सा गाना आपके मॉर्निंग वाले शो में।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: फिलहाल दोस्ती की तो कई सारी मिसालें हमने अलग अलग स्टोरीज के जरिए आप तक पहुंचाई है, लेकिन आज भी ऐसी दो दोस्तों की मिसाल है जिन्होंने बड़ा ही अलग कारनामा कर दिखाया है। अब ये अलग में क्या है, अलग में तो बहुत ज़्यादा ही अलग है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इसरो को छोड़ करके शुरू किया अपना सफ़र और आज भारत के दो दोस्तों ने 8 साल की मेहनत के बाद अपना इंडिया का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, जानकर आपको भी ज़रा हैरानी हो रही होगी, तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन दो दोस्तों के बीच कि कहीं ना कहीं 8 साल की मेहनत के बाद अपना खुद का निजी ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता देते हैं शुरू से शुरुआत करके, और आपको बता दें कि हैदराबाद में मौजूद स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने 18 जुलाई को इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट

पर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सफलतापूर्वक हासिल की। लॉन्च पैड इसरो का था, लेकिन रॉकेट के डिज़ाइन, उसका निर्माण और मिशन का संचालन पूरी तरह जिम्मेदारी स्काई रूट एयरोस्पेस ने निभाई। सुबह से ऐतिहासिक सफलता के पीछे दो दोस्तों और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका की लगभग 8 साल की मेहनत है। साल 2018 में दोनों स्काई रूट एयरस्पेस की शुरुआत की थी। कंपनी के COO नागा भरत डाका ने कहा कि सालों की कड़ी मेहनत और पूरी टीम के डेडिकेशन का रिजल्ट आज हम सबके सामने है। वहीं पवन कुमार चंदना के हिसाब से उनकी पहली टेस्ट फ्लाइट भविष्य के मिशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा अवेलेबल कराएगी। सो इस मिशन को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि दुनिया में बहुत कम निजी कंपनीज अपनी पहली कोशिश में ऑर्बिटल मिशन सफल हो पाती हैं। इससे पहले स्काईरूट ने 2022 में विक्रम S सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जबकि विक्रम 1 ने अब भारत के निजी स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सो नागा भारत डाका ने अपने करियर की शुरुआत इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC से की थी। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ करके पवन कुमार चंदना के साथ स्काईरूट एयरस्पेस की स्थापना की। कंपनी को ग्रीनको ग्रुप, सोलर इंडस्ट्रीज, नीरज अरोड़ा, मुकेश बंसल और जो बाकी प्रमुख निवेशक हैं उनका भी समर्थन मिला। इसके बाद भारत के लिए ये अचीवमेंट सिर्फ एक सफल लॉन्चिंग नहीं बल्कि एक निजी स्पेस इंडस्ट्री की बढ़ती क्षमता, उसका नवाचार और वैश्विक लेवल पर कहीं ना कहीं ये मजबूती को दिखाता है। सो फिलहाल कहते हैं कि जब आप अपने पे करने पे आते हैं तो शायद किसी बड़े संस्थान के आप मोहताज नहीं होते, बल्कि आप खुद से मेहनत करते करते एक दिन वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। और जिस तरह से SpaceX एलन मस्क के बारे में दुनिया जानती है, उसी तरह से स्काईरूट जो कि भारत में ही लोग बना रहे हैं और इस संस्थान में निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया जा रहा जो कि सफलतापूर्वक हुआ भी, ये सच में अपने आप में काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा ख़ास बात है। आई होप कि आपको ये खबर काफ़ी सुनने के बाद अच्छी ज़रूर लगी होगी और लगना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही काफ़ी अलग बात है और इतना इजी भी नहीं होता है चीज़ों को कर पाना। मतलब 8 साल अगर पूरी टीम काम कर रही है और उसके बाद एक मिशन सफल हो जाए तो जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि ये जो पीछे की गई मेहनत है वो आखिर सफल हुई, और ये सेंस अगर है तो ये बहुत अच्छा सेंस होता है जब हमें खुद लगता है कि हमारी की गई मेहनत जो है वो सफल हुई है। तो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। आपने ट्यून किया हुआ है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और अब आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने के लिए, क्योंकि लगातार आप बने हुए हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में अपने मॉर्निंग जॉक RJ अदनान के साथ, और हम बहुत सारी बातें जो है वो आप तक पहुंचाते जा रहे हैं लगातार आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और अब कुछ ऐसे सॉन्ग्स, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप तक पहुंचानी है, आपसे करनी है। बस आपको भी बने रहना अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में अपने मॉर्निंग जॉक RJ अदनान के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्योंकि मौसम जिस तरह का औसम है फिलहाल उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। सो अच्छी बात है, मौसम का एन्जॉयमेंट तो चलते रहना चाहिए क्योंकि वैसे भी कुदरत जब मेहरबान होती है तो कुदरत के साथ खुश हो लेना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और अब ले चलते हैं आपको एक ऐसा सॉन्ग सुनाने जिसको आपने वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सुना है और आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। सोचिए कौन सा सॉन्ग हो सकता है। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, नहीं सुबह सुबह आपकी जहन की एक्सरसाइज हो जाएगी, जो कि अभी उतना भी नहीं करना है। बस आप कूल रहिए, चिल रहिए और सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो मॉर्निंग जॉक RJ अदनान के साथ।

0: अरे पूरा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट,
1: मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
2: और ये पहली बार कदमों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आप कम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक। आरजे अदनान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो पर।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो हम ऐसे कई सारी कहानियां लेकर आते हैं जो नॉर्मल कहानियों से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। फिलहाल चलिए आज हम आपको एक अलग ही कहानी की तरफ मोड़ देते हैं। दरअसल कुछ बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हम देखते तो हैं लेकिन उसके पीछे काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं, काफ़ी अलग बातें होती हैं जिनको शायद हमें पता ही नहीं होता और हम यूं इसको शायद इतना समझ ही नहीं पाते। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं उस दौर में बड़ी हुई वो महिला जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना आसान भी नहीं था और सालों बाद परंपराओं को तोड़ते हुए आज के ही दिन बनी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, दरअसल आज ही के दिन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल जी। सो जब प्रतिभा पाटिल बड़ी हो रही थी उस वक्त ज़्यादातर लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन लेना, हासिल करना एक बड़ा सपना हुआ करता था लेकिन उनके परिवार ने इन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का हौसला दिया। नंदगांव जैसे छोटे से कस्बे से निकली ये बेटी पढ़ाई करती गई और कानून की डिग्री हासिल की और समाज के लिए काम करने का रास्ता चुना। इन्होंने हमेशा महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता को ज़रूरी माना क्योंकि इनका यकीन था कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तभी समाज भी आगे बढ़ता है। फिर आया दौर 25 जुलाई 2007 का, वह ऐतिहासिक दिन जब प्रतिभा पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सो ये इनकी सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि उन लाखों भारतीय बेटियों की उम्मीद भी थी जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद भी उनके सपनों का हिस्सा हो सकता है। और प्रतिभा पाटिल की पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं रही बल्कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी बार बार महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी पर काफ़ी जोर दिया। उनका मानना था कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही इस देश के सशक्तिकरण का आधार है। यही सोच इनके सामाजिक कामों में और जो सार्वजनिक तौर पर दिए गए जिंदगी में बातें हैं उनमें भी यही नज़र आता है। सो देखिए ना, कई बार हमको पीछे की बिहाइंड स्टोरी नहीं पता होता है और हमको लगता है कि शायद जितना दिखा उतना ही है, बट ऐसा नहीं है। जितना दिखता है हर बार उतना नहीं होता है, कई बार उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। सो यस, ये हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के बारे में हमने बताया आपको, जिनके बारे में हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस दौर में, जिस दौर में लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाना एक सपना होता था, वो भी एक बड़ा सपना। एक तो होता है कि हम शायद सोचते हैं चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी लेकिन एक बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ को इस तरह से हासिल कर लिया जाए और ये बड़ी बात उस दौर में हुआ करती थी। और इसीलिए शायद आज प्रतिभा पाटिल जी के वक्त में, जब उनके टेन्योर में राष्ट्रपति रहते हुए कई फैसलों को देखेंगे तो उसमें महिलाओं के लिए किए गए काम भी आपको साफ नज़र आएंगे। और ये काम जो है उन्होंने खुद इन बातों को फील करते हुए किया क्योंकि उनको पता था कि वो खुद कैसे इस तरह से आई हैं और वो खुद कैसे आगे बढ़ी हुई हैं। तो जब इंसान ने खुद सारी चीज़ें देखी होती है तो उसको एक अंदाज़ा अच्छा रहता है और ये अंदाज़ा उनका भी था। फिलहाल चलिए, हमने जाना आज ही के दिन, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं नाम आया था प्रतिभा पाटिल जी का, और 25 जुलाई के दिन चूँकि उन्होंने शपथ ली थी तो आज हम उन्हीं की बातें आपको बता रहे थे। फिलहाल चलते हैं इस सॉन्ग को एंजॉय करने के लिए और वापस से आएंगे तो कुछ और बातें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं मॉर्निंग वाले शो में। आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में,
अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ओ छोटे, मेरे और मेरे जीव की शादी हो रही है।
5: वाओ!
6: अरे वाह, बधाई हो, बधाई। कब?
4: मेरी 16 जून को और उसकी 9 सितंबर को।

0: हाँ जी, तो सुन लेंगे इस गाने को भी, लेकिन उससे पहले चलिए आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। और वैसे भी आपके कुछ मैसेजेस जो बाद में आए हैं चैट बॉक्स पर, वो हम बता देते हैं कि आखिर कौन कौन बाद में जुड़ गया है 89.6 एफएम के मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा से।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो उसके बाद भी कई सारे मैसेजेस आए हैं। सोनिया तिवारी जी लिखती हैं कि आपका विचार अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया विचार, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉन्ग्स की तारीफ लगातार आपने की और आप झूम भी रहे हैं। प्रीति शुक्ले जी बहराइच से लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। सोनिया जी आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं दोपहर 3 से 4 कॉलर ट्यून गोंडा में, नंबर है 6693-316-429। अगर आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है सो हर दोपहर 3 से 4 और हर शुक्रवार 3 से 5 आता है 89.6 FM पर कॉलर ट्यून गोंडा, और शाम में आप सुन सकते हैं 7:45 से 9:30 तक फरमाइश आपके नाम से, यानी ये दो शो होते हैं जिसमें आपके गाने की फरमाइश ली जाती है। दोपहर में कॉलर ट्यून गोंडा में थ्रू कॉल और शाम में फरमाइश आपके नाम से थ्रू मैसेजेस चैट बॉक्स। सो इसके बाद धर्मेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है। नागेश्वर ने लिखा है, हर सुबह सूरज ही नहीं आपकी उम्मीद की एक किरण भी निकलती है, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी बात लिखी, थैंक यू सो मच नागेश्वर। एंड धर्मेंद्र जी लिखते हैं, सर जी हर जो है तभी मिलती है राह चलते लोगों को, इसमें कांटे भी चुभते हैं लेकिन एक नई उम्मीद दिल में उभर के आ जाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कमल नयन जी मौजूद है आरजे अदनान से, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड साथ ही साथ चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ करते हैं। अगला मैसेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है और क्या कुछ लिखा है ये भी हम लगातार आप तक पहुंचाते जा रहे हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस हमको मिल गए हैं और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारा प्यार आया है। सो यस, धर्मेंद्र जी लिखते हैं, सर जी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। धर्मेश त्रिपाठी जी लिखते हैं, आरजे अदनान से, गुड मॉर्निंग धर्मेश, आपका वेलकम करते हैं। और साथ ही लवली सिंह मौजूद हैं, आपने भी लिखा अदनान से हैप्पी सुबह और मैं खुश मिजाजी साथियों को सॉन्ग की पहली सुबह में, क्या बात है, थैंक यू सो मच लवली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम है मॉर्निंग वाले शो में। और सविता जी को कहानी बहुत पसंद आई, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की, हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात जो हमने बताई, थैंक यू सो मच। ताबिश खान मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू ताबिश, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और सविता जी ने कहा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आज के शो में, थैंक यू सो मच। उद्दालक शर्मा मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, आशु मिश्र जी आपका भी स्वागत है, उस्मान खान आप भी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। अब चूंकि आज एक बात मुझे लगी, पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के इस वक्त काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जिस पर एक कविता मुझे मिली हुई है और वो कविता आइए आप तक हम पहुंचा देते हैं। दरअसल कविता कह रही है कि सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई घर वालों के लिए, कोई समाज को दिखाने के लिए, बहुत कम लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं किताबों का काम सिर्फ रोजगार देना नहीं, सोच पैदा करना भी था, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सफल इंसान बनाना नहीं, एक बेहतर इंसान बनाना भी था। ये कविता मुझे लगी कि आज के सिनारियों में शायद फिट बैठती है कि जिस एजुकेशन को हम समझते हैं कि ये हमारे रोजगार के लिए, हमारे करियर के लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमको एक सही इंसान और एक सोच जो हम खुद की बना सके, यानी हमेशा हम बिलीव करते रहें ये अलग बात है, हम अपनी सोच बना सके ये ज़रूरी है। कैसी लगी कविता, कैसा लगा ये शो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी भी हम जा नहीं रहे हैं, कल आपसे मुलाकात होगी वेंसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में, स्टे ट्यून्ड।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? क्या आप ढूंढ रहे

0: एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोना में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी समता गांव की गूंज का नया एपिसोड लेके आई हूँ फिर से, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर मधुर आवाज में गीतों की माला पिरोई गई है। और इस बार हमने गांव की गूंज को अवधि के रूप में दिया है।
4: उठो श्वेता, समता, तुम दोनों क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? उठो, तुरंत उठो, बिस्तर छोड़ो।
5: क्या किरण दी, क्या हो गया,
6: क्या ऑफर आ गई?
5: अभी तो केवल 5 ही बज रहे हैं।
3: अब क्या हो गया किरण दी, क्यों हम सभी को सुबह सुबह जगा दी है?
4: अरे सभी उठोगे तो बताऊंगी ना, सभी को गांव लेकर चल रहे हैं। रोज रोज बोलते थे ना कि गांव चलना है, गांव चलना है, तो चलो सभी गांव की सैर करने निकलते हैं।
3: यानी हम सभी को गांव की ठंडी ठंडी हवा और वो खेत खलियान देखने को मिलेंगे।
4: हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो सभी को ले चल रही हूँ। अच्छा श्वेता, वो ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम सब रख लिया है ना?
5: हाँ हाँ किरण दी,

0: अरे किरण दी, बड़ा मजा आया सुन के और गाते बजाते। हम कब रामपुर आ गए पता ही नहीं चला।
1: हाँ समता, सच में। पर सुनो, वहाँ शुद्ध अवधि में ही बात करनी है हम सभी को, ताकि गांव वालों को तनिक भी ये ना लगे कि हम सब शहरी हैं।
0: अच्छा तो चलो जरा हमों की गाना सुनाए दो।

0: अरे भाई, रामपुर में पहुंचकर हमें तो सब भूल ही गए।
1: अरे किरण दी, नमस्कार, कैसी हैं? और आप कहाँ इन कुमकरणों को इतनी सुबह सुबह उठा लाई हैं?
2: अरे जिम्मी, कैसी हो भाई, ठीक हो?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ।
3: किरण दी, वो बाकी सूरतियाँ वाला गाना सुना दीजिए जरा।
0: लगता है तुम्हें जिम्मी को देखकर ये बाकी सूरतियाँ वाला गाना याद आया है ना?
3: समझ तो गई।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया।
1: श्वेता देखो गांव में कितनी रौनक है ना, देखो देखो बैल से खेत जोते जा रहे हैं।
2: हाँ और देखो ठंडी ठंडी हवा के साथ सूर्य देवता भी मुस्कुरा रहे हैं, पर अपना प्रकोप नहीं दिखा रहे हैं। ये होता है हमारा गांव, समझे?
0: किरण दी वो एक गाना गाती थी ना आप, जिसमें बयरिया चुनरिया और आम की बगिया का वर्णन था, हम सबको भी जरा वो गाना सुना दीजिए ना।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, लो भाई। कितवा धार

0: वो देखो उधर, अरे उधर देखो उधर, आम की बगिया में झींगुर। वाह कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है।
1: और वो देखो किसान काका ने हम सबके बैठने के लिए खेत में ही पूरा इंतजाम कर दिया है।
2: आओ आओ बिटिया, सभी पहले ही तरबूज के शरबत पियो और हमहू गनवा सुनाए दियो।
3: तो लीजिए किसान काका सुना देते हैं।

0: वाह किरण दी, अच्छा अब सभी चलो चलो पीपल के पेड़ के पास।
1: क्यों भाई, वहाँ क्यों?
0: अच्छा चलो तो सभी को बताती हूँ भाई, वहाँ बिंदु दीदी सभी के लिए सत्तू लाई है और चटपटे प्याज के पकौड़ों के साथ चटनी भी है, वहाँ तो चलो सभी जल्दी।
2: अच्छा बताओ, गर्मियों में कच्चा प्याज क्यों खाते हैं?
1: मैं बताऊं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं?
1: क्योंकि हमें लू ना लगे।
2: अरे वाह जिम्मी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो बच्चा।
1: अच्छा किरण दी, एक गाना जो आप गाती थी वो सासू पयनिया कैसे जाऊं, वो सुना दीजिए ना।

0: कितना प्यारा मौसम है यहाँ का और कितना फर्क है गांव के और शहर के टेम्परेचर में। इस समय यानी 1 बजे है, शहर में निकलो तो शरीर ही जलने लगता है और यहाँ गांव में तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है।
1: सच कहा समता, वाकई में। अरे ये क्या है, ये तो पॉलिथीन से बना बेना है। वाह कितना सुंदर है ना, देखो देखो देखो जिम्मी।
2: हाँ यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं।
3: वो देखो बच्चों की टोली आ रही है, तुम सभी को कुछ देने। इनके हाथों में कमल के फूल हैं, जो यहीं पाए जाते हैं।
1: तुम सभी को किरण दीदी की आवाज में सुनोगे सभी?
4: क्यों नहीं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, प्लीज सुनाइए ना।
3: अच्छा भाई सुना देती हूँ।

0: अरे श्वेता, याद है हम सभी एक बार नौबस्ता गांव चले थे? वहाँ पे नाव पे हम लोग घूमे थे, झूले पे कितनी फोटो खिंचवाई थी ना?
1: हाँ हाँ याद है बिल्कुल। और वहाँ पे वो जो मेला था ना, बड़ा ही मजा आया था। चलो हम फिर से चले नौबस्ता गांव। चलो किरण दीदी से कहते हैं, वही ले चलेंगी हमें वहाँ।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, अब अगली बार हम सब नौबस्ता ही चलेंगे घूमने, क्यों जिम्मी?
3: हाँ बिल्कुल, पर आप सभी यहाँ आए बड़ा आनंद आया, कितनी जानकारियाँ मिली, फिर आइएगा सभी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: हुक्कई से खेलन जइबो।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ALTIS KIMS में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का

0: होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस्ड PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने वाले शो ज्ञानासली लाइफ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानासली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर चुनौती मौजूद हैं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के ट्यूसडे यानी कि मंगलवार वाली कहानियाँ। और आज की कहानी आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मैं भी नहीं मान रही थी इस कहानी को पढ़ने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है, बट क्या करें, कुछ भी हो सकता है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। वो अलग बात है कि हमको लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। बट हाँ, आज की कहानी में दो लोग ज़रूर सामने आने वाले हैं, स्पेशली दो कैटेगरी, वैसे तो तीन आएंगे लेकिन मैं दो कैटेगरी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करूँगी यहाँ पर। एक वो आएंगे जो कहेंगे ये टोटली फेक है, टोटली बनावटी है, सिर्फ किसी ने एक फैंटेसी को क्रिएट किया है और उसको मूवी में चला दिया है। और कुछ लोग ऐसे आके बोलेंगे कि नहीं, हो सकता है ये सच हो और इसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर शामिल हो। एज यूजुअल हमारी कहानी आज भारत की नहीं, भारत से बाहर की होने वाली है, यानी कि अमेरिका के एक छोटे से जगह से हम लेकर आए हैं जहाँ पर माना जाता है भैया कि वहाँ कोई नहीं जाता, जस्ट बिकॉज वो जगह श्रापित है। और श्रापित इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक वक्त में एक ट्राइब को यानी कि एक जनजाति को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया था, उनके लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा था और उसका नाम था नवा। और वहाँ के लोग जब उस जगह को छोड़ कर गए तब उन्होंने उस जगह को श्राप दे दिया। फिर कई लोग आए रहने के लिए, किसी ने हवेली बनाई, किसी ने कुछ किया, लेकिन कोई भी एक महीने से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें फील होती थी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। वहाँ पर एक और फैमिली आती है, फैमिली टेरी की, और टेरी ने जो कुछ भी फील किया, जो कुछ भी बताया, उसको एक पेपर में भी छपवाया। लोगों को जब अपना मकान बेचना था, जब हवेली बेचनी थी, तो उसने कहा किसी को धोखा नहीं देना है और सच को ज़रूर सामने रखो। तो भैया सच सामने रखा गया, बताया गया, और वहीं से ये कहानी उठकर आई अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग सीरीज़ में, अलग अलग स्टोरीज़ में। लेकिन फिल्मों में एज यूजुअल थोड़ा सा मिर्च मसाला, गर्म मसाला एक्स्ट्रा मिलाया गया है जो कि हम अपनी स्टोरी में नहीं मिलाने वाले हैं। तो आज की स्टोरी अमेरिका के उटाहा से हम लेकर आए हैं, जो 200-300 acres की ज़मीन है। वहाँ पर ऐसा क्यों है, क्यों उसे स्किन वॉकर ट्रेंच का नाम दिया गया है, बताएंगे। लेकिन इस छोटे से गाने यानी छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए ज्ञान असली लाइव। मैं हूं आपकी अपनी आरशी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति और मौजूद हूँ आप सभी के साथ। और आज है कहानी अमेरिका के उटाह शहर की, और हम चलेंगे यहाँ से सीधे पीछे। 2026 में रहने का कोई इरादा मेरा है नहीं, तो आइए लेकर चलते हैं आपको हम 1994 की तरफ, क्योंकि वहाँ से इस कहानी का आगाज़ होता है। वैसे कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन जिस इंसान ने आकर इसकी गवाही दी है, जिसने बताया है, वो 1994 का है। उसके साथ किस्सा 1994 में हुआ था। नाम था टेरी शेरमैन। ये नाम आपने भले ही ना सुना हो, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप भी कहोगे कि क्या ज़रूरत थी। बट होता है ना, कभी कभी होता है, बहुत कुछ होता है, और हम हर सवाल का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हर जवाब आखिर में आके रुक जाता है कि क्यों। कितने भी जवाब बना लो, सबका एक ही सवाल होता है, क्यों। फिलहाल 1994 टेरी शेरमैन जगह ढूंढ रहे थे अपना घर बनाने के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के उटाह शहर में स्किन वॉकर ट्रेंच नाम की एक जगह है, जो कि बहुत सस्ते में मिल रही है। 200-300 एकड़ ज़मीन पड़ी है, और वो बहुत सस्ते में मिल रही है। कोई भी इंसान खुश हो जाएगा, ऑफ कोर्स, और वो भी बहुत खुशी के साथ पहुंच चुके थे किनीत और एडिथ के साथ इस ज़मीन का सौदा करने। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किनीत और एडिथ, जो इसको पिछले 60 सालों से संभाल रहे हैं, वो इसके पीछे कितना बड़ा सच छुपा कर बैठे हैं। उन्हें कोई आइडिया था ही नहीं। वो बेचारा खुश था कि फाइनली एक इतनी बड़ी ज़मीन है, और मेरे पास जो पालतू जानवर हैं उन्हें पालने के लिए भी एक अच्छी जगह मिल चुकी है। हाँ, लोगों से दूर है, थोड़ा पहाड़ की तरफ है, आसपास रेगिस्तान है, तो क्या हुआ, जगह खूबसूरत है, सामने जंगल है, और इतनी बड़ी ज़मीन मिलेगी कहाँ, शहर में इतने सस्ते में नहीं मिल सकती। और इस बात से इतने ज़्यादा खुश कि उन्होंने उस ज़मीन को फाइनल भी कर दिया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली थी, और ये हवेली भी उसके नाम ही आई। पता नहीं क्यों यार, हवेली को देखते हुए ना मुझे लगता है इसको लेना ही नहीं चाहिए। जैसे ही कुछ हवेली टाइप लेना चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है उसकी हिस्ट्री में कि उसके बाद कहानियाँ बन जाती हैं, इतिहास बन जाता है, तो हवेलियों से दूर रहना चाहिए, है ना। लेकिन शायद टेरी को ये बात किसी ने नहीं बताई थी, इसलिए उसने वो हवेली ले ली बहुत खुश, और उसका पूरा परिवार अपना बोरिया बिस्तर समेट कर पहुंच चुके थे उस हवेली के अंदर रहने के लिए। पहली ही रात से शुरू हुआ उनका एक ऐसा अजीबोगरीब किस्सा जो उनके लिए डाइजेस्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं था। टेरी जब अपने पूरे फैमिली के साथ अपने घर में सामान रख रहा था, और उसके जानवर एक ट्रक के अंदर बंद थे, उनको भी रखना था ना, तो उसके पिता ने देखा कि दूर एक बहुत बड़ा भेड़िया है। भेड़िया एक नॉर्मल साइज का नहीं, बहुत बड़ा, अपनी साइज का डबल, और वो वहां से बस उनकी तरफ चला आ रहा है धीरे धीरे। सब डर चुके थे, फैमिली की सिक्योरिटी की बात थी, तो जिन लोगों के पास गन्स थी वो अपनी गन लेकर पहुंच गए थे। एज यूजुअल मैं आपको बता दूं, अमेरिका में गन बहुत इजीली मिल जाती हैं। वो गन लेकर पहुंच चुके थे, अपनी हंटिंग गन्स, और अपने कंधे पर रखकर खड़े हो गए थे कि जो होगा देखा जाएगा। बट उसके जो पिता था वो बिल्कुल भी नहीं डरा। भेड़िया उसके पास आया और बिल्कुल आके ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो कोई कुत्ता है, भेड़िया नहीं। उसके पिता ने उसके सर को सहलाया और वो चुपचाप खड़ा मज़े ले रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है टेरी के उन जानवरों पर जो ट्रक के अंदर पैक थे, क्योंकि उसमें से एक गाय का बछड़ा अपना मुंह निकाल रहा था। और जैसे उस भेड़िया की नज़र उस पर पड़ती है, और वो सीधे टेरी के पिता के पास से भागता हुआ जाता है और उस बछड़े का मुंह अपने मुंह में ले लेता है। अब क्योंकि बीच में ट्रक का लोहा आ रहा था, तो उसे बाहर नहीं खींच पाता, बहुत मेहनत करता है। अब परिवार वालों को अपने जानवर बचाने थे, इसलिए उन्होंने शूट करना स्टार्ट किया, गोलियां चला दी। बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, इस भेड़िया पे जो गोलियां लग रही हैं वो लग तो रही ही नहीं है, ऐसा लग रहा है बस इसके अंदर जाकर कहीं गायब हो रही है। ना खून निकल रहा है, ना चोट लग रही है, ना वो चिल्ला रहा है, ना वो डर रहा है, वो लगातार वहीं पर है। कोई और जानवर होता या तो वो मर जाता, या तो वो उसके खून बहता, या वो भाग जाता, कुछ तो ऐसा होता, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बस उस बछड़े को निकालने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी मशक्कत के बाद भी वो नहीं निकला, बहुत मशक्कत की, बाहर नहीं आया। और जब इतनी देर कोई मेहनत कर लेता है ना, तो वो भी चढ़ जाता है कि हटाओ यार, नहीं निकल रहा, भाड़ में जाए। एंड दैट्स व्हाई वो भेड़िया भी चला गया। फैमिली वालों ने राहत की सांस ली और देखना शुरू किया कि ये जाता कहाँ है आफ्टर ऑल। कुछ दूर तक तो उसके कदमों का पीछा किया गया, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पर आकर उसके कदम गायब हो चुके थे। वो था ही नहीं वहाँ पे, ऐसा लग रहा था कोई हवा में उड़ा के ले गया क्या। एक स्पेसिफिक जगह तक तो उसके कदम के निशान हैं, आगे कहाँ गए, नो आइडिया। फैमिली वालों ने कहा छोड़ो यार, चलता रहता है, इस पे कौन इतना ध्यान दे। और सब ने अपने अपने जानवरों को निकाला, उस हंटिंग गन को उठाया, अपने सामान को उठाया, घर के अंदर चले गए। आराम से बैठकर सब मज़े कर रहे थे, खुश हो रहे थे। बट टेरी, जो घर के बाहर आने वाला था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर अब क्या क्या होगा। टेरी के साथ जो उसकी वाइफ थी, वो भी कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए बाहर जाने वाली थी, तो उसने एक पर्ची उठाई, अपना ट्रक स्टार्ट किया और सीधे ग्रॉसरी शॉप पे पहुंच गई। और वहां पर जाकर उसने वो लिस्ट दिखाई, और जो वहां पर सेल्समैन खड़ा था, उसने कहा मैम आप फिर से, अभी तो आप ये सारा सामान मुझसे लेकर गए हो ना। एंड वो कह रही थी भैया मैं लेकर गई हूँ, मजाक चल रहा है क्या, मैं तो अभी अभी आई हूँ। बोले नहीं मैम, ये देखिए बिल है हमारे पास, आप लेकर गए हो, आपको जरूरत है तो हम वापस दे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, बट अभी आप लेकर गए हो। उसने वहां पे बहस नहीं की, ट्रक उठाया, घर वापस आई और हवेली के सारे कमरों में घूमना शुरू कर दिया कि अगर मैं लेकर आई सामान तो मैं रखा कहाँ है। और एक ऐसे कमरे में सामान मिला जहां अभी तक वो कभी गई ही नहीं थी। एंड शी वॉज लाइक, ये मैं लेकर आई थी यार, याद तो है नहीं मुझे, कब हुआ ऐसा है। खैर, इग्नोर किया गया। उसने अपनी टॉवल उठाई, बोला हो सकता है शिफ्टिंग की इस थकान की वजह से मुझे कुछ याद ना आ रहा हो। और वो शार लेने चली गई, नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर निकली, जहां तौलिया रखा था, वो तौलिया भी वहां से गायब था। अब वो फिर परेशान कि यार ये कौन सी बीमारी लग गई है मुझे, इस घर में आते ही मैं भूलने कैसे लग गई हूँ चीजें। स्टिल वो चीज को ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते देखा कि किचन में वो तौलिया पड़ी है। अब वो फिर परेशान कि यार ये किचन में कैसे आई, ये बाथरूम किचन कब बना और किचन बाथरूम कब बना। उसने ये बात जाकर टेरी को बताई कि देखो भैया, हमारे साथ कुछ तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मैं ग्रॉसरी लेने नहीं जाती, ग्रॉसरी अपने आप आ जाती है, मैं नहाने जाती हूँ, तौलिया गायब हो जाती है, ये क्या चल रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे भी पता है। टेरी ने कहा कि हो सकता है नॉर्मल है, हम जगह चेंज कर रहे हैं, यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाता है, इसको इतना ज़्यादा माइंड मत करो। टेरी की बात सुनकर उसने कहा चलो ठीक है, टेरी कहता है तो मान लेते हैं। अब टेरी, जिसको बाहर गड्ढे खोदने थे क्योंकि जंगल है आसपास, जंगली जानवर आ सकते हैं, और ये उनका अंदाजा भी सही था, थोड़ी देर पहले उन्होंने एक भेड़िया भी देखा था, तो वहां पर फेंस भी तो लगानी है ताकि जानवरों को कोई उठा ना ले जाए, और इसको लगाने के लिए गड्ढा खोदना भी पड़ता है। तो उसने अपना लगभग 65 या 70 किलो का एक मशीन उठाया जो गड्ढा खोदने के लिए था, उसको वो लेकर गया घसीटता हुआ और गड्ढा खोदना शुरू किया। 10 से 12 गड्ढे ही खुदे थे, तब तक वो थक चुका था काफ़ी ज़्यादा, और वो अंदर आया खाना पानी लेने के लिए। जैसे ही उसने अपना सब कुछ ख़त्म किया और बाहर गया, उसका सामान वहाँ से गायब। वो फिर परेशान, यार ये क्या है, अब इतना भारी सामान लेकर कौन गया। वो घर के अंदर आया और उसने पूछा कौन कौन बाहर गया है पहले तो ये बताओ। सबने कहा मैं बाहर गया हूँ, मैं बाहर गई हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उसने कहा सामान किसने छुआ है, तो उसने कहा मैं तुम्हारा सामान का क्या करूँगा, वो लोहे का जंग जो खड़ा हुआ है उस फिरकी जैसे सामान का मैं क्या करूँगी, मुझे कहाँ गड्ढा खोदना है भाई। उसने कहा बात तो सही है यार, ये लोग क्या ही करेंगे इस गड्ढे खोदने वाले का। फिलहाल कोई बात नहीं, वो गायब तो गायब, और शायद कुछ ज़्यादा अमीर थे इसलिए सोचा भी नहीं कि कहाँ गया इतना भारी सामान। सुबह हो चुकी थी, टेरी थक चुका था, रात में सो गया, चीज़ों की टेंशन ख़त्म, सुबह उठ के देखा जाएगा जो होगा। सुबह उठा, अपने आसपास की जगह पर देखा तो एक पेड़ के ऊपर उसका वो गड्ढा खोदने वाला जो 65-70 kg का था वो उसके ऊपर ला, और अब वो नीचे से ऊपर देख रहा, भैया इसके पैर कब लगे, पैर लगे कि पंख लगे, इसको इतना ऊपर लेके गया कौन, और घर वाले इतने बड़े वाले तो हैं नहीं कि इसको ऊपर टांग के आएंगे, और ना घर वालों से उठेगा ही इतना ऊपर तक, तो ये गया कैसे। अब वो नीचे से ऊपर बस यही देख रहा है और सोच रहा है इसको उतारूं कैसे, क्योंकि उतार तो सकते नहीं, इतना भारी है, सर पे गिरा तो सर और खुल जाएगा मेरा, इसलिए वो वापस चला आया। और उसी शाम उसने नोटिस किया उसके घर के बाहर कुछ लाइट्स चमक रही हैं, दो, ऐसा लग रहा है कोई ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। उसे लगा कि हो सकता है किसी ट्रक वाले ने गलत रास्ता ले लिया हो, बाहर खड़ा होकर देख ही रहा था। थोड़ी दूर तक तो वो लाइट्स आई, लेकिन वहां से फिर वो यू टर्न में चली गई। उसे लगा कोई बात नहीं, होता है होता है, हो सकता है कोई गलत आ गया हो। अगले दिन फिर यही हुआ, दो तीन दिन लगातार ये किस्सा उसके साथ चला कि दो लाइट्स उसके पास आती थी, और उसे सोचा इस बार तो देखूंगा, इसको कोई तो है जो जानता है कि यहाँ पर कोई घर है, कोई हवेली है, हो सकता है कोई चोर हो, हो सकता है ये वो लोग हों जो तस्करी करते हैं जानवरों की। तो एक पेड़ के पीछे वो छुपके देखने लगा, वो लाइट्स जो उसकी तरफ आ रही थी उनमें कोई आवाज़ नहीं थी, उसे लग रहा था कि ये कोई ट्रक होगा, बट नहीं, उसमें ट्रक जैसी कोई आवाज़ नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था, बस वो लाइट्स थी। और वो उसको देखे जा रहा था कि अचानक वो लाइट फिर से गायब। और अब एक हफ्ता गुजर चुका था, वो लाइट्स दोबारा दिखी ही नहीं, क्यों क्यों अब इसके आगे जो होने वाला है ना वो लाइट से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या होता है बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस बार बने रहिए, सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं ट्यूसडे की स्टोरी विद आरजे नदी।

और सेम हस्र उसका भी होता है जो इस जगह पर जाता है, क्योंकि वो भी सेम सवाल ही करता है कि अब बताओ जाएं तो जाएं कहाँ। वैसे आप जाने वाले थे कैसी जगह पर जहाँ हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका स्वागत कर लेते हैं हम ज्ञान असली लाइव में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनति मौजूद हैं आप सभी के साथ, और ये है ट्यूसडे वाली खौफनाक स्टोरी। वैसे खौफनाक है कि नहीं ये तो आप डिसाइड करने वाले हैं। कई बार चीज़ें यकीन के परे होती हैं, भरोसे के परे होती हैं, और ये कहानी भी थोड़ी ऐसी ही होने वाली है। लगती एकदम फिल्मी है, लेकिन कोई तो महाशय हैं जिन्होंने कहा है कि ये सच है, और वो महाशय कोई और नहीं, टेरी हैं। जी हाँ, तो भाई टेरी जिस लाइट के पीछे पड़ा था, वो लाइट किस चीज़ की थी उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि काफ़ी दिन गुजर चुका था, और इस बार जब लाइट दिखी तो उस लाइट के साथ साथ एक और हादसा हुआ। हादसा ये कि उसकी एक गाय गायब थी। एक्चुअली हुआ क्या था चलिए बता देते हैं। अमेरिका के उटाह शहर की सर्दियां बहुत फेमस हैं, हड्डियां जमा देने वाली सर्दी पड़ती है, और उस दौरान अपने जानवरों का ख्याल रखते हुए टेरी ने सोचा क्यों ना जानवरों का अटेंडेंस ले लिया जाए। अगर आपने शौंदा शीप देखा होगा तो आपको पता होगा इस तरह उसमें अटेंडेंस लेते हैं ना, तो इस तरह यहाँ भी लेते हैं। और अब उसने अटेंडेंस लेना शुरू किया, ये मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, और उसमें देखा कि एक गाय तो गायब है यार। उसने रजिस्टर में लिखा और ये सोच के छोड़ दिया कि हो सकता है घर वालों ने इधर उधर कर दी हो, चरने के लिए छोड़ दिया हो, बेच दिया हो, कुछ भी ऐसा किया हो। सुबह पूछ लूँगा, अभी क्यों डिस्टर्ब करना। सुबह हुई, टेरी ने सवाल किया कि तुम लोगों ने गाय के साथ क्या किया है, एंड दे वॉज लाइक गाय के साथ हमने कब कब भैया। उसने कहा यार एक गाय गायब है, तुम्हें पता नहीं कहाँ गई। उसने कहा हमको नहीं पता, और अगर हम उसको बेचते या उसके साथ कुछ करते या उसको हमने चरने के लिए छोड़ा होता तो तुमको बताते ना, बिना बताए थोड़ी गायब कर देते। उसने कहा पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, गाय को ढूंढने चलते हैं, क्या पता इधर उधर कहीं निकल गई हो। और उन्होंने पूरा एरिया जो था उसको देख लिया, पूरा सर्च कर लिया, उन्हें कहीं वो उनकी गाय नहीं मिली। और ऐसे करते करते एक हफ्ते के अंदर उनकी चार गाय गायब हो चुकी थी, लेकिन चौथी जो गायब हुई ना उसके निशान थे, वो कहाँ गई थी इसके निशान शामिल थे। उन निशानों का पीछा किया गया और अब वो निशान चार दिशा में बढ़ चुके थे। हर एक फैमिली मेंबर उस दिशा की तरफ गया, और आगे जाकर पता चला कि नहीं, आगे से निशान गायब हैं, जैसे उस भेड़िया के गायब थे। 1995 आ चुका था, एक साल गुजर चुका था, ये लोग भूल भी चुके थे कि इनकी कोई गाय बाई थी जो गायब हुई थी कभी। अचानक से वो चारों गाय एक साथ वापस उनके घर में, उनकी प्रॉपर्टी में। अजीब है ना, एक साल पहले जो चीज गायब हुई हो अचानक से वो लौट आए। खुशी तो होती है कि यार बढ़िया बात है, बट थोड़ा सा सवाल भी आता है। एक और चीज नोटिस की गई थी कि उन गायों के पेट पर एक कट लगा हुआ था जो बहुत स्ट्रेट था, बहुत स्पेसिफिक था, लग नहीं रहा था किसी जानवर ने कभी चोट पहुंचा। ऐसा लग रहा है कोई इंसान जिसने कट लगाने में महारत हासिल की होगी, बहुत बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा, उसने एक कट लगाया है, और वो चारों गायों के पेट पर था। खैर इसके बाद भी कुछ नहीं, उसने इन गायों को अपने उस प्रॉपर्टी के अंदर लिया, उसको बंद किया और सबके कानों पे टैग लगाना शुरू कर दिया। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और अब टेरी के पास तीन कुत्ते भी थे। इन गायों के आने के बाद टेरी के साथ अब चीजें और भी ज्यादा बदतर होने वाली थी। टेरी जो अभी तक आराम से सो रहा था और अपनी हवेली के चारों तरफ देख के सोच रहा था इतने मोटे मोटे लोहे क्यों लगे हैं, इतने बड़े बड़े लॉक क्यों लगे हैं, नट बोल्ट वाले, अब उसको इसका असल मतलब भी समझ आने वाला था कि अभी तक जो यहाँ पर रह रहे थे किनीत और एडिथ, उसने क्यों यहाँ पर इतने बड़े बड़े लॉक लगा रखे थे। क्योंकि उनकी गाय जब वापस आई और टेरी उस रात जब सो रहा था तो उसे फील हुआ कि उसके हवेली के चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है। वो उठा और उसने सबको जगाना ज़रूरी समझा कि चलो हर कमरे में चलते हैं, हर एक इंसान को उठाते हैं, मैं अकेले थोड़ी शेर खान हूँ जो बाहर जाके लड़ लूँगा। इसलिए उसने सबको उठाया
तुमने देखा क्या, तुमने देखा, तुमने महसूस किया, तुमने सुना? यही सवाल था उसका सबके साथ। लोगों से मिला, लोगों ने कहा यार हाँ महसूस तो हुआ जैसे कोई आसपास घूम रहा है, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था ना, चलो देख के आते हैं। लेकिन हवेली के बाहर कोई भी नहीं गया, सबने बस अपनी विंडो खोली और विंडो से मुंडी बाहर निकाल निकाल के झांकने लग गए कि कहीं तो कुछ तो दिखेगा। और अब टेरी के सामने एक ऐसी खौफनाक चीज़ आई जिसे वो चिल्ला कर उछल के पीछे गिर चुका था। उसके खिड़की पर, जब वो खिड़की के विंडो पर खड़े होकर शीशे की तरफ देख रहा था, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के पास लगा कि बाहर का नज़ारा दिख जाए, उसके पास अचानक से एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी चीज़ आती है जिसके पास शक्ल नहीं थी, फेस नहीं था, और आकर वो सीधा उसके विंडो से टकराती है। उसका इतना खौफनाक चेहरा कि उसके पास ना आंखें हैं, ना नाक है, ना मुंह है, कुछ है ही नहीं। वो इतना जोर से चिल्लाकर पीछे हटा कि वो ऑलमोस्ट गिर चुका था। घर वाले भाग कर आए कि अरे क्या हो गया। उसने इशारा किया कि भैया बाहर देखो क्या हो गया है। वो बहुत डरा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। और अब ये धीरे धीरे किस्सा बनता जा रहा था, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। और वो जो बड़े बड़े लॉक थे ना, उसका मतलब समझ में आया था कि आफ्टर ऑल क्यों यहाँ पे लॉक लगाना था, क्यों हमेशा इतने बड़े बड़े लॉक को लगाकर सोना चाहिए। अब पूरी फैमिली या तो रात भर परेशान रहती, उन्हें लगता कोई उनके नाम को पुकार रहा है, कोई गेट पे आके खटखटा रहा है, कोई विंडो पे खड़ा है, ना जाने क्या क्या उनको नज़र आ रहा था। उन्होंने उस बड़े बड़े लॉक को लगाना शुरू किया, तब जाकर वो कहीं सो पाते थे। एक रोज़ जब टेरी अपने कुत्तों को बाहर घुमाने के लिए निकला था, तीन कुत्ते थे उसके पास, और उन कुत्तों को बाहर घुमा ही रहा था कि अचानक से फिर से वो लाइट्स दिखी। और इस बार उस कुत्तों ने उसकी तरफ बहुत ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया था। टेरी ने देखा कि अपनी पूरी ताकत लगा के जाना चाहते हैं तो बस जाने दो। और वो तीनों कुत्ते उस लाइट की तरफ बहुत तेज़ी से भौंकते जा रहे थे, और वो लाइट अचानक से उनके कुत्तों की वजह से गायब। टेरी खुश कि अरे वाह, मेरे कुत्ते किसी काम तो आए यार, मतलब इतने पैसे खर्च हुए हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं। उसने बाहर ही छोड़ दिया उन कुत्तों को, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि अगली सुबह जब वो अपने कुत्तों को ढूंढने गया था, मारे खुशी की बता रहा था सबको कि मेरे कुत्तों ने उस लाइट को भगा दिया, अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास एक रक्षक है, हमें बचा सकता है। सुबह आगे जाकर जब उसने देखा, पूरे एरिया को देखने के बाद, पूरी प्रॉपर्टी को देखने के बाद, कि कुत्ते कहीं पर भी नहीं है, तो वो बाहर गया। बाहर जाकर कुछ 150 मीटर दूरी पर देखा कि वहाँ पर तीन राख है किसी के जलने की। और उसने जाके जब उस राख को छुआ तो वो गर्म थी। उसे पता चल गया था कि ये कुछ और नहीं, ये उसके कुत्तों की राख है। वो जला दिए गए या वो भाप बन के उड़ गए, पता नहीं, लेकिन ये राख उसके कुत्तों की है। उदास चेहरा लेकर वो घर के अंदर वापस आया, और इस बार फैमिली की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी बंदूक उठाई और वो घर के बाहर जाकर बैठ चुका था, ये देखने के लिए कि कौन है जो आता है, क्यों है जो आता है। और इस बार जब वो घर के बाहर बैठा था तो उसने देखा आसमान में इस बार ब्लू कलर की लाइट नहीं, ऑरेंज कलर की लाइट आई है। पहले एक आग का गोला सामने आया, अचानक से वो छल्ले में कन्वर्ट हुआ और उसके अंदर से ब्लू लाइट निकली। एंड उसके बाद वो जो एंटिटीज उसको आज तक नजर आ रही थी वो दिखी। उसने ऑन द स्पॉट उस पोर्टल का नाम रखा पोर्टल ऑफ हेल, यानी कि एक ऐसा गेट जो नर्क का दरवाजा खोल रहा है। वो इतना डर चुका था, इतना कांप चुका था कि अब उसकी बंदूक जो उसके पास थी वो भी किसी काम की लग ही नहीं रही थी। फिलहाल घर को बचाने की जिम्मेदारी भी थी, थोड़ी सी हिम्मत जरूर दिखाई थी उसने, बट वो हिम्मत किसी काम की नहीं आई। वो तुरंत घर के अंदर वापस आया और अगली सुबह होते ही पूरे फैमिली मेंबर को बताया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या देखा है। और फैमिली मेंबर्स ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, घर ही बेच देते हैं, अपने बस का तो है नहीं आ रहना। उसने कहा ठीक है, हम घर बेचते हैं और अब कोशिश करते हैं इस घर की सारी सच्चाई लिखने की। और उसने उस घर को बेचने से पहले एक आर्टिकल में सब बताया कि हमने यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपको क्या क्या मिल सकता है, यहाँ एक भेड़िया दिखता है, यहाँ पे मेरे कुत्ते गायब हो जाते हैं, मेरी गाय गायब हो जाती है, एक साल बाद वापस भी आ जाती है, यहाँ एंटिटीज नजर आती हैं, शोर होते हैं, आपका कोई नाम लेके पुकार सकते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं देना है। ये सारी बातें उसने लिख कर भेज दिया। कोई इंटरेस्टेड नहीं था इन सबको पढ़ने के बाद कि मैं अपनी जान जोखिम में डालूं और जाके इस घर को खरीदूं।
किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सबने बोला राम राम जी, दूर से जाइए, वहीं से वो गली है ना वहां से ही निकल जाओ, इधर तो आना भी मत। लेकिन एक साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट को आपको पता है ये पागल होते हैं, इन्हें बस हर एक चीज देखनी है, जाननी है। उसे ये जमीन पहले भी चाहिए थी, बट पहले उसको जमीन मिल नहीं पाई, तो उसने कहा हम लेंगे बाबूजी, हम हैं यहाँ पे बड़के वाले। और ये जमीन उसने खुशी खुशी ले भी ली। टेरी ने अपने सारे घर में घर वालों को भेज कर, सारे मेंबर्स को भेज कर कहा उस साइंटिस्ट से कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम रिसर्च करने वाले हो ना कि इस जगह पे ऐसी क्या दिक्कत है, ये क्या पोर्टल है, क्या कुछ चल रहा है, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकलेगा। साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, देख लो क्या दिक्कत है। और उसने अपने साथ कुछ PhD होल्डर्स को बुलाया जिस पर काम करना चाह रहे थे, कुछ रिसर्चर्स को बुलाया, कुछ साइंटिस्ट और आए, कुछ उसके साथ काम करने वाले आए, कुछ लेबोरेटरी के लोग आए, और सब लोग मिलकर इस घर में रहना शुरू कर चुके थे। लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस करना था जो टेरी ने एक्सपीरियंस किया था, इसके बगैर वो काम नहीं करेंगे। अब उस साइंटिस्ट ने टेरी को कुछ टैक्स दिए और कहा कि जाकर के सब जितने भी जानवर हैं ना उनके ऊपर लगा दो, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने जानवर लेकर आया था, उसको भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी ना। साइंटिस्ट को चाहिए, अगर किसी ने कहा भूकंप आया तो साइंटिस्ट को देखना है भूकंप कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो उसको एक्सपीरियंस करना था उस चीज़ को। और जब टेरी उनके कानों में टैग लगा रहा था तो अचानक से कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और वो चिल्लाने के साथ वहाँ से भाग कर जाता है। वो देखता है कि जिस गाय के टैग अभी तक उसने लगाया था उसका कान कट चुका है, वहाँ से खून निकल रहा है, एक स्पेसिफिक कट लगा हुआ है उसकी पेट पर, लेकिन ये किया किसने ये बात नहीं पता। अब वो तुरंत उस वहाँ से निकल कर सीधे हवेली के अंदर जाता है, साइंटिस्ट को बुलाता है, लोगों को बुलाता है कि चलो तुम क्या एक्सपीरियंस चाहिए था ना, आओ तुम्हें एक्सपीरियंस दिलाते हैं, चलो देखो क्या हुआ है। और वहाँ से सब लोग उठकर वापस जाते हैं देखने के लिए कि आफ्टर ऑल हुआ क्या है, क्या होता है बताते हैं। लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार तो बने रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव, मैं हूँ आपकी आरजी नदी, एंजॉय करते रहिए, आपको इस गाने को एंजॉय कीजिए जो कि है जावेद अली की आवाज़ में, इमरान हाशमी पर फिल्माया गया सॉन्ग दीवाना कर रहा है। Stay tuned.

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम में, जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव। तो भैया, आपने एक बहुत ज़बरदस्ती कहानी को ऑलमोस्ट सुन लिया है, लेकिन चलिए उसके आखिरी पन्ने को खोलते हैं और आपको बताते हैं घड़ी के इशारों के साथ साथ कि आगे क्या होने वाला है। वो रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या हुआ है आसपास, लेकिन उन्हें कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि वो भेड़िया जो टेरी ने सामने देखा था पहली दफ़ा अपने, वो वापस से आया हुआ है। लेकिन इस बार वो चार पैरों पर नहीं है, वो दो पैरों पर खड़ा है और दो पैरों पर खड़ा होकर वो चल रहा है। ये बात देखकर लोग बड़े परेशान हुए थे। साइंटिस्ट इधर उधर देखने लगे एक दूसरे को कि भैया क्या है ये, तुम्हें दिख रहा है क्या? सबने कहा हाँ बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, कोई भेड़िया दो पैरों पर नहीं चलता और इस तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। उसने कहा हाँ दिखता तो नहीं है यार, पीछा करो इसका। और लोगों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन वो भेड़िया किसी को मिला ही नहीं। मिला तो सिर्फ उसकी एक अजीब सी फाउल स्मेल, यानी कि उसकी बदबू, बस वो, और कुछ नहीं था। फिलहाल वक्त गुजरता गया, लोगों ने यानी रिसर्चर्स ने चार बुल्स मंगाए, वहाँ पर उनको रखा गया, वो भी गायब हो चुके थे। हालांकि वो ढूंढ लिए गए, वो आराम से कहीं सो रहे थे, लेकिन वो उस जगह पर गए कैसे इस बात का कोई पता नहीं। रिसर्चर से कहा गया तुम लोग रात में बाहर घूमा करो। और ये सब करने के बाद भी 2004 में कोई भी केस सामने नहीं आया। 10-12 साल तक लगातार उन्होंने मेहनत की, ढूंढा, सब कुछ किया, बट कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा। हाँ, जो टेरी ने देखा था वो पोर्टल उस साइंटिस्ट ने भी देखा था, उन रिसर्चर्स ने भी देखा था, बट ये क्यों खुलता है, किस लिए खुलता है, कहाँ से खुलता है, किसी को नहीं पता। और क्या स्किन वॉकर होते हैं? ये बात आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्किन वॉकर, जिन्हें हम लोग कई बार छलावा के नाम से जानते हैं, ये शेप बदल सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती। इनकी आंखें नहीं बदलती, इनके बोलने का अंदाज़ नहीं बदलता। बाकी जानवर जब ये बनकर आते हैं तो इनकी आंखों में वो नीली, हरी या पीली लाइट नहीं होती है, वो लेंसेज नहीं होते हैं, बल्कि रेड कलर का होता है। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है ना तो देखिएगा, अमेरिका में बहुत फेमस है स्किन वॉकर, शेप शिफ्टर, ये सारे नाम बहुत पॉपुलर है। इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में भी कोई छलावा की बात करता है तो लोगों को इंटरेस्ट आता है। यहाँ छलावे होते हैं जो आपको भटकाने का काम करते हैं, जो आपके साथ आते हैं, लेकिन ये आपके नाम को भी पुकारते हैं किसी अपने की आवाज़ में। और इसीलिए कहते हैं कि रात में किसी भी आवाज़ पर यूं ही नहीं पलट जाना चाहिए, कई बार वो छलावा होता है। जो लोग बाहर जाते हैं अक्सर वो ये कहानियाँ बताते हैं। अब आप बताते हैं कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब तक इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तब तक ये कहना इम्पॉसिबल होता है कि ये चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं। वहीं पर अगर आप फिलॉसफी देखेंगे तो कहा जाता है जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ इंसान है वहाँ शैतान भी है। आप क्या मानते हैं और कैसी लगी आज की आपको स्टोरी? यूँ तो अगर मैं सारे रिसर्चर्स के पॉइंट को खोलने बैठती तो 2-3 घंटे लग जाते आज की कहानी को ख़त्म करने में, तो इसलिए जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए आपका क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, एंड आज की कहानी आपको कैसी लगी? आइए चलते हैं चैट बॉक्स में। और हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले लिसनर सौरभ मिश्रा फ्रॉम गोंडा, आपका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? एंड धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, तबीश खान हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? सचिन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, मैडम जी नमस्ते, नमस्ते टू यू। अनोखी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। शर्मा जी कैसी हैं आप? एंड नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सचिन जी ने हमें बहुत सारे इमोजीज भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अच्छी स्टोरी थी सौरभ जी ने कहा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओके, तो ऑलमोस्ट वक्त होता जा रहा है कि अब आपसे विदा ले लिया जाए, यानी कि जाने का वक्त आ चुका है मेरा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। मैं थी आपकी आशुनती, आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया सिंह, सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बात होती है आपके सेहत की। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हर किसी पे भरोसा मत कीजिएगा।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना

0: इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं।
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जांच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल। और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दे। खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना बिल्कुल सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANSC जांच कराती हैं। उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
9: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
10: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज जी
1: अंशिका।
0: अंशिका तो भाई क्या हाल है आप सभी का, जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स में क्योंकि अभी मुझे दिख रहे हैं केवल दो ही, एक ही हमारी अनोखी शर्मा, आई थिंक अनोखी शर्मा ही है। अनोखी मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो पिक लगी हुई है वो आपकी खुद की है कि आपने कोई कोई इमेज लगा के रखी हुई है। अगर आप ये खुद हैं तो मतलब मैं फिर बाद में तारीफ करूं, अगर इमेज है तो फिर ना करूं, ठीक है। तो आप कैसे हैं, आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
1: सुन सहेली,
0: और साथ ही साथ में बारिश मॉनसून बहुत ही अच्छा वाला आ गया है। मतलब क्या कहें क्या नहीं कहें, मतलब ये कह सकते हैं कि ठंडक वाला मौसम है और बढ़िया वाला मौसम आ गया है। भले बारिश के कारण से जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी चलने में घर में कित कित कित किसी होती है, बट एक सुकून है बॉडी को कि हाँ स्वेटिंग नहीं हो रही है, पसीना नहीं आ रहा है और अच्छा वाला एक फील हो रहा है, गुड गुड फील हो रहा है। क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल मैम, गुड गुड फील हो रहा है और इसी के साथ मतलब मौसम तो इतना प्यारा है ना कि बस यही मन कर रहा है कि क्या कहा जाए,
0: क्या कहा
1: मौसम के साथ कहीं पे अच्छे से जाएं घूमने,
0: चाय पीने और चाय के साथ पकोड़े हों, लौकी के हों, गोभी के हों, आलू के हों, प्याज के हों, और काश ये चीज अभी भी मिल जाती यहाँ पे तो कितना अच्छा होता है।
1: चाय
0: के साथ सोच के
1: इमेजिनेशन,
0: तो हम लोगों की आधी जिंदगी तो इमेजिनेशन में ही गई है, आधी पता नहीं कैसे जाएगी,
1: आधी प्रैक्टिकल में जाएगी
0: आधी इमेजिनेशन में जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो को। आज है हमारा प्यारा सा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे के दिन हम लेकर के आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की केयर के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो शुरू करने से पहले जो कि हमारी औपचारिकता है, सबसे पहले पोयम, और उसके पहले आइए एक ही साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
1: शुभ दोपहरिया। तो शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और दोपहरिया का हो गया जबरदस्त आगाज क्योंकि आ गई है आज समता और आज अंशिका। बिल्कुल भाई हम हैं साथ तो आपकी दोपहरिया तो जबरदस्त होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं और तुम का वो मजा नहीं है जो हम का मजा होता है, और हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं और तुम कहते हैं ना तो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन भाई हम तो एक है इसलिए हम तो हम ही कहेंगे। तो इस हम का राज भी आपको बताएंगे और आज कुछ खास है वो भी बताएंगे, लेकिन इन सब से पहले कुछ और बताएंगे।
0: लो बता ली
1: अब आप बताइए।
0: इसकी तीन तीन तीन चीजें आ गई, आज है कुछ खास वो हम बाद में बताएंगे, आज है क्या वो हम बाद में बताएंगे, आज है पता नहीं क्या उसके पहले हम ये जान लेते हैं। नहीं तुमने बोला,
1: मैंने बोला,
0: हाँ तो क्या हम थोड़े बोल रहे हैं, तुम्हारी लैंग्वेज है। हाँ तो शुरू करें,
1: हाँ
0: शुरू कर दें,
1: शुरू कर दीजिए।
0: अरे पोयम शुरू करने जा रहे हैं
1: बता मतलब ये तो तंग करने वाला प्रोसेस था, लेकिन नहीं चलिए बताते हैं आपको प्यारी सी पोयम के जाने का रास्ता। और आज का जो रास्ता है कि भाई बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बच्चे होते हैं
0: कुछ लोग भी होते हैं मन के सच्चे,
1: हाँ लोग भी होते हैं मतलब उनका वो होता है दिल बच्चा होता है,
0: उनका दिल बच्चा होता है।
1: तो कुछ बच्चे होते हैं मन के सच्चे और करते हैं बहुत प्यारी प्यारी बात। तो चलिए करते हैं पोयम की शुरुआत आज समता के साथ।
0: अच्छा हमें लगा कि लास्ट लाइन में अभी अंशिका ये बोलेगी कि अगर हमने आज रास्ता नहीं दिया तो आज समता की तरफ से हो जाएगी मुकालात।
1: नहीं वो मैम आपकी वो कृपा दृष्टि कृपया आप मुझ पे नहीं किसी और पे आजमाएं।
0: आज समझी नहीं, मुकालात।
1: अच्छा समझे देर आए पर समझ गए,
0: मुकालात नहीं मुलाकात नहीं बोल रहे हम,
1: नहीं हम समझ गए मैम,
0: मुलाकात तो एक ही से होनी है
1: वो और जो इमोशंस उसमें
0: मुकालात
1: वो मैं समझ गई।
0: ठीक है शुरू करें अब
1: जी।
0: तो चलिए आज की पोयम शुरू करते हैं, जो कि आज का जो किरदार है हमारा पोयम का जो शीर्षक है वो है मासूम सी दुनिया। दीवारों पर रंगों से अपनी एक नई दुनिया बनाना, हर खाली पन्ने पर कोई अजीब सा नक्शा सजाना, टूटे हुए खिलौनों को डॉक्टर बनकर ठीक करना, और खुद को ही किसी जादुई कहानी का हीरो बताना, पापा के जूतों में पैर डालकर बड़े होने का नाटक करना, आईने के सामने खड़े होकर छुप छुप के बातें करना, तकिए का किला बनाकर अपने उसमें अपनी संतुलन खोजना, और आसमान के बादलों में चलते हुए हाथी घोड़े सोचना, छुपा छुपाई में अपनी ही परछाई से शर्त लगाना, चींटियों की कतार को देखकर उनके घर का पता लगाना, हर छोटी सी बात पर कोई अनोखा ही सवाल पूछना कि चंदा मामा रात को ही क्यों आते हैं, ये सोचना। आज के इस दौर में कहीं खो न जाए यह मासूम नजारा, जहां हर कौतूहल और हर बचपना था सबसे प्यारा। चलो गैरेज की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलें और उन्हें, ताकि फिर मुस्कुरा सके हर बच्चे का वो बचपन आवारा।
1: वाह जबरदस्त, मतलब मैं तो
0: मतलब
1: खो गई
0: थी। बहुत सारी लाइनें जो थी वो हम लोगों ने खुद पे बिताई हुई हैं, तो बिल्कुल बचपन सामने आ गया था
1: और इसलिए थोड़ा सा मैं खो भी गई थी। और मुझे यही लग रहा था कि मैम पढ़ रही थी पोयम, तो मुझे लग रहा था कि मैं आंखें बंद करूं और वो पूरा इमेजिन जैसे एक हो रहा था। तो वाकई बहुत प्यारा होता है ये बचपन, लेकिन दुख इसी बात का है कि एक मोड़ पे आपका बचपन जो होता है वो छूट जाता है, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं। तो बड़े हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल की जो ये जनरेशन है वो इस पे चलती है कि हमारा जो 55 है वो न्यू 25 होता है। कहने का मतलब ये है कि आजकल सभी में कहीं ना कहीं एक बचपन उम्र के साथ जिंदा है, तो उस बचपने को हमेशा जिंदा रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए, खुश रखिए, खुश रहने दीजिए और खुद भी खुश की कोशिश करिए, खुश रखिए, खुश रहने दीजिए और खुद भी खुश।
0: इसे कहते हैं ना जियो और जीने दो,
1: जियो और जीने दो, और किसी को बख्श भी दो।
0: और बख्श तो नहीं देंगे, क्योंकि जब हम बख्श देंगे ना तो ईश्वर भूल जाएगा।
1: हाँ।
0: और अगर हम बख्शेंगे नहीं तो हम उन्हें ईश्वर को हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि जिन जो लोग किसी लोग के साथ में अगर बुरा करते हैं तो उन्हें कभी भी बख्शना नहीं चाहिए।
1: ओके बिल्कुल, तो भाई मैम ने बहुत ही अच्छी बात कह दी अभी जस्ट। और
0: चलिए अच्छी बात करते हैं।
1: हाँ ये तो है, मैम बहुत अच्छी बात करती है, बहुत अच्छे से समझाती भी है, जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी बस कुछ
0: समझाते तो हम बहुत अच्छा है लोगों को।
1: और मैम गुस्सा भी बहुत अच्छे से होती है, फिर सामने वाला सोचता है कि मेरा क्या होगा,
0: वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा।
1: हाँ गलत, वही होगा जो मंजूर है आरजे समता होगा।
0: हाँ ये भी बात, ये भी कह सकते हैं ऑप्शन टू,
1: कह सकते हैं
0: ऑप्शन टू। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का है मिस आरजे अंशिका।
1: हाँ बिल्कुल बताते हैं। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि कल्पना की उंगली छोड़कर जो वास्तविकता के साथ चलते हैं, जिंदगी में अपनी मंजिलें वही हासिल करते हैं और अपना एक ऐसा नाम बनाते हैं कि हर कोई उनके नाम को सुनकर, पढ़कर, समझकर ये चाहता है कि वो भी उनके जैसा बने। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ही जो हमारी रियलिटी होती है उसे छोड़कर बस अपनी कल्पना की दुनिया में रहते हैं, और जब आप अपनी कल्पना की दुनिया में रहते हैं ना, इमेजिन करते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इवन हम इमेजिन करें कि हमारे पास बहुत ही अच्छी सी कार है, बहुत ही अच्छा सा बंगलो है, उसमें एसी है, या हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा इमेजिन करें, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि हमें तकलीफ दे, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, आप जैसी

0: चाहते हैं आपके पास सब कुछ वैसा ही हो तो कैसा लगेगा। कहीं ना कहीं लाइफ बोरिंग हो जाती है, हमें लगता है कि अरे ये तो सब ठीक है। आप कभी उससे पूछिए जिसे सब कुछ मिला हो, जिसे कुछ पाने के लिए कभी स्ट्रगल ना करना पड़ा हो, तो वो यही कहेगा कि अरे नहीं ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है, मैंने तो देखा। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही अच्छा सा लाइव एग्जांपल देती हूँ, ये सबने किया होगा कि मान लीजिए आप अमरूद, आपको खाना बहुत पसंद है ठीक है, और आपने खरीद करके बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन एक बार अमरूद का मजा उससे भी पूछिए जिसने पेड़ से तोड़ कर खाए होंगे, वो ज्यादा मजा।
1: सिंपल सा कहो ना, चुरा करके खाने में ज्यादा मजा
0: हाँ,
1: आता है।
0: ये भी है, चुरा के खाने में, और फिर भागने में भी मजा आता है, और फिर थोड़ा सा जब हम भाग लेते हैं तब मजा आता है। यार ये बड़ी खुशी, मैं तो जब बचपन में करके भागती थी तो मुझे ये बड़ी खुशी होती थी जब मैं घर पहुंच जाती थी कि पकड़ नहीं पाया, देखा पकड़ नहीं पाया। तो ये एक कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको इतना सारा ज्ञान देने का मतलब सिर्फ इतना ही है लिसनर्स, कि हमेशा अपनी जो रियलिटी है उसके साथ जिए, खुश रहें, और अपनी कल्पनाओं को इतना ना बढ़ने दें कि वो आपको तकलीफ देने लगे। ये
1: तुम्हारी बात सुन के नींद आने लगी मुझे, इतना ज्ञान लाती कहाँ से हो?
0: निकल जाता है हो जाता है, संगति का असर हो रहा है।
1: तो संगति का असर हो
0: रहा है, जैसा संग वैसा रंग।
1: तो चलें एक गाने की ओर चलें,
0: हाँ,
1: उसके बाद फिर आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को, और सबसे पहला सॉन्ग जो है वो बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट है, आइए सुनते हैं, एंड देन हम आएंगे आपके नेक्स्ट कंटेंट पर जो कि आज है बच्चों वाला। एंड उसके पहले बता दूं कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाएं, नाम के साथ ही हम आपके मैसेजेस को जरूर रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से गाने को।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है RJ
6: अंशिका।
5: सो रही है, ये सोती नहीं है लेकिन आज सो गई थी। खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही ब्यूटीफुल वाले कंटेंट की ओर चलते हैं और साथ ही साथ में बताएंगे आज की कुछ बच्चों के खान पान की ओर चलेंगे क्योंकि बारिश है, मॉनसून है, लेकिन उसके पहले बताएंगे उनके कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के लिए। और जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्ट्रेस में रहने लगता है, तो उसका कारण उपाय बताएंगी मैडम हमारी।
6: बिल्कुल बताते हैं। तो सबसे पहले ये कहा जाता था पहले के टाइम में कि बच्चे जो होते हैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, उनका तो बचपन जो है वो पूरा खुशियों से।
5: नहीं, लेकिन ये गलत तुम कह रही हो। हमें याद है एक बार की बात है कि मैं छोटी थी और डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पर मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी, हाँ 10th में थी, तो वहाँ छोटा सा बच्चा आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया बेटा, तो मेरे साथ मेरे बाबूजी भी थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अरे इनको टेंशन है। अब टेंशन किस चीज की पहले वो जानो।
6: हाँ?
5: तो छोटा बच्चा था, class 2 या 3 में था।
6: ओके।
5: तो बोला टेंशन है, तो बोला टेंशन किस बात की है, टेंशन इस बात की कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉपियों पे कवर नहीं चढ़ा है, उसकी टेंशन, मुझे सुबह स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। तो टेंशन का लेवल भले कम होता है पर होता है टेंशन, समझी
6: जी।
5: और जब बड़े होते हैं तो टेंशन का लेवल हाई हो जाता है,
6: हाई हो जाता है,
5: बस यही फर्क,
6: यही फर्क है। तो चलिए इस फर्क को आपको आज बताते हैं कि बच्चों में क्या होता है ना कि उनके में टेंशन के कारण पे अगर हम जाएं तो सबसे पहला कारण होता है पारिवारिक माहौल का, यानी कि घर का माहौल कैसा है, घर में सब कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये कहीं ना कहीं बच्चे के स्ट्रेस को और उसके जैसे मैम ने भी बताया कि चिड़चिड़े स्वभाव को कहीं ना कहीं, कई बार हम कहते हैं ना चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, तो कई बार बच्चे का चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत हल्का होता है, किसी बात को लेकर वो परेशान होता है, लेकिन उसके घर का माहौल ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर जब वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं तो बच्चे में उन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं वो दिखने लगता है। तो कहीं सबसे ज़्यादा सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप बच्चे के उस उसके माहौल को और उसके आसपास जो भी लोग हैं उनके बातचीत उनकी सारी ही चीज़ों को कहीं ना कहीं हम सही रखें। अगर एक पॉजिटिव माहौल मिलेगा तो बच्चा हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा।
5: एग्जैक्टली, ये भी होता है, लेकिन मानना ये है ना कि अगर हम उसी परिवार में ही रह रहे हैं और परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसबल हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो फिर क्या हो।
6: हाँ, तो अगर स्ट्रेस दे रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी हैं जिससे कि आपका जो बच्चा है वो इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो एक हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको उससे बातचीत करनी है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आज ये स्ट्रेस में है, जैसे कि खाना नहीं खाना, ठीक से सोते नहीं हैं, वो हर छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चा अगर स्ट्रेस में है तो वो कभी खेलने नहीं जाएगा, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो वो पहले बहुत खुशी से करता था। अगर मैं अपनी आज भी अपनी बात करूं पर तो मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल सही है कि मुझे भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि कोई भी काम करे, बस मन यही करता है कि थोड़ी देर के लिए कोई अकेला छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं इसी तरह के सिम्टम्स बच्चे में भी दिखाई देने लगते हैं, इसलिए ज़रूरी है आप उसके पास जाइए, प्यार से बैठिए, उससे बात करिए, उसे समझाइए कि बेटा क्या, पहले तो सबसे पहले प्यार से पूछना है कि बेटा क्या बात है, आप क्यों स्ट्रेस में हो, तो वो आपको बताएगा कि ये कारण है और इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। तो फिर आपको उसको समझाना है, अगर उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसकी प्रॉब्लम का, तो वो आपको सोल्यूशन निकालना है, इससे बच्चा अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा।
5: अच्छी बात है।
6: दूसरी चीज ये होती है कि सबसे मेन कारण ये भी होता है बच्चों में कि आजकल स्ट्रेस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ना कि अरे फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन चलाने की वजह से हो रहा है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ईयरबड्स का यूज़ करते हैं। हम बड़ों को क्यों कहते हैं कि अरे क्या 24 घंटे आप इसको कान में लगाते हो, इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो लेकिन आपको पता है कि ईयरबड्स हमेशा लगाए रहने से, 24 घंटे यूज़ करने से या फ़ोन बहुत ज़्यादा दिन में यूज़ करने से भी स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि इसके जो रेडियंस निकलते हैं वो अगर हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, तो जब हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर पे दिखने लगती है और हमें स्ट्रेस होता है। इसलिए बच्चों को इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो थोड़ा सा एक टाइम लिमिट दीजिए कि बस इतनी से इतनी देर ही आपको फ़ोन यूज़ करना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करना है, इससे बच्चे का स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है जिससे कि बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, और वो होता है उनका अकेलापन। यानी कि अगर वो पूरा टाइम अकेले रह रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई उन्हें एडवाइस करने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ऐसा ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होता है जो जॉइंट फैमिली में सबसे पहले तो नहीं रह रहे हैं,
5: और जो एकाकी परिवार में रहते हैं उनके साथ में ये ज़्यादा होता है। और उसके बाद में एक कारण और होता है अंशिका, जो सिंगल बॉय होते हैं, जो मतलब सिंगल चाइल्ड होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि ओवर टाइम तो मतलब ऑल ओवर टाइम तो उनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं होते हैं ना भाई। सुबह गया बच्चा स्कूल से, आया घर, उसके बाद ट्यूशन का काम, ये वो, घर में आया, होमवर्क किया, एंड देन उसको एक डेढ़ घंटा जो मिलता है खेलने के लिए मिलता है, उसमें भी आजकल उनके हाथ में मोबाइल दे दी जाती है।
6: जी मैम।
5: और उसके बाद उसको एहसास होता है कि यस आई एम अ सिंगल चाइल्ड, उसके बाद में कहीं ना कहीं उसको अकेलापन अंदर से फील होता है, या तो वो सोसाइटी में जाकर के, कुछ बच्चों जैसे होता है ना कि उनके सोसाइटी में जाकर के बच्चे खेल रहे हैं, एक फ्रेंडशिप का माहौल बना रहे हैं, अगर वो भी नहीं है तो फिर ये आदत बच्चों में ज्यादा पाई गई है अकेलेपन की।
6: तो कहीं ना कहीं अभी आपने मैम से जाना कि कैसे वो अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, और धीरे धीरे यही अकेलापन उनमें उदासी, और फिर उदासी मेंटल स्ट्रेस में बदल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि बच्चे को इस स्ट्रेस से बाहर निकालें। जैसे हम कहते हैं ना कि मम्मी पापा वीक में एक दिन बच्चे को दें, कि आप पूरा वो एक दिन बच्चे के साथ स्पेंड करें, उससे पूछें कि बेटा क्या बात है। अगर वो स्ट्रेस में रह रहा है, जैसे मान लीजिए वो आपसे ये कहता है कि मम्मी मुझे अकेले इतने टाइम मुझे अकेलापन फील होता है, मेरे साथ तो कोई खेलने वाला ही नहीं है, तो आप उसको उसकी कोई फेवरेट एक्टिविटी, जैसे कि अगर बच्चे को खेलना पसंद है या कुछ भी ऐसी चीज़ें पसंद है, तो आप उसको बताइए कि बेटा आप यहाँ जाओ और आप उनके साथ फ्रेंडशिप करो, देखो आपके कितने सारे दोस्त हैं, आप उनके साथ खेलिए, इंजॉय करिए।

0: वाला
1: मजाक तो मैं कहा कह रही हूँ कि आप मजाक कर रही।
0: कभी वो कहती है घर घर खेलो तो हाँ मैं आंटी बन जाऊंगी, मैं दुपट्टा पहनूंगी, ये वो, और फिर वो मेरे घर आती है ये वो और खेलेंगे, या तो कभी फिर इंडोर गेम्स हो जाते हैं, लूडो हो जाता है, कैरम हो जाता है, ये सब चीजें। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है
1: और अच्छा भी बहुत लगता है।
0: हाँ अच्छा भी लगता है, फील अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है। और या तो फिर आजकल ट्रेंडिंग हो गया है रील्स बनाना,
1: हाँ।
0: तो सबसे अच्छा वाला है कि जब फ्री टाइम पे बैठते हैं तो, हालांकि ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है कि हमें लोग देखें, हमें लोग लाइक करें, ये सब करें,
1: वो एक अपनी खुशी होती
0: अपनी
1: है।
0: खुशी के लिए हम बना के उसको ड्राफ्ट में डाल देते हैं, बट हाँ अपनी खुशी के लिए कि हाँ हम रील्स बना रहे हैं बच्चों के साथ में, उसकी खुशी के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे काम बच्चों के साथ में करते रहना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि यस हम अकेले नहीं है।
1: बिल्कुल, तो वही हमारी ये जो अकेलेपन वाली बात है, आई होप कि आप सभी को समझ में आएगी और आप अपने बच्चे के साथ जो भी हमने ट्रिक्स बताए उसे यूज करेंगे और मस्ती तो जरूर ही करें, क्योंकि जहाँ बच्चे हैं वहाँ मस्ती नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट बातचीत का सिलसिला जो हम लेकर के आपके लिए आए हैं।
6: वाह, तो वही बातचीत का सिलसिला लेकर आए हैं और आज सिलसिले में बहुत बड़ा वो मतलब एक जो
5: सिलसिला में क्या है
6: आज सिलसिले में
5: अमिताभ बच्चन और रेखा जी थी।
6: तो आज जो हमारा ये सिलसिला शुरू होने वाला है ये हर घर की कहानी होने वाली है क्योंकि बच्चों में और उनके रिलेटिव्स में हर घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होती है।
5: बिल्कुल,
6: हम हमेशा ये सुनने में आता है कि अरे नहीं मेरे रिलेटिव से मेरी कोई खास हंसी बनती नहीं है बट हाँ बातचीत होती है।
5: अच्छा सुनो, ये पंचायत अभी छोड़ो, दो हमें कुछ बताना है, वो हमें बताने दो।
6: बताइए
5: ठीक है, क्योंकि ये हमेशा से ना ये जो भी टॉपिक पे बात करती है ना, जब पंचायत होती है मैंने ये नोटिस की है, कभी रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बताएगी, कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बताएगी, कभी किसी में लड़ाई झगड़ा बताएगी।
6: अब जो होगा वही बताएंगे ना।
5: तो यानी तुम पंचायत हो, एक्सेप्ट करो ना। यस आई एम,
6: एक्सेप्ट कर लिया
5: ना। आप सुनो, चलो तो मैं आपकी बात भी सुनूंगी बाद में, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि भाई देखो मॉनसून आ गया है अंशिका।
6: हाँ।
5: और आज नहीं कल आपकी शादी भी होने ही वाली होगी, ठीक है।
6: ओके।
5: तो आपको भी बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है।
6: ठीक
5: तो
6: है।
5: जब उनकी केयर आपको आएगी और आप उनकी केयर ढंग से कर लेंगी तो ही आपको पंचायत में भी मजा आएगा। पता लगा इधर बच्चा बीमार है, आप गई है पड़ोस में किसी से पंचायत करने, किसी भाभी बहू से, तो ये गलत है कि नहीं है पहले बताओ। तो पहले अपनी सुरक्षा, अपने बच्चे की सुरक्षा, फिर पंचायत में ध्यान लगाओ।
6: जी
5: हो गया। अब आ गई राइट टाइम, ठीक है। तो देखो अब नागेश्वर जी को बहुत मजा आ गया और इनको तबीश जी को बहुत मजा आ गया।
6: नागेश्वर जी को ऐसे ही
5: हमारी बातों पे बहुत मजा आ गया, तुमको डांट दिया ना तो बहुत मजा आ गया। आज दोनों मैम जो है मस्ती के मूड में, नई तबीश खान मतलब हमेशा से देखो नहीं अच्छा लगता ना किसी की बुराई करना पंचायत, इनको हमेशा पंचायत ही चाहिए होती है कि फैमिली, अरे ठीक है यार वो अपनी फैमिली है, ठीक है कभी ऊंच कभी नीच। अब पता लगा मोहल्ले में कुछ हो रहा है, सबसे पहले ये पहुंच जाती है वहां पर, कहीं डंडा लेके तो कहीं ईटा वीटा लेकर के, कि हमारे भी कहीं हाथ साफ हो जाए। कहीं लड़ाई की अगर कहीं लड़ाई हो रही हो और आपको अगर सपोर्ट की अगर जरूरत है, मतलब भीड़ भाड़ की जरूरत है, कोई नहीं केवल अंशिका काफी है, बस कॉल करिएगा 6393316429। कॉल करिएगा और पूछिएगा कि वेयर इज RJ अंशिका, तो वो आपको एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मजाक से परे, तो मैं बता रही थी जो उसके बाद अंशिका का टॉपिक भी हम लोग सुनेंगे, मजाक था। तो जैसे बच्चों की देखभाल है ना, तो बच्चों की देखभाल के लिए मुझे लगता है कि अभी जैसे मॉनसून चल रहा है अंशिका, तो इस समय हमारे घर में कई फ्रूट्स आते हैं।
6: हाँ,
5: कभी भी अभी तो मार्केट में देख रहे हैं कि वो आलू बुखारा जो आता है जो बिल्कुल रेडिश कलर में होता है वो आ रहा है। आम अभी तक चल रहे हैं, जुलाई है तो चल रहे हैं आम, चल रहे हैं ना। और बीच में अमरूद आ गए हैं और साथ ही साथ में
6: वो
5: क्या नाम है, जामुन था बीच में, अभी भी है कहीं कहीं दिख रहे हैं। सबसे अच्छा मतलब मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जैसे कि वो कॉर्न यानी कि भुट्टा
6: जी।
5: तो क्या कर रहे हैं लोग कि ले आ रहे हैं फ्रूट्स को और फटाफट बस ऐसे ही खाना शुरू कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि भुट्टे के ऊपर पूरा कवर्ड होता है, पूरा वो ढका होता है। उसपे एक कहावत भी होती थी कि एक उस पे एक कहावत होती थी, शायद आप लोगों को किसी को याद हो तो मुझे बताएं, कि एक दुल्हन जो है वो मुंह ढक के बैठी हुई है।
6: वो ऐसे था,
5: हाँ क्या था अंशिका, तुम्हें याद आ गया?
6: हाँ थोड़ा थोड़ा याद आया, प्रॉपर वे में नहीं याद आया,
5: याद आ रहा है
6: कि ऐसे कुछ था शायद से। एक कली है, एक कली है दोशाला ओढ़े खड़ी, कुछ ऐसे कुछ,
5: एक कली दोशाला ओढ़े,
6: कुछ ऐसे था,
5: एक कली दोशाला ओढ़े खड़ी,
6: ऐसे ही था,
5: कुछ और भी आगे था। तो हम लोग बचपन में कहते थे तुरंत भुट्टा, क्योंकि और उसके बाल भी वैसे ही होते थे।
6: प्रॉपर मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा है, क्या पहेली ऐसा कुछ था समथिंग।
5: तो जैसे वो आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बस भुट्टे का जो ऊपर का जो कवर है उसको हटाया और उसको तुरंत आप क्या करते हैं, गैस पे पकाने लगते हैं या फिर अंगीठी पे पकाने लगते हैं और उसको खाने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कभी भी हम लोग जैसे कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं, तो मैंने देखा है कि जब वो ऊपर से हटाते हैं उसको, तो हल्का सा पानी से या फिर साफ कपड़े से ऊपर से उसको पोंछ लिया जाता है। जो उसमें ब्राउन वाले जो हम लोग उसको बाल बोलते हैं, जो उसके रेशे होते हैं, उन रेशों में छोटे छोटे से कीड़े पाए जाते हैं। आप कभी देखो उसको गौर से, इतने सॉफ्ट होने के कारण से उसमें ऐसे कीड़े होते हैं जो उसी के कलर के होते हैं। कभी सड़ा हुआ भुट्टा देखा है, एक दांत अगर उसका सड़ जाए तो देखो उसके अंदर कीड़ा कैसे पहुंचा, क्योंकि वो तो कवर्ड है। पर कीड़ा कैसे पहुंचा उस, तो आप खुद सोचो कि जब उसमें भुट्टे के एक दाने पे कीड़ा लग सकता है तो क्या उसके रेशे में कीड़ा नहीं होगा?
6: बिल्कुल,
5: क्योंकि उसके डंठल तो बाहर है ना, जहाँ से वो पूरा पनप रहा है और बड़ा हो रहा है।
6: जी मैम,
5: तो सेम ऐसे ही, ये तो मैंने भुट्टे का आपको एग्जाम्पल दिया, कोई भी फल आप लेकर के आए मार्केट से, इनफैक्ट अभी जो कि अभी मौसम चल रहा है, मतलब मॉनसून चल रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको धुल करके ही अपने बच्चों को देना है, खास करके बच्चों को देना है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो फीवर और डायरिया जैसी बीमारियां जो हैं ये फैल रही हैं। अब समझ में आया?
6: समझ में आया।
5: अब मैसेज सुनो, अब मैसेज कर रहे हैं नागेश्वर जी कि आज तो अंशिका मैम को ही शादी के बंधन में बांध दिया मैम ने, क्या एग्जाम्पल दिया है, वाह, इनको सबसे ज्यादा खुशी,
6: बहुत बहुत
5: ज्यादा मजा आ गया इनको,
6: बहुत मजा आया आपको नागेश्वर जी। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मजे भी लेने चाहिए और जब अपने मजे लेते हैं तो खुशी होती है। वैसे मैम थी, उन्होंने कहा तो मुझे ऐसे कुछ ऐसी बात नहीं है, और वरना जब ये बात अभी कोई और कहता तो मैं फिर
5: चल जाती हूँ। चले
6: चले,
5: अब आप बताइए पंचायत वाली बात।
6: अब मैं बताती हूँ, तो पंचायत जैसे मैम ने भी कहा, तो पंचायत वाली बात ये निकल करके आती है कि भाई हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी उनके रिलेटिव्स के साथ बचपन में तो बनती है, मतलब बचपन में तो हम अपने मामा चाचा दादा, सॉरी दादा दादी नहीं, मामा चाचा बुआ, मतलब बाकी सभी के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन बड़े होते होते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है।
5: ये देखा गया है,
6: लड़ाइयाँ ना भी कहें तो बहस होती है, बच्चे कहीं ना कहीं बचने लगते हैं कि यार नहीं उनसे बात नहीं करनी, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती है कि उनकी बढ़ती बड़ी उम्र, कि हम ये कह दें कि अरे उनकी एज बहुत ज़्यादा है ना, वो मुझसे बहुत बड़े हैं इसलिए मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, या वो मुझसे बहुत बड़ी हैं तो मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं वजह ये आ जाती है कि बच्चों को लगता है कि वो उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं कि जैसे जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो, कहीं ना कहीं बच्चे अपने से बड़ों के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम जब भी बात करें तो आप हल्की सी बातों से शुरुआत करिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ जब हम बैठते हैं तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, अरे यार बड़े दिन बाद मिले, हेलो हाय कैसे हो, दोस्तों में दोस्तों में जब आप बैठते हैं तो आप यही पूछते हो, हेलो हाय यार बड़े दिन बाद मिले, या जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे उनके साथ हेलो हाय भी नहीं होता है, तुरंत होता है अरे यार बड़े दिन बाद मिलो, बैठो बैठो बात करते हैं, बैठो बैठो, और फिर पूरा टाइम हम इधर उधर की या जो भी होती है सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत लाइट फील होता है। कभी आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो आपको हैवी फील नहीं होगा कि बिल्कुल बैठे हैं और वो हैं, बहुत लाइट फील होता है, लेकिन जब हमारे साथ हमारे घर का कोई बड़ा या कोई हमारा रिलेटिव होता है तो हमें हल्का महसूस नहीं होता है, तो हम खुद को लिमिट में रख के बात करते हैं, जैसे कि अरे नमस्ते और आप कैसे हैं, आप ठीक हैं ना, और थोड़ी बहुत बात की और उसके बाद उठ के इंसान बच्चे चले जाते हैं कि अब ठीक है हम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लिमिट इसलिए आ जाती है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये उस मेरी कहीं ना कहीं बातों को न समझ पाएंगे और न जान पाएंगे, तो मैं इनसे क्यों ही इतने डेप्थ में जा करके बातें करूँ। तो ज़रूरी है कि उस गैप को आप मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम हमेशा कहते हैं कि फैमिली में मेल जोल होना चाहिए, लेकिन मेल जोल हो कैसे क्योंकि जनरेशन गैप भी तो बहुत बड़ा ही होता है
5: exactly.
6: कहीं ना कहीं तो वो हम सब बताएंगे।
5: अब समझ में आया कि अंशिका पंचायत नहीं कर रही थी, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। जी
6: मैं पंचायत नहीं करती हूँ मैम, मैं बहुत सीधी सादी हूँ।
5: वो
6: मैं
5: तो आप सीधी जलेबी की तरीके से हैं।
6: बिल्कुल
5: आई थिंक सो कि हम इसका निवारण भी सुनेंगे अंशिका, लेकिन हाँ। मैं चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में आ जाऊँ एंड देन ब्रेक ले लूँ और उसके बाद आप इसका निवारण बताएं।
6: बिल्कुल
5: ठीक है, तो पहले चैट बॉक्स में आएंगे और सबसे पहले जो कि दस्तक दी थी अनोखी जी ने, अनोखी शर्मा, शुभ दोपहरिया दोनों मैम को,
6: शुभ दोपहरिया आपको भी अनोखी जी,
5: एंड चाहत शर्मा गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया,
6: शुभ दोपहरिया चाहत जी।
5: नागेश्वर जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आज समता है आज अंशिका मैम नमस्कार, सुना है कि बादल गरजते हैं तो तूफान आता है।
6: गुड आफ्टरनून तो ठीक था नागेश्वर जी, आरजी समता आरजी अंशिका मैम नमस्कार भी ठीक था, लेकिन ये क्या था कि सुना है बादल गरजते हैं तो तूफान आता है, मतलब
5: असल में हम कभी गरजे नहीं है ना अभी बहुत दिन से।
6: अच्छा अच्छा, तो वो मिस कर रहे हैं नागेश्वर जी कि गरजेंगे तो तूफान आएगा। तो नागेश्वर
5: सोनिया तिवारी जी हेलो, धर्मेश जी हेलो, तबिश गुड आफ्टरनून, एंड नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि मुझे तो सबसे ज्यादा ये जो पंचायत होती है ना उसमें इनको बहुत मजा आता है,
6: वो तो पता है।
5: एंड तबिश खान बोल रही हैं कि आज दोनों मैम बहुत मस्ती में हैं।
6: हाँ मस्ती में तो हम होते हैं, मस्ती में तो हमेशा ही होते हैं,
5: है ना। एंड नीना जी ने सही जवाब दिया है, हरी थी मन भरी थी राजा के राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
6: ओके
5: तुमने आधी बोला लेकिन इन्होंने पूरी करके भेजा है, हरी थी मन भरी थी राजा के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
6: बहुत अच्छा लग रहा है, क्या था, हरी थी मन भरी थी राजा जी के बाग में
5: दुशाला ओढ़े खड़ी थी। थैंक यू सो मच नीना जी,
6: थैंक यू नीना जी,
5: मतलब बचपन वाली याद दिला दिया।
6: हाँ मुझे एक्चुअली वो क्लियर याद नहीं आ रहा था।
5: और आपकी आपकी भरिया बहुत अच्छी है मैम, आपकी ओके आपकी बहरिया बहुत अच्छी है मैम, आपकी बहरिया पंचायत नहीं करती सासू मन का काम है, पंचायत करना बहरिया का नहीं, अच्छा सासू माँ का काम है, पर यहाँ तो सासू को पंचायत अच्छी नहीं लगती, हमारी बहरिया को अच्छी लगती है,
6: हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो पंचायत वगैरह नहीं
5: करती, सासू माँ थोड़े ज्यादा ही स्टैंडर्ड है आजकल के युग की,
6: आजकल मॉडर्न, क्या वो
5: मॉडर्न
6: वो उस स्टाइल की, बहुत अच्छा शो आता था गुड्डन गुड्डन वाली सास,
5: पता नहीं जो भी है, बट मुझे पंचायत बिल्कुल नहीं पसंद है, आई थिंक हाँ पंचायत नहीं पसंद है मुझे, और अंशिका उतनी मेरी जो बहू है ना उसको ज्यादा पंचायत हाँ। पसंद है, तो चलिए अब हम पंचायत से
6: हमने चेंज कर लिया है, पता है हमने चेंज कर लिया है, मतलब नॉर्मली सास पंचायत करती है तो बहू मतलब नहीं करती है, तो यहाँ हमने चेंज कर लिया है, ये वो है मतलब न्यू सेंचुरी का न्यू वे है कि सास जो है वो सीधी सादी अच्छी सी और बहू जो है वो प्रॉपर
5: पंचायतन है ना। तो चलिए इस पंचायत को यही करते हैं स्टॉप और आपको देते हैं आनंद कुछ गानों का, एंड उसके बाद आएंगे अभी जो टॉपिक चल रहा था उसको और अच्छे से ब्रीफ करके एंड करना है, एंड देन हम फिर से चैट बॉक्स में आएंगे, तब तक के लिए इस प्यारे से गानों को सुनें।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे
6: अंशिका।
5: जी तो निवारण
6: तो हर समस्या का होता है कोई ना कोई कारण, हर समस्या का होता है कोई ना कोई कारण, और इसलिए हम आपको बताएंगे निवारण। तो निवारण ये है कि भाई अभी हमने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना कि सबसे पहले तो मूड बहुत ही अच्छा सा हो गया, तो अच्छे से मूड के साथ मैं आपको निवारण बताऊंगी। तो बताते हैं, तो सबसे पहले ये है कि जब भी ऐसी चीज़ें होने लगें और कहीं ना कहीं बच्चों में और उनके रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि बच्चों को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि वो तुम्हारे बड़े हैं तो तुम्हें उनकी बात को सहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। उसे ये समझाइए कि बड़ों का स्वभाव ही ऐसा होता है। कई बार जब बच्चे और बच्चों में और बड़ों में कोई बात हो जाती है, वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अरे ऐसे मामा कह रहे हैं, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उन्हें मेरा भी पॉइंट सुनना चाहिए था। तो मैं जब मम्मी के पास जाती थी और मम्मी से कहती थी या पापा से कहती थी कि पापा उन्होंने ऐसे कह दिया, तो मेरे पापा हमेशा ये मुझसे कहते थे कि देखो बेटा बड़ों का स्वभाव ही ऐसा होता है और आपको बस उसको सुनना है और समझ लेना है, उस पर रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम कब होती है, जब हम रिएक्शन दे देते हैं।
5: हाँ जी बिल्कुल।
6: मान लीजिए आपने किसी ने आपसे कुछ ऐसे कहा कि आप प्रवोक हुए भी, आपको गुस्सा आया, लेकिन वहाँ पे अगर हमने रिएक्शन नहीं दिया तो वो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन हमें गुस्सा आया और हमने रिएक्शन दे दिया तो वो बात वहाँ पे खराब हो जाती है। फिर क्या सुनने को आता है कि अरे ये तो बहुत छोटे हैं और इतनी छोटी उम्र में इस तरह की बात करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो उससे अच्छा होता है कि हम थोड़ा सा अपने रिएक्शन को वहाँ पे कंट्रोल कर ले जाए, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करिए और सही बात को सही तरीके से कहिए। क्योंकि कई बार जब तरीका गलत होता है ना तो सही बात भी गलत लगती है, इसलिए अगर अपनी बात रखनी ही है तो सही तरीके से रखें। और देखिए एक बात और कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमेशा हर किसी के बात का कोई ना कोई आप उसको वही करें, जवाब ही दें, या हम हर बार क्रॉस क्वेश्चन नहीं करें। कई बार ये होता है कि सिर्फ सुन लीजिए और सुन के उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए वो बात जो आपके आपको लगता है कि मुझे उसको फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, वो बस ऐसे ही कह रहे थे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो बस सुनना है और सुन करके उसको भूल जाना है। सेकंड पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने के लिए बच्चों में एक हमेशा ये नज़रिया रखिए कि अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या करते, या अगर तुम उनकी एज में होते तो क्या ऐसी बातें नहीं करते। अगर आप बच्चे को इस तरीके से समझाएंगे तो उसे ये फील होगा कि हाँ वो मेरी जगह, मतलब वो अपनी जगह पे हैं, तो शायद अपने प्लेस पे वो सही हैं। कई बार बच्चों को क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारे बड़े गलत हैं, उनको लगने लगता है कि अरे यार बड़े इतना टोंक क्यों रहे हैं, अगर मैं फ़ोन चला रही हूँ तो वो क्यों मना कर रहे हैं। आजकल के बच्चों से आप बात करिए तो कहते हैं अरे मुझसे ही कहता है, मतलब मैं अगर बात करूँ तो मेरी ही दीदी का बेटा है, छोटा है अभी, ऑलमोस्ट 7-8 साल का है, और जब मैं उसे कभी मना करती हूँ कि बेटा इतना फ़ोन मत चलाइए तो वो मुझसे कहता है क्या मासी आप हमेशा मना करते रहते हो। आजकल की जनरेशन की आदत है और कुछ नहीं होता है, हम आजकल की जनरेशन के हैं, यहाँ तक कि अब हमें भी यह सुनना पड़ता है छोटे बच्चों से कि हम आज की जनरेशन के हैं, तो वो ठीक है। और लेकिन फिर मैं उसको जब इस तरह से कहती हूँ कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप फोन चलाओ, तो उसकी छोटी बहन है मैम, मतलब दीदी के 2 बच्चे हैं, तो भैया बड़ा है और जो वो है वो छोटी है सिस्टर उसकी
5: जी.
6: तो जब उसकी छोटी सिस्टर फोन चलाती है और जो फोन के लिए वो लड़ाई करता है तब मैं उसे कहती हूँ कि अब तब वो कहती है कि अरे क्या भैया सारा दिन फोन मांगते रहते हो, मुझे भी चलाने दो. तब उसे समझ में आता है कि मासी ने जो कहा वो सही कहा और तब वो अपनी छोटी बहन को समझाता है कि फोन इतना मत चलाओ आँख खराब हो जाएगी, तुम अपनी केयर नहीं करती हो. और तब मैं उससे कहती हूँ कि अब क्यों समझा रहे हो तुम, अब क्यों बड़े बन रहे हो, जब मैंने आपसे कहा था तब तो आपने मुझे कहा कि हम तो डेली चलाते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ठीक इसी तरीके से जब हम बड़ों की पैदान पर होते हैं तब हमें समझ में आता है कि कहाँ संभलना है, कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या करना है. इसलिए हमेशा दूसरे की प्लेस पर एक बार अपने आप को रख के जरूर सोचिए कि कितना सही है और कितना गलत.
5: एग्जैक्टली. और मैं आपकी बात को अभी रोकना चाहती हूँ एंड मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग अलग अलग आईडीज बना के आते हैं और मतलब जैसे कहते हैं ना जो नाम हम लोग पढ़ भी नहीं पा सकते हैं उन नामों से जब आप आईडी बना करके और ढेरों यहाँ बातें करते हैं. तो मैंने अभी मैसेज डाला है कि मजबूरन हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जब हम लोगों को ये चीज़ कही जाती है कि आप ब्लॉक ना करें. लेकिन अनोखी और जी कौन कौन है, अनोखी जी हैं एंड धर्मेश एंड एक अंजना जी कोई हैं एंड चाहत जी आप तो नहीं, खैर जी चाहत जी का कोई मैसेज नहीं था. लेकिन अगर आप लोगों को अगर अभी आज आपका लास्ट मैं आपको समझा रही हूँ सोनिया जी, तो प्लीज़ आप सभी से मेरी निवेदन है कि आप लोग आपस में आकर के यहाँ बात ना किया करें. लास्ट आप सबको वार्निंग है
6: जी. तो अभी अभी आपने सुना कि आपको बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही बोला और आप सभी प्लीज़ ऐसे मत किया करिए. कहीं ना कहीं ये लास्ट बार हम आपको समझा रहे हैं वरना फिर कहते हैं ना कि एक्शन कहीं ना कहीं फिर हमें लेना पड़ेगा. तो इसलिए आप हमारी इस वार्निंग को सीरियसली लीजिए और दोबारा ऐसा कोई भी मैसेज प्लीज़ ना करें वरना फिर हमें सीरियस वे में उसको कन्वे करना पड़ेगा. तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हम एक पॉइंट की तरफ, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि किस तरीके से हमेशा हमने अभी आपको बताया ना कि बच्चों को समझाना चाहिए. लेकिन समझाने के साथ साथ एक तरीका ये भी होता है कि देखिए किसी से आपको बात करनी है, किसी से घुलना है मिलना है, तो वो एक कहीं ना कहने की भी आदत होनी चाहिए. अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, आपका रिलेटिव है कोई भी है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक ना कहने की आदत भी होनी चाहिए जो हमारे अंदर कई बार नहीं होती है. ना कहना इन द सेंस कि वो ऐसी बात कोई कर रहे हैं जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी आप उस बात को सुनते हो. और जब हम ऐसी कोई बात सुनते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है मैम जिस पे हमें बात करना नहीं अच्छा लगता है, मान लीजिए मैम ही है, मतलब मैम तो मेरी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अगर मैम को कोई टॉपिक नहीं पसंद आ रहा है और मैं वही बार बार बात कर रही हूँ तो क्या उनको बुरा फील नहीं होगा कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है और ये वही बिल्कुल उसी पे बिल्कुल बात की जा रही है. तो बच्चों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए. आप वो टॉपिक उठाएं ही ना जो उन्हें पेन दे या पेन ना भी दे उनको बुरा लगे. और अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो आप उसके सामने कह दीजिए कि देखिए मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है और आप उठ के वहां से चले जाएं. रिस्पेक्ट के
5: मतलब मुझे लगता है कि मतलब वहां से रिस्पेक्ट से, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला तो मतलब लगता है कि हाँ बाई रिस्पेक्ट अगर हम आपको मना कर रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट साथ में आपको भी उस बात को समझना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए कि मैं कल नहीं करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा और फिर से आप लोगों का वही रवैया हो जाता है. तो मैंने ये मैं इसीलिए आप लोगों को, हम दोनों लोग मना करते हैं कि आप लोग आपस में बातें न किया करें ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी आते हैं और वो काफी ऊपर चले जाते हैं और हम लोगों को फिर से कॉल करना पड़ता है. तो प्लीज एंड प्लीज जो टॉपिक हम लोग लेकर के आते हैं उन्हें सुने, उस पर प्रतिक्रिया करें.
6: राइट. तो कहीं ना कहीं अभी जैसे कि हमने आपको बताया तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे जो पॉइंट्स हमने बताए वो भी और जो अभी आपको आप ही के भले के लिए बताया है वो भी
5: जी.
6: तो चलिए अब चलते हैं मैम.
5: हाँ, एक ब्रेक की ओर चलते हैं और एंड प्लीज आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको बातें करनी है ना आप लोग पर्सनल जाकर के मैसेज कर सकते हैं. तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को और उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की मॉरल स्टोरी.
7: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है.
8: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
7: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता और भुगतना हमको पड़ता है
8: तो भुगतो.

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में हैं
5: आरजे अंशिका।
4: तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट शुरू करते हैं आज की मॉरल स्टोरी, जो कि हमारे बच्चों के लिए होती है। लेकिन उसके पहले बता दूं, धर्मेंद्र मोहन आवाज से बोल रहे हैं एंड आशु जी आ गई हैं एंड बाकी हमारे सभी वही लिसनर हैं बुद्धि जी। तो चलिए जाते जाते ही सही, लेकिन आप लोग आ गए हैं, थैंक यू सो मच। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर।
5: तो आज की स्टोरी हमारे गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की है।
4: ओके।
5: एक बार माता पार्वती की अनुपस्थिति में गणेश जी और कार्तिकेय जी को बहुत तेज भूख लगी। कार्तिकेय जी अपनी फूर्ति के बल पर अकेले ही भोजन लाने की और बनाने की जिद करने लगे। तो गणेश जी ने उन्हें कहा कि एक काम करते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं।
4: ओके।
5: लेकिन कार्तिकेय भगवान जो थे उन्होंने कहा मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारी, तुम बैठो आराम से और मैं अकेले ही बना लूंगा। और वो अकेले ही बनाने के लिए चले गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो नहीं कर पाए। अब वो क्यों नहीं चले गए? थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो नहीं कर पाए। अब वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कार्तिकेय जी जो थे वो सब काम बहुत जल्दी जल्दी करते थे, फूर्ति उनमें बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने सोचा क्या करूं। और गणेश जी जो थे वो आराम से बैठकर देख रहे थे कि ये मेरे जो भैया हैं वो क्या कर रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने कहा, वो गए वहाँ उनके कार्तिकेय भगवान के पास और उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, आधा काम आप करो और आधा काम मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि लकड़ियाँ, पानी और फल जो भी सामान लाना था वो सारा उन्होंने कहा कि कार्तिकेय भगवान को कहा कि आप लाइए, और उसके बाद गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से उस चीज़ों के साथ खाने को बनाया। और जब उन्होंने बनाया तो खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना और बहुत ही जल्दी भी। इसके बाद उन्होंने जब दोनों लोगों ने खा लिया और वो आराम से बैठे हुए थे तो गणेश जी ने उनसे कहा कि जो काम अकेले करना बहुत मुश्किल था वो हम दोनों भाइयों ने साथ मिलकर हंसते हंसते कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि टीम वर्क जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है।
4: बिल्कुल।
5: हर काम अकेले नहीं हो सकता और जब किसी का साथ मिल जाता है तो हर काम आसान हो जाता है।
4: बिल्कुल। और इसी के साथ में जैसे सुन सहेली है, आप सभी को पता है कि जब तक सुन सहेली में हम दोनों नहीं होंगे तब तक उस सहेली प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अंशिका का घुमा फिरा के कहने का सेंस यही था और वो कह नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने उसको ब्रीफ कर दिया आपके सामने। तो चलिए भाई, हमें दे इजाजत और हम कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
5: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। भैया पहली बार एक दूध भात वाली गलती हो गई हमसे। भाई गलती हमारी है या फिर कहिए क्या दिक्कत है, टेक्निकल एरर की वजह से आज हमें आने में थोड़ी सी लेट हो गई, यानी कि आपकी आरजे आयुषी को थोड़ी सी लेट हो गई। आई हूँ मैं, पर भाई आपसे ये भी वादा करती हूँ कि इस गलती की भरपाई हम लोग करेंगे। आज नहीं नहीं नहीं फिर कभी करेंगे और दूध समेत करेंगे, लेकिन आज की गलती को दूध भात कहते हैं ना कि पहली गलती दूध भात होती है, दूध भात मान के भूल जाते हैं और अपनी फरमाइशों पे जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रखा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि हमें आने में थोड़ी सी लेट हो गई, आई एम सो सॉरी। और अब चलते हैं अब हमारे गाने पे, जो कि फरमाइशी है। अभी तक आप सुन रहे थे आँखों की गुस्ताखियाँ सॉन्ग, जो कि हमारे रेनू जी की फरमाइश है। रेनू जी आपकी फरमाइश आप इंजॉय कर रही हैं, इंजॉय करिए। इसके बाद आते हैं हम लेके आप सभी की बाकी सारी फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: हाँ जी दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा, जिसमें होती है आप सभी की फरमाइशें पूरी। जी हाँ, समय बहुत कम है, बातचीत कल करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल चलते हैं हमारी फरमाइश की तरफ, जो कि है देवी प्रसाद जी की। देवी प्रसाद जी को सुनना है हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। बिल्कुल भाई, हम और आप बिल्कुल एक डोरी से बंधे हैं, जिनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बन चुका है। एंजॉय करिए अपना फरमाइशी सॉन्ग, मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, कहीं नहीं जा रहे, एक डोरी से बंधे हैं तो कहाँ ही जा सकते हैं भाई। लेकिन आज थोड़ी सी देर हो गई, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में आपने पूरा भूचाल ला दिया भाई। एक दिन जरा सा टेक्निकल एरर क्या हो गया, इतनी छोटी मोटी चीजें तो हर किसी की जिंदगी में होती रहती हैं। आज पहली बार हमसे हुई, इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और चलते हैं नेक्स्ट फरमाइशी सॉन्ग की तरफ, जो कि है अमित जी की, जिन्हें सुनना है तुम तो धोखेबाज हो। अमित जी, धोखेबाज आप किसको बोल रहे हैं, अपने आप को, किसी और को, या फिर किसी और को? सुनते ही बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आशा करती हूँ कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को भी, और आज के गानों की फरमाइश को भी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट गाना भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है, क्योंकि ये गाना किसी पार्टी में ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन सा गाना वो तो आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूँ हमारे ताबिश जी की फरमाइश पे ये गाना है कट्टों की लहरी, जो कि चिराग पासवान ने इसमें काम किया है, श्वेता तिवारी ने काम किया है, और आवाज़ इसमें हमारे दिलेर मेहंदी जी के। सुनते ये बहुत ही प्यारा सा गाना, एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

भाई वाह, आज तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्ञान असली एफएम को पूरा डिस्को बना के छोड़ेंगे भाई, क्या गाना। और नेक्स्ट फरमाइश जो है वो भी बड़ी प्यारी सी है, वो भी उसकी तरफ भी चलेंगे। हमारी अनन्या मिश्रा जी की फरमाइश है, सोल्जर सोल्जर दिल मेरा चुरा के ले गया। भाई मुझे लगता है कि सारे सोल्जर्स दिल ज़रूर चुराते हैं, क्योंकि भाई उनकी जो पर्सनैलिटी है वो तो देखते ही बनती है, और वो हमारी रक्षा करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे बॉर्डर पे रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो हमारे तक आँच भी ना आए, और वो इस काम में खरे उतरते हैं। तो सोल्जर तो दिल चुरा ही लेते हैं। ये गाना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सुनते हैं ये बहुत प्यारे से गाने को और इन्जॉय करते हैं, जो कि फरमाइश है अनन्या मिश्रा जी की। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी भाई, मुझे भी नहीं समझ में आता ये प्यार आखिर हो क्यों जाता है और कैसे हो जाता है। मुझे तो इसका प्रोसेस ही नहीं समझ में आता कि भाई शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है। बस ये पता चलता है कि भैया किसी से हमें लगाव हो गया। अब लगाव को प्यार का नाम देना जायज है या फिर नहीं, ये तो आप ही सब बता पाएंगे। तो ये जल्दी से आइए चैट बॉक्स में इस सवाल का, इस बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का जो कि बहुत सारे लोगों की, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कि इस वोटिंग में क्या होता है कि हाँ लगाव को प्यार समझना चाहिए या फिर नहीं, आखिर में ये होता क्या है, उसको हम उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन नेक्स्ट फरमाइश के साथ, जी हाँ नेक्स्ट फरमाइश की तरफ भी चलेंगे हम, जो कि हमारे RCM बबलू पांडे जी की, जिन्हें सुनना है दीदी तेरा देवर दीवाना, जिसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारी माधुरी दीक्षित सलमान खान की और आवाज़ है लता मंगेशकर फ्रॉम दी मूवी हम आपके हैं कौन। भाई ये ऐसा कोई बंदा नहीं है पूरे विश्व में जिसने ये मूवी ना देखी हो, और ये मूवी का ये आइकॉनिक गाना और इस गाने में पहनी हुई एक आइकॉनिक साड़ी हमारी माधुरी दीक्षित ने, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा। Stay tuned.

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आज की प्लेलिस्ट का आनंद भी उठा रहे होंगे। भैया बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फरमाइशें रहती है आप सबकी। मुझे दिल से इतनी खुशी होती है कि इतने अलग अलग से गाने आप लोग लाते कहाँ से। इसी के साथ साथ मेरी भी नॉलेज अच्छी हो जाती है कि कहाँ से कौन से गाने कौन सी मूवी से हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हमारे चैट बॉक्स की तरफ। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। भाई सबसे पहले हम आते ही मैंने आपसे बताया कि हमसे थोड़ी सी गलतियां हो गई, थोड़ी सी टेक्निकल एरर। वो कहते हैं ना हमारी अवधि में भैया कभी कभी हमारा सनिचर भारी हो जाता है, इसीलिए 3:30 बजे तक हमारा सनिचर थोड़ा सा भारी था, टेक्निकल इशू हो गया और अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। आज के बाद आपकी कॉलर ट्यून में ज़रा सी भी गलती नहीं होगी, ज़रा सी भी देर नहीं होगी। हम आएंगे और आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करेंगे। आज बहुत लोगों की फरमाइशें छूट गई हैं, जिसकी वजह से तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी होंगी। 2 घंटे का वक्त है, आपकी सारी फरमाइशें पूरी होंगी। तो मुझे लगता है कि पहली गलती को दूध भात करके आज की चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। अभी तक आप इन्जॉय कर रहे थे RC बबलू पांडे जी की फरमाइश पे एक बहुत ही प्यारा सा गाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था कि भैया प्यार को जो है वो सॉरी लगाव को प्यार समझना चाहिए या फिर नहीं। हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कमल एन जी कह रहे हैं लगाव एक भावनात्मक संबंध है, प्रेम और सहारे पर निर्धारित होता है। वाह, ये तो एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ जवाब हुआ। थैंक यू सो मच आप सभी का, धर्मेश जी, कमल नयन जी, आप सभी का, कि आप सब इतने अच्छे अच्छे से जो है हमारे जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे हमारे साथ, हमारा प्यार आपके साथ, और अपना शो अपना रेडियो को ऐसे ही प्यार बरसाते रहे। चलते हैं लास्ट फरमाइश की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा समय ने इजाज़त दे दी है। और आज की चीज़ों को हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, घर घर की बात है भाई, आपस में दूध भात हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे नयन जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं साथ ही साथ। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9

0: धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया

0: कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो यानी कि विज्ञान शाला में, जहां होती हैं बातें विज्ञान की और ज्ञान की, लर्निंग होती है क्यूरियोसिटी के बियॉन्ड, यानी कि आपकी जिज्ञासा ही आपका ज्ञान बढ़ाने वाली है, कि आपको पता है। फिलहाल आज शाम यानी कि आज की शाम एक स्पेशल डे को डेडिकेटेड है, तो आज उससे जुड़ी बातें करेंगे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी जानेंगे जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बस उन्हीं के बारे में। तो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी बेहतरीन सी शाम में आरजे बीना के साथ आपके विज्ञान शाला वाले शो में, जहां बातें होती हैं आपके लिए खास। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जल्दी से बता दूं आज की, आज है 21 जुलाई, और 21 जुलाई का सेलिब्रेशन होता है एक खास दिन के रूप में, नेशनल जंक फूड डे। यस, को इंटरनेशनल जंक फूड डे भी बोल सकते हैं। तो हर साल 21 जुलाई को दुनिया भर मनाता है ये दिन, और इस दिन लोग बिना किसी अपराध बोध के अपने पसंदीदा स्वादिष्ट स्नैक्स, बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स का आनंद लेते हैं। यानी कि देखो भाई, ये सारी चीजें, ये बात तो सही है कि जंक फूड कैसा भी हो, टेस्ट में भाई कोई इसको बीट नहीं कर सकता। कोई ऐसा है जिसको टेस्ट में जंक फूड से मतलब किसी भी तरह की एलर्जी हो? तो मैं अभी बहुत सारे लोगों से पूछने भी वाली हूँ किसको किसको कौन कौन सा जंक फूड पसंद है। तो आप लोग कहेंगे वाह क्या बात है, कोई ऐसा भी दिन है जिस दिन हमारे जंक फूड को अप्रिशिएट किया जाएगा? जी हाँ, तालियां बजा के कहा जाएगा कि भाई आप खा सकते हो, लेकिन एक दिन, रोज नहीं। ठीक है, इस दिन को मनाने के पीछे जो एक मतलब मोटिव है या एक सोच है, वो सोच ये है कि लोग अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करें यार। चाहे जो बहुत सारे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग जंक फूड की दुकानें लगा के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा भी है। हालांकि इसके साथ हमें एक पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड फूड डाइट भी लेनी चाहिए। मतलब अगर आप पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हो तो घर पे भाई आपका शुद्ध देसी खाना होना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां हों, आपका मतलब पल्सेस हों, सारी वो चीज़ें हों जो आपकी जो कमी है उसको पूरा कर सके। ठीक है, और फिलहाल अगर हम देखें तो जंक फूड की परिभाषा अगर किसी से पूछी जाए तो कोई क्या ही कहेगा। मुझे लगता है कि जंक फूड की जब परिभाषा की बात आएगी तो सब लोग हाथ खड़े कर देंगे, यार जंक फूड मतलब बहुत हाई कैलोरी वाला फूड, जंक फूड मतलब बहुत कम पौष्टिक फूड, ऐसी कुछ परिभाषाएं आप लोग देंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि इसकी एक बढ़िया सी परिभाषा है, इसे आमतौर पर हम कैलोरी, नमक, चीनी, वसा की मात्रा से परिपूर्ण लेकिन कम पोषक तत्वों वाला खाना बोल सकते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन, विटामिन्स कम होते हैं, पर वसा यानी कि फैट, शुगर, इसका कंटेंट काफ़ी हाई होता है। हाँ, पेट भर देता है, मज़ा आ जाता है, पर क्या करें, आज इसकी बात करनी है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा जंक फूड की साइंस को भी समझ लेते हैं, जंक फूड का साइंटिफिक कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों का, जो कहते हैं ना कि ये मेल जोल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ी सी ही देर में, लेकिन पहले एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं, और जंक फूड वाला गाना सुनने का मन है तो आप लोग आरजे बीना के साथ जुड़ जाइए। और ये गाना एंजॉय करिए।

0: वापस से आपकी आरजू बिना आपके साथ है लाइव आपके वाले शो विज्ञानशाला में, जहाँ लर्निंग होती है बियॉन्ड द क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे लेकिन सवालों के साथ। और मैं अपनी, मतलब कहते हैं ना कि ऑफिस की भीड़ में से किसी को पकड़ के ले आई हूँ, और वो मतलब बहुत ही प्यारी सी लड़की है, और उससे जानेंगे कि उसकी जंक फूड को लेके क्या सोच है। मतलब वो ज़्यादा खाना पसंद करती है, यानी पहले तो उसी से जान लेते हैं वो कौन है, क्या है, कैसे है। फिलहाल सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ निधि का। गुड इवनिंग निधि, हाउ आर यू फीलिंग नाउ?
1: गुड इवनिंग मैम, मेरी फीलिंग तो बहुत अच्छी है आपके साथ आने के बाद।
0: ऑफ कोर्स मेरे साथ आने के बाद फीलिंग अच्छी है, तो ये मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अब सवाल थोड़े कम करूँगी, सवाल तो वैसे ही करूँगी ऑफ कोर्स। सो निधि, ये बताओ कि आज सुबह से, जैसे कि आज डेट क्या है, 21st of July, ओके?
1: यस।
0: तो आज सुबह से, मतलब सुबह कितने बजे उठी हो? अराउंड
1: 5:30।
0: 5:30, गुड। मतलब है दुनिया में आप लोग के अलावा ऐसे लोग जो जल्दी उठते हैं? आप लोग को लगता है ना कि आप लोग उठते हैं जो काम करने वाले? यहाँ ऐसे भी हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम नहीं होता तब भी जल्दी उठते हैं। फिलहाल चलो, सुबह उठने के बाद अभी मतलब बज रहे हैं शाम के 5:20, 41 सेकेंड, और 41 सेकेंड तक आपने कितना जंक फूड कंज्यूम किया?
1: मैम आज मैंने जंक फूड में कुछ नहीं खाया है।
0: कुछ भी नहीं? सोच लो, टॉफी भी जंक फूड में आती है।
1: यस मैम, मुझे अच्छे से याद है।
0: चिप्स भी आता है
1: मैम, आज मैंने जंक फूड।
0: हल्दीराम की नमकीन भी आती है।
1: सॉरी पर ये मैं खा ली हल्दीराम वाली।
0: पता नहीं क्यों सब हल्दीराम वाली। हाँ माना कि उसमें हेल्दी शब्द आता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा तेल का यूज करके बनती है।
1: यस मैम।
0: सो जंक फूड है, मतलब क्या हम लोग लाइफ विदाउट जंक फूड इमेजिन कर सकते हैं?
1: मैम आपकी जनरेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है?
0: जनरेशन तो नहीं कर सकते हैं।
1: वही मैम, हम लोग नहीं मैम। सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट लंच कर ले रहे हैं बहुत हेल्दी का, तो इवनिंग में आपको कुछ चाहिए तो चाहिए, आप बाहर चले जाएंगे या आप खुद अपने मंगा ही लेते हैं।
0: मतलब अगर हम डे विदाउट जंक फूड इमेजिन करें तो हमारी इमेजिनेशन स्टॉप हो जाएगी, लाइक मोबाइल विदाउट लाइफ विदाउट मोबाइल टाइप। अरे भाई, मोबाइल की जगह ले ली है जंक फूड ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। जंक फूड आपके लिए मतलब एक उपलब्धि है। एंड आपको बताऊं निधि, आज इंटरनेशनल जंक फूड डे है, एंड जंक फूड डे हमें ये रिग्रेट कराने के लिए नहीं कि जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, आज हमें भर भर के जंक फूड खाना चाहिए, ये डे इसलिए सेलिब्रेट।
1: मैं वही पूछने वाली थी कि जैसे और सारे डे को मनाते, तो हमें वही मदर्स डे पे कुछ अच्छा करना चाहिए, सिस्टर डे, तो क्या आज हम उतना जंक फूड खा सकते हैं?
0: वैसे मुझे नहीं लगता कि जंक फूड सेलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि हम रोज सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नहीं मैम, कुछ लोगों का रूल होता है, जैसे आपने डिसाइड किया होगा कि आप 7 डे में एक दिन ही जंक फूड खाएंगी, अपने रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ।
0: लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि नमकीन आ गई, तो ऐसा मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ है, मतलब ये तभी हो सकता है जब हम लोग स्ट्रिक्टली ये चीज़ सोच लें कि नहीं भाई नमकीन नहीं आएगी घर में, आएगी तो घर की बनी हुई चीज़ें होंगी। एनीवे
1: दिक्कत ये भी है कि अभी लोगों को वो जानकारी नहीं कि जंक फूड में क्या क्या आ रहा है। जैसे आपने अभी मुझे गिनाया, जब हल्दीराम पे आया तो मुझे ओ हाँ मैंने तो खाया था, नहीं तो पहले मैं कह रही थी नहीं मैंने नहीं खाया था।
0: एनीवे फिलहाल आज हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हैं, तो जंक फूड की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों की बात करेंगे। तो फिलहाल जंक फूड की अच्छी बात ये है कि जंक फूड इजीली अवेलेबल होता है, इजी टू कुक होता है।
1: यस मैम।
0: एंड कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूख तो एकदम सही कर देता है, मतलब छोटी भूख के लिए जंक फूड इज द ओके वन।
1: मैम कभी आपका बहुत मूड अपसेट हो तो मुझे लगता है जंक फूड बहुत अच्छा कर देता है।
0: वाह, जंक फूड से जुड़ी मुझे एक बात और पता चली कि इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस देन यू के। ऐसे मैंने एक मूवी में देखा था कि एक लड़की थी, उसको बहुत डिप्रेशन होता तो वो जलेबियां बनाती थी एंड जलेबियां खाती थी। फिलहाल वो जंक फूड की कैटेगरी में आएगा, भले उसने घर पे ही बनाया जलेबियां, ऑब्वियसली मतलब डीप ऑयल में नहा के निकलती है बाहर।
1: मैम ये लाइन, खुशी का रास्ता पेट से होके जाता है
0: लेकिन जंक फूड से होके नहीं जाता है।
1: कभी कभी चले।
0: फिलहाल ये बताओ आप निधि कि आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है?
1: मैं मुझे मोमोज बहुत पसंद है।
0: मोमोज, ओ माय गॉड। फिलहाल मोमोज जो है मतलब हाँ, उसकी स्टफिंग की बात अगर कहें हेल्दी है तो फिर ठीक है, बाकी उसकी कवरिंग यानी कि मैदा इज नॉट हेल्दी।
1: यस मैम, मैंने आटे का भी ट्राई किया था पर वो उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैदे का लगता है।
0: आटे वाली मैगी भी नहीं अच्छी लगती, लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं आटा मैगी है वो।
1: यस
0: मतलब मैगी इज ऑलवेज बी द मैगी। मैगी के ही फॉर्म में होनी चाहिए। हाँ उसमें तड़के शड़के लगा दो वो बात अलग है, बट मैगी का टेस्ट कभी आटा मैगी ले ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल नहीं मैम, आपकी जगह जैसे कोई आरजे नहीं ले सकती।
0: ओके फाइन, ये तो बात हो गई जंक फूड की। अब मैं बताती हूँ जंक फूड में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, फिलहाल आगे अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो नहीं अच्छी। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, जैसे शुगर भी हम लोग आम भाषा में बोलते चीनी, लेकिन चीनी मीठी वो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, चीनी तीखे के फॉर्म में भी आपके अंदर जा रही है।
1: जी मैम।
0: एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द फैट, जिससे हम दूर भागते हैं लड़कियाँ स्पेशली, मैं भी बहुत दूर भागती हूँ, मैं ऑयली चीज़ें ना के बराबर खाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे जंक फूड से दूरी बना के रखना पसंद है। हाँ मैं ये नमकीन वमकीन वाला कॉन्सेप्ट तो मतलब मेरा रोज का है, मैं रोज़ खाती हूँ, इसके लिए मैंने जैसे नमकीन का नाम लिया तो खुद के ऊपर भी उंगली उठा ली तुरंत कि मेरी डाइट में मैं चाय नहीं पीती बिना नमकीन।
1: नहीं मैम, पर मेरे यहाँ ये मेरा रूल है कि मेरे यहाँ नमकीन बिस्किट चाय जितना मैं कभी खाती नहीं, ये है कि कभी कटोरी में दिख गई तो मैंने खा लिया। आज जैसे आपने अभी ये नाम लिया तो मैं यहाँ आई थी, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं नीचे गई फिर मैंने वो हल्दीराम का नमकीन लेके खा लिया।
0: मतलब जंक फूड ऐसे होते हैं ना जैसे छोटे बच्चे हों जिन्हें देख के खिलाने का मन करता है
1: और वो देख के खाने का मन करता है,
0: और वैसे ही जंक फूड होते हैं जिन्हें देख के ओह माय गॉड थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी अगर चेकलिस्ट में टॉप पे जंक फूड नहीं आ रहे होंगे, चाहे किसी के समोसे होंगे तो किसी के कुछ होंगे, बट जंक फूड की लिस्ट में मतलब नाम होगा।
1: मैम शाम को आप रोड पे निकल के तो देखिए, आप अपने रूल को तोड़ देंगी।
0: बेस्ट जंक फूड का अवार्ड आज तो मैं खाऊंगी, क्योंकि आज जंक फूड डे है तो जंक फूड बुरा मान जाएगा कि भाई मैं रोज मतलब तलता हूँ भुनता हूँ सबके सामने, मतलब एनी टाइम अवेलेबल हूँ, शादियाँ हों पार्टियाँ हों बर्थडे हो कोई भी सेलिब्रेशन हो दुख हो दर्द हो सबके yes, साथ yes. हूँ, उसके बाद भी मेरी सब बुराइयां ही करने में लगे रहते हैं। मतलब स्कूल में नो जंक फूड इन द टिफिन ऐसे टीचर्स बोलते हैं, जैसे लगता है जंक फूड ना मानो कोई भूत प्रेत हो। फिलहाल हाँ थोड़ा कम हो, लेकिन अगर उसी के बैलेंस में निधि अगर मतलब आज आपने जंक फूड खाया उसके बैलेंस में घर जाके अच्छे से पल्सेस दालें वगैरह खा लें तो वो जो स्कैरसिटी हुई न्यूट्रिएंट्स की जो कमी आई वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट फूड जंक फूड का अवार्ड आप किसे देना चाहेंगे अपनी चेकलिस्ट में, कि मतलब अगर मेरे सामने सारे जंक फूड ऐसे लगे हो,
1: यस मैम,
0: डाइनिंग टेबल है या कोई टेबल है जिसपे सिर्फ जंक फूड ही जंक फूड हो, तो पहला नंबर किसे आएगा?
1: मैम पहला नंबर पे मोमोज ही आएगा।
0: ओह अच्छा, मेरे साथ जानती हूँ क्या, बेकरी प्रोडक्ट्स आई लव, कपकेक्स है तो मतलब मैं कुछ नहीं पहले कपकेक उठा के खा लूंगी। yes. मुझे कपकेक बहुत पसंद है, बहुत बहुत, मतलब मेरे घर में मतलब छोटे बच्चों के लिए आएगा तो मैं पहले से चुरा के दो चार अपने लिए रख लूंगी, फिर उनसे मांग के खाऊंगी, एक तो दे दो। सो आई लव बेकरी फूड, अगेन इट्स जंक फूड। तो थैंक यू सो मच निधि अपना ओपिनियन देने के लिए, और कोई मैसेज जो आप अपने यूथ को देना चाहती हैं रिगार्डिंग जंक फूड?
1: आप जंक फूड खाइए पर आपका एक वो होना चाहिए नियम, आप हफ्ते में कितने दिन खा रहे हैं और जितना हिसाब से खा रहे हैं
0: मतलब हम थोड़ा पेरियोडिसिटी मेंटेन करके रखें, कि ये नहीं कि मतलब खा रहे हैं तो रोज शाम को समोसे खा रहे हैं या खाने के बाद समोसा फिर हमें मिल रहा है तो लाओ यार खा ही लेता हूँ फ्री का है।
1: और एक तो चलिए आप खा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप सुबह उठ रहे हैं और मोमोज खा रहे हैं, कुछ अच्छा खाइए, चना भिगो के रखिए खाइए, मूंग का दाल भिगो के,
0: मतलब पैरेलल हमारी एक हेल्दी डाइट चलनी चाहिए। ओके
1: जी बिल्कुल।
0: थैंक यू सो मच निधि, बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। अगर आप ऐसा फॉलो कर रही हैं या सभी ऐसा अगर फॉलो करने लगे तो आई थिंक थैंक यू जंक फूड, जंक फूड को हमारी लाइफ में होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल होना चाहिए, मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में एक खुशी का वही फोन के बाद बचा है जंक फूड।
0: ऑब्वियसली मतलब कहीं कहीं भी जाओ कभी कहीं भी जाओ बट जंक फूड खाने के बाद उस सिटी को हम जज कर पाते हैं यार यहाँ कुछ खाने खाने
1: ये बात आपने की। मैं भी बनारस गई थी अभी जल्दी में, अब वहाँ का जो खाना भाई इतना टेस्टी होता था मैम। अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मंगाया खाने को, अब जैसे आपने मंगाया आप की डोर बेल बजी तो आपने उसको छुपाया कि सबके साथ खाया?
0: मैंने तो भाई सबसे पहले खा लिया
1: मैम,
0: फिर उसके बाद सोचा यार मैं मतलब डिपेंड करता है अमाउंट, अगर ज्यादा है तो छुपाना पड़ेगा और कम है तो भाई उसको तुरंत ही मैं खा लूंगी, फिर
1: दरवाजा मैं छुपा देती हूँ कि आए
0: एंड वन मोर थिंग दैट सिटीज की अगर बात करें वो तो जंक फूड की, लेकिन मुझे जब किसी सिटी को जंक फूड मतलब जंक फूड के प्रोस्पेक्ट में जज करना होता है तो सबसे पहले आ जाता है पानीपुरी का नंबर। जहाँ की पानीपुरी अच्छी उस सिटी का खाना अच्छा।
1: ये बात मैंने भी देखा कि मैं चलती जाऊंगी अगर कहीं पानी पूरी का ठेला दिख गया तो बस रुक जाओ निधि, अब नहीं आगे जाना है, खा लो फिर जाओ।
0: एंड मतलब पता नहीं क्यों अपने गोंडा की पानी पूरी अच्छी है, मतलब हर जगह से अच्छी होगी मुझे नहीं पता, पर मैं अभी रिसेंटली नहीं बोलूंगी, 5-6-7 महीने पहले मैं राजस्थान गई थी, राजस्थान में मैंने पानी पूरी खाई, मतलब मेरा मन उड़ गया कि भाई इतनी खराब पानी पूरी क्यों।
1: मैम आगरा में भी मैंने खाई थी और इतनी गंदी वो लगी थी।
0: आलू की स्टफिंग नहीं समझ में आई, आलू मतलब अजीब सा लगता है पानी पूरी में, वो अजीब वाली फीलिंग देता है, जो मटर का टेस्ट है
1: वो अलग ही रहता है, एक तो मटर में जब कुछ खट्टा पानी डाल दो तो वो टेस्ट बढ़ जाता है,
0: एंड वो आलू डाल के दिया वो मुंह में जाते ही अजीब सा हुआ, निकल यार ये कैसी पानी पूरी है, मजा ही नहीं आया, वो क्रिस्पी वो क्रंचीनेस वो मटर से आती है। तो अगर मुझे पानी पूरी के लिए मतलब किसी सिटी को जज करना हो तो हाँ लखनऊ में भी पानी पूरी ठीक ठीक मिलती है और बनारस में भी, बट मैं कुछ स्टेट्स की बात करूँ तो मुझे दिल्ली की पानी पूरी अच्छी लगी, दिल्ली में पानी पूरी अच्छी मिलती है।
1: यस मैम,
0: बट मुझे राजस्थान की पानी पूरी, हाँ राजस्थान के वो खाखरे वगैरह जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो ऑयली चीज़ें मतलब डीप ऑयल में जो तली हुई होती है। तो आज बहुत सारी बातें होंगी जंक फूड पे, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, आज जंक फूड की बुराई तो कतई नहीं होने वाली है। तो चलिए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम निधि को बोलते हैं जाएं एक जंक फूड की पार्टी अटेंड करके आएं, और आज की पार्टी मेरी तरफ से इस जंक फूड वाली इवनिंग में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग योर फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजे बिना, स्टे ट्यून्ड।

0: इस हाई एनर्जी वाली टाइम में आपकी खुशी की बात ना करें तो आरजू बिना के होने का क्या मतलब है। सो वन एंड ऑल अगेन आप सभी का स्वागत है, सचिन, हरिशन एंड सोनिया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। वैसे आप सभी को पता है विज्ञानशाला में आरजे बिना लाइव है एंड डोंट कंसीडर दैट मैं जीएमएम में हूँ। फिलहाल आपके साथ विज्ञानशाला में लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी के साथ आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 एफएम लाइव है एंड कुछ ही देर में मैं और भी लोगों को लेके आई हूँ जो अपने अपने ओपिनियन देने वाले हैं आपके फेवरेट डे यानी कि इंटरनेशनल जंक फूड डे पर। तो चलिए लाइव होते हैं हमारे दो और लिसनर कम हमारे को पार्टनर हमारे साथ ही स्टूडियो में बच्चे रहते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें इन लोगों से सीखने को मिलती है और खाने को भी मिलती है। कभी कुछ खिलाते हैं कभी कुछ खिलाते हैं, इसलिए ये लोग मेरे लिए खास भी हैं क्योंकि जंक फूड तो नहीं उसे खाने को मिलता है। तो सबसे पहले इन लोग के पास चलते हैं, लेकिन आप लोग अपनी जो कान है ना थोड़े अलर्ट कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी चेकलिस्ट कहीं खाली जा रही हो। सो लिसनर्स हमारे साथ लाइव हैं दो हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स जिनका नाम है आयुषी एंड सौम्या। वेलकम आयुषी, वेलकम सौम्या। सबसे पहले आयुषी के पास चलते हैं। आयुषी कैसा फील कर रही है आप?
1: बहुत अच्छा मैम।
0: सो आज है इंटरनेशनल जंक फूड डे। आयुषी तो क्या लगता है जंक फूड की बुराई होगी कि अच्छी चीजें बात होंगी? बात तो सही है। जब कोई कहे कि मोबाइल से दूर रहना है और मोबाइल की अच्छी चीज़ें कोई बताना शुरू कर दे तो लगता है कि यार अपनी वाली बात हो रही, मैं तो मोबाइल बहुत चलाती हूँ जान लगा के। अचानक से कोई कह दे कि वो कौन लोग हैं जो दिन में 10 घंटे मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें, तो लगेगा कि अरे यार मैं तो चलाती हूँ। सो फिलहाल जंक फूड के साथ भी यही केस है, हम लोग इतना जंक फूड खाते हैं, इतना तो नहीं लेकिन हाँ कि मिल जाए तो मना नहीं करते। अभी कोई पूरी सब्जी या दाल चावल कोई पूछेगा तो कोई खाने के लिए हाँ बोलेगा?
1: नहीं मैम।
0: सौम्या तुम बोलोगी?
2: नहीं मैम, दाल चावल ये थोड़ा मना कर सकते हैं, पूरी सब्जी के लिए बिल्कुल भी नहीं।
0: नहीं तुम खा के आई हो पेट भर खाना घर से तब?
2: और अगर तो मनपसंद चीजें होंगी तो बिल्कुल खाऊंगी।
0: नहीं नहीं मनपसंद नहीं, खाने की बात करूँ, खाने के बाद कोई खाना पूछे तो मना कर देते हैं हम लोग। लेकिन जंक फूड के बाद जंक फूड बार बार पूछा जाएगा तो हम शायद बार बार खाने के लिए हाँ बोलेंगे।
1: यस मैम।
0: सो फिलहाल हम चलते हैं आयुषी से कुछ सवाल करने रिगार्डिंग जंक फूड। तुम्हारा फेवरेट जंक फूड क्या है आयुषी?
1: मोमोज और मंचूरियन।
0: मोमोज को एक और पॉइंट मिल गया। इससे पहले निधि आई, उसने बोला उसका फेवरेट मोमोज है एंड यस आयुषी का मोमोज है। सौम्या का भी लगे हाथ पूछ ही लेते हैं।
2: मैम मेरा तो चाउमीन है और साथ में मोमोज भी है।
0: मतलब ज्यादा पॉइंट्स 10 में से कितने पॉइंट मिलेंगे मोमोज और चाउमीन को?
2: चाउमीन को 8 और मोमोज को 9।
0: देखो यही तो मैं कहना चाह रही थी, आखिर इतने कम समय में मोमोज ने अपनी जगह कैसे बनाई, जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा कैसे पॉसिबल है ये मोमोज के साथ। हर दूसरा इंसान कहता है मोमोज फेवरेट है, मोमोज फेवरेट है। मैं मोमोज मतलब मैं कभी कहीं जाती भी हूँ किसी जगह मैंने ऐसे बोल दिया खुशी में, मतलब मरे मन से ही कहा होगा कि आज मेरी तरफ से पार्टी है, मैं मोमोज खिला दीजिए, चिल्ला के बच्चे बोल देते हैं। मतलब क्यों मोमोज ने इतनी बड़ी जगह क्यों बना ली, क्या खास बात है? मोमोज के बारे में सबसे पहले ओपिनियन लेते हैं आयुषी से। व्हाई मोमोज इज सो स्पेशल इन द क्राउड?
1: मैम जंक फूड तो है लेकिन उसमें वेजीज जो है वो हेल्दी बड़ी होती है वैसे, और टेस्ट में भी वो अमेजिंग होता है, और उसकी जो तीखी वाली चटनी होती है, मतलब कितना भी मूड ऑफ हो अगर वो मिल जाए ना तो मतलब दिन बन जाता है।
0: मतलब सेम आप सुन रहे हैं आप लोग कि इंसान ये कह रहा है कि मोमोज को खा के डिप्रेशन दूर होता है, आप दुखी हो तो आपको खुश कर देता है मोमोज। ये बात सेम निधि ने कॉपी की और अभी ये सौम्या भी कह रही है। मतलब भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोमोज को एंटी डिप्रेसेंट मान रहे हैं। अरे दवाइयों की दुकानें बंद हो जाएंगी, मोमोज वाले लग रहे हैं बंद करा देंगे। ओके फाइन, मोमोज को लेके आपका ये ओपिनियन है, चटनी अच्छी है, स्टफिंग अच्छी है, मूड अच्छा करता है कितना भी दुखी हो आप। ओके बाय, ठीक है मान लिया। अब सौम्या से पूछता हूँ, सौम्या व्हाट अबाउट यू?
2: मैम सेम ही है मेरा भी, लेकिन वो जो चटनी होती है ना उसका स्वाद ही अलग होता है, वो बहुत अच्छी होती है। उसको नाम ही उसका सुन के ना मुंह में अलग से ही पानी आ जाता है।
1: वैसे अभी मेरे आ रहे हैं
0: मोमोज को देख के मुझे थोड़ी जेलस फील हो रही है, कितनी तारीफ तो मेरी कोई ना करे जितनी मोमोज की कीचड़। ओ माय गॉड, सो कौन कौन है भाई मोमोज वाले? देखो यहाँ देखो लाइन से लड़कियाँ आने लगी, अनोखी आ गई है मोमोज वाली, उसने भी हार्ड भेज दिया है भाई। मान सकते हैं मोमोज की अपनी वैल्यू है। ठीक है, मोमोज के बाद अगर दूसरे नंबर पे, अच्छा ये बताओ मोमोज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की बात करें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, पसंद है ना बहुत, बताओ सौम्या? So, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भर भर के होती, कैलोरीज बढ़ाता है आपकी बॉडी में और इसीलिए आपको ज्यादा पसंद है। ठीक है कोई बात नहीं, मोमोज खाओ मोटे हो जाओ मुझे क्या है। लेकिन फिलहाल आज के लिए नो फाउंडेशन, आज घर जाते समय चंदा मांगो, मांग लो, पैसे नहीं है, रिक्शे से जाने के पैसे रखे तो भी मोमोज खा लो, लेकिन आज जरूर खा लेना बेचारे, मतलब जंक फूड का डे है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है।
2: यस मैम बिल्कुल,
0: आज सेलिब्रेशन होगा। तो फिलहाल के लिए चलो मोमोज की बात हो गई। इसके अलावा अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आज सुबह से लेकर आपने कोई जंक फूड खाया कि नहीं? ऑनेस्ट दिमाग लगा लो, सुबह 5 बजे उठे हो, कितने बजे उठे हो? सौम्या कितने बजे उठे आप?
2: मैम
0: 7 बजे उठ गई हूँ। 7 बजे क्या बात है 7 बजे उठी हैं और 7 बजे से लेके अभी बज रहे 5:47:31 अभी तक आपने कितना जंक फूड खाया सोच के बताना, ये हल्दीराम नमकीन टॉफी सब काउंट होगा?
2: मैंने तो खाए हैं दो बार।
0: वाह, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ना खाया हो। ओके आयुष, व्हाट अबाउट यू, आपने सुबह से कितना जंक फूड कंज्यूम किया?
1: अभी तक तो खाया नहीं है, लेकिन अभी जाते टाइम जो है वो प्लानिंग है खाने की, और एक नहीं दो तीन जंक फूड।
0: मतलब जंक फूड को लेके थोड़ा सा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं कि नहीं भाई उसका दिन है, बर्थडे है, उसका सेलिब्रेट किया जाएगा।
1: आते ही मैं सोच रही थी पानी बताशे खाऊंगी, फिर मैंने बोला
0: पानी बताशे के लिए तो शायद ही कोई ऐसा हो, मतलब अगर इंडिया के जंक फूड की बात करें तो अगर बेस्ट जंक फूड का अवार्ड देना हो, मोमोज हमारी पसंद है, तो किसको दिया जाएगा?
2: मैम गोलगप्पे को।
0: हाँ मेरी तरफ से भी इसी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, निधि ने भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए, बाकी चैट रूम में देखते हैं। आप लोग बताइए जरा चैट रूम में कौन है, देखो बर्गर सब आ गया, मतलब कोई भी ऐसा इंसान शायद ही हो जो जंक फूड में किसी का मतलब मन डोले ना, स्पेशली मेरा भी अभी डोल रहा है। मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब मंथ में मेरे 2-3 दिन हैं और मतलब अवॉइड करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पर बेकरी फूड को लेके मैं कभी नहीं मना करती, आई लव बेकरी स्टफ। अभी मैंने निधि से भी बताया कि बेकरी फूड मुझे बहुत पसंद है, खासतौर पर कप केक्स। मतलब कितना भी जंक फूड रखा
1: खाने के बाद
0: सच में
1: भी खा लो थोड़ा मीठा,
0: मिठाइयाँ अपनी जगह हैं बट बेकरी फूड अपनी जगह है। बेकरी में क्या मतलब
1: मैम, वो केक जो आते ही मुंह में घुल जाते हैं
0: और सब चीख चीख के कहते हैं, केक चीख के कह रहा होता है मुझ में कैलरी एकदम और फैट एकदम चूर चूर के भरा हुआ है, पर क्या करें, बहुत घर पे बनाओ लेकिन वो टेस्ट नहीं आता बाजार वाला। पानी पूरी तो कोई कह दे घर पे बनाने के लिए बकवास काम है, मार्केट का टेस्ट आ ही नहीं सकता, कोई कितना भी हमें चढ़ाएगी उसके हाथ का टेस्ट है, किसी का भी टेस्ट है भाई, टेस्ट अच्छा है
1: मैम। स्ट्रीट पे खाने का जो मजा है
0: डेफिनेटली
1: घर पे नहीं है।
0: अच्छा अब मैं बात करूंगी, आपको दो अच्छी चीजें बतानी है जंक फूड की और दो खराब चीजें बतानी। सबसे पहले आयुषी से स्टार्ट करते हैं, दो अच्छी चीजें बताइए कि हाँ जंक फूड खाने से ये मतलब ये डिप्रेशन वेशन वाला मामला नहीं, कुछ हेल्थ से जुड़ी चीजें जिसको हम कंसिडर कर सके, और दो बुरी चीजें। बुरी चीजें तो कोई भी गिना देगा लेकिन अच्छी चीजें दो गिनानी है जंक फूड के लिए।
1: मैम पहला तो कि उसमें हर जंक फूड में जैसे चाहे बर्गर हो, चाउमीन है, मोमोज है, सुशी वगैरह है, मतलब कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि वेजीज वगैरह ज़्यादा होती है, मतलब वेजीज होती हैं और जो कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होती है।
0: और अगर हमारे साथ कोई वेंडर जो स्ट्रीट वेंडर है जो बनाता है सेल करता है, तो आयुषी की बात को आप कंसीडर करिए कि वेजीज की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाइए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ठीक है, एंड दूसरी कोई अच्छी बात आयुषी बताइए दूसरी अच्छी बात, वैसे जंक फूड को लेके अच्छी बात दिमाग में आती ही नहीं है, बस वो जो पहले बताई कि टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट वेस्ट। हाँ मेरे हिसाब से ये है कि इजी अवेलेबिलिटी की बात करें, आपको घर का खाना इजीली अच्छा नहीं मिल पाएगा, पर हाँ जंक फूड किसी सिटी का कुछ स्पेशल है, जैसे गोंडा में क्या स्पेशल है मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं पता। हाँ समोसे वगैरह हैं, आनंद समोसा है और तो इजीली अवेलेबल। हाँ बाटी चोखा इज नॉट जंक नहीं है बट हाँ अवेलेबिलिटी, हाँ इजी अवेलेबिलिटी मुझे लगता है कि जंक फूड की एक अच्छी चीज़ है कि आपको भूख लगी है और जल्दी से आपके पास पैसे कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब खाने की अगर बात करोगे तो 150 रुपये से पहले नीचे थाली नहीं मिलती है और कुछ भी है तो आपका बजट 100 के ऊपर जाएगा, लेकिन हम 50 के अंदर अपना भरपेट कुछ जंक फूड से पेट
2: भी मिलेगा, पेट
0: भी भरेगा, पेट भी भरेगा। अब चलते हैं हम सौम्या की तरफ।
2: यस मैम,
0: आप दो खराब चीजें बताइए जंक फूड की।
2: अरे बहुत सारी है। पहली बात तो जो मैदा यूज होता है उसमें ज्यादा वो होता है फाइबर, तो
0: फाइबर होता है, ओ माय गॉड नो, मैदे में फाइबर होगा तो मैदा तो अच्छा है फिर। मैदे में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत खराब होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाती हैं, जिस वजह से डाइजेशन में थोड़ा, क्योंकि वो स्टिकी होता है, वो गेहूं से ही बनता है पर गेहूं का जो ऊपर का फाइबर पार्ट है वो निकाल के,
2: चोकर होता है जो मैंने देखा था उसको निकाल के फिर बहुत प्रोसेस से उसको लेके फिर मैदा बनता है, इसलिए उसके सारे न्यूट्रिशन जो है वो निकल ही जाते हैं।
0: इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स इसमें बहुत ज़्यादा डलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से जंक फूड जो है वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। कई वेंडर्स को देखो चाउमीन सुबह ही उबालते हैं शाम तक बनाते हैं, हम लोग घर पे उबाल के रख लेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएंगे 2-4 घंटे बाद अगर बाहर रखें, वो लोग बाहर मस्त स्ट्रीट के पास ऐसे कवर करके रखा हुआ है और ख़राब नहीं होते, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो है, इसीलिए मैं तो बस यही कहूंगी आप दोनों से, अगर आपको जंक फूड पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बस हम लोग थोड़ा पेरियोडिसिटी इसकी कम करें, मतलब फ्रीक्वेंटली ना खाएं। आयुषी तुम फ्रीक्वेंटली खाती हो, am I right? आने दो लाइक तो थोड़ा सा हमें फ्रीक्वेंटली इसको नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में हल्दीराम की नमकीन आ रही है, हम खा रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हल्दीराम की नमकीन नुकसान दे, पर हाँ रेगुलर हम खा रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव उसमें भी है। हमारी घर की नमकीन इतने दिनों तक नहीं चलती, वो 2-2 साल तक की उनकी क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो हमें मुझे लगता है कि इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जंक फूड जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम ना खाएं, आज खाया है तो कल एटलीस्ट अवॉइड करें, अल्टरनेट करके खाएं, अगर हम बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम थोड़े से लालची हैं
2: जंक फूड के।
0: बट मैं अगर बात करूँ, मुझे पानी पूरी रोज मिले तो मैं रोज खाऊंगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो फिलहाल हम दोनों की पसंद का एक गाना सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जंक फूड मैं खिला नहीं सकती, लेकिन हाँ गाना सुना के इनको अच्छी फीलिंग दिला सकती हूँ। तो सबसे पहले आयुषी कौन सा अपने पसंद का गाना सुनेंगे जल्दी से बताएं, जो गाना आपको यूजुअली स्ट्रीट की दुकान, मतलब स्ट्रीट फूड की दुकानों पे सुनने को मिल जाता है या आप सुनते हुए खाना पसंद करती हैं। सौम्या आप बताइए, मतलब तुम लोग के पास स्ट्रीट, मतलब जंक फूड की लंबी लिस्ट है और गानों की लिस्ट नहीं है, हम म्यूजिक प्रधान देश में रहते हैं जहाँ पे म्यूजिक हमारी जान है, कोई भी गाना जो आपको बहुत पसंदीदा हो, मॉनसून स्पेशल कोई भी,
2: मेरा धुन
0: धुन ओके श्योर आपका ये गाना प्ले होएगा। और मैं बताऊं, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मुझे लगता है कि तेल में नहाई हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है ना। आई लव,
2: आज ही मैंने कचौड़ी खाई है
0: और फिर खाने की तैयारी है। एनीवे आज बर्थडे है जंक फूड का, तो हम किसी को नहीं रोकेंगे और चलिए हम लोग सुनते हैं सैयारा फिल्म से धुन सॉन्ग हम सभी के लिए फ्रॉम सौम्या। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे थे शो विज्ञानशाला लर्निंग बियॉन्ड द क्यूरियोसिटी और आपके साथ लाइव थी आरजे बीना के साथ आयुषी एंड सौम्या।

0: धूम का नया आसमान जो कार्यक्रम है धूम का और संगीत का जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट
1: इसको तुरंत पॉलिटिक्स किप्स ले चलो
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एलटी किप्स गुर्दे दिमाग या पेट की बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड ग्रेट टियर आईसीयू एडवांस पीआईसीयू की सुविधा के साथ ही एचएफओ आईएलओ वेंटिलेटर फोटोथेरेपी डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एलटी किप्स आईआईएमओ लखनऊ संपर्क करें

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केंद्र की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और उसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपेन द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो 11 लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकिंग, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: सुर में गाना छूने
0: दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रिएट क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूरे दिन की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन सोफार पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9701321 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है इस शाम में गोंडा मैसेज मसाला में। लाइव हूँ मैं आपके साथ करने बहुत सारी बात। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमने जंक फूड की बात की, विज्ञान शाला और साथ ही साथ मुझे आपको ये भी बताना है कि भाई मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ आपको बता दें कि डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, तो हम सभी को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे और घर में अगर कोई भी ऐसा है जो मतलब जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो भाई पानी बॉयल करके पिएं। और बारिश के मौसम में कीटाणुओं का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। खाना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हेल्दी और ताज़ा खाएँ, बिल्कुल रखा हुआ खाना ना खाएँ, गर्म गर्म खाना खाएँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है बारिश के मौसम में, जिस वजह से जो हमारे एंजाइम्स है वो एक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बस एक छोटा सा सजेशन ये है कि जैसे ये बीमारियां हमें हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, उसी तरह से हमें सरकार द्वारा जो निर्देश हैं उनको फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ बारिश के मौसम में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और आगे कुछ ही देर में हम लोग लाइव होंगे आपकी कहानी के साथ, एक प्यारी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी और सोचने का नजरिया बदल देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, सुन रहे हैं आप रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आपके साथ लाइव हूं मैं, आपकी अपनी आरजे बीना, आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

बहुत सारे लोगों के ख्यालों में आने वाले लोग जो हैं, काश उनकी हकीकत बन जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ हो जाती झिंगा लाला अगर जिसको चाहा था वही मिल जाता। पर क्या करें, लाइफ इज़ नॉट एज वी प्रिडिक्ट। जैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसे लाइफ तो नहीं चलती है, क्या बोलते हैं दोस्त। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स मेरे साथ लाइव हैं, पर लाइव होने के साथ साथ कुछ तो है जो अधूरा सा हम दोनों के बीच दरमिया, मतलब हम दोनों के दरमिया ऐसा गाना है ना, मुझे याद आ रहा है लेकिन क्यों मैं भूल जाती हूँ, मेरी आजकल याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर सी हो गई है। तेरे मेरे दरमिया कुछ तो फासले हैं, फिलहाल फासले हैं या नहीं है ये तो थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आरजे बीना के साथ आप लोग तैयार हो जाइए आज की शाम को मज़े से एंजॉय करने के लिए। गुड इवनिंग चना जोर गरम, यस ऑफ कोर्स चना जोर गरम तो मुझे लगता है कि एक ऐसा हेल्दी जंक फूड है जो हम सबको खाना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए आगे बात करेंगे, धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं लाइव। गुड इवनिंग, कैसे हैं धर्मेश? गुड इवनिंग कमल नयन, गुड इवनिंग, कैसे हैं अनोखी? अगेन आप सभी का स्वागत है और आज बातें होंगी बहुत सारी क्योंकि आज आप लोग के साथ शाम से ही मैं हूँ और ना सिर्फ हूँ बल्कि बहुत सारी बातें शुरू भी हो चुकी हैं। और आज स्पेशल स्टोरी डे है, लव स्टोरी डे है, तो मुझे लगता है कि आज लव स्टोरी के साथ साथ कुछ रियल इंसिडेंट्स की बात भी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी होनी चाहिए जो स्टोरी जैसे तो लगते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और होता है लाइफ में। ठीक है, एक फैंटेसी की दुनिया जिसमें हम जीना तो चाहते हैं पर अक्सर उनके सिर्फ सपने आते हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। तो चलिए आप सभी का स्वागत है एंड आपकी इस प्यारी सी शाम में आरजे बीना आप लोग के साथ एक जर्नी पे चल रही है जिस जर्नी पे आप लोग मेरे साथ चलना बिल्कुल पसंद करेंगे। और आज मैं बता दूं कि आज आपके कुछ फेवरेट मतलब इंडियन पोइट्स का बर्थडे भी है तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगी, तो कहानी लंबी चलेगी पर आपको बताने में खुशी है कि कहानियाँ उनकी होगी जिनकी बात काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। तो सबसे पहले एक लिरिसिस्ट और इंडियन पोएट जिनका नाम है आनंद बख्शी, नाम तो बड़ा सुना है हमने आनंद बख्शी का और बहुत सारे उनके गाने भी शायद हम लोग के मतलब कह सकते हैं ना कि एकदम जुबां पे हैं, जुबां के जरिए पे हैं आपके। तो फिलहाल मैं बता दूं कि 21 जुलाई को आनंद बख्शी का जन्म हुआ और इन्होंने 3500 से अधिक सदाबहार गाने लिखे जो आज भी सुन के मन कहता है यार लाइफ तो आनंद बख्शी की होनी चाहिए, जो एक मिसाल बन के हम लोग के सामने आई। और ना सिर्फ गाने लिख के दिए इन्होंने बल्कि एक ऐसी म्यूज़िक की दुनिया हमारे अगल बगल दीवार खड़ी कर दी जिसको फांद के दूसरी तरफ जाना मुश्किल है, सच बता रही हूँ। तो सबसे पहले अल्फाज की अगर बात करूं तो इनके मशहूर अल्फाज जो हैं वो सबके दिलों में गूंजते रहे हैं। आमतौर पर आपको इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा पर मैं आज इनकी फनकारी से लेकर इनके नर्म दिल होने तक की कहानी सब कुछ बताऊंगी। 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी और इन्होंने एक चीज़ तो बचपन से सीखी थी कि हालात से समझौता कतई नहीं करना है। उन्होंने बंदूक में कलम को देखा और शेरो शायरी के फन को ज़िंदा रखा, लोगों के जज्बातों को सरल जुबान में बयां करने वाले एक ख़ास शायर बने और 2002 को इस दुनिया को ये अलविदा कह गए। आज भी उनकी बेशकीमती जो गीत हैं वो हम सभी गाया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं। साल 1958 से 2002 के दरमियान बख्शी ने करीब 3500 गाने लिखे और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गानों की तो एक गाना गुलशन में, एक था गुल एक थी बुलबुल, मेरे महबूब कयामत होगी, चिट्ठी ना कोई संदेश, चांद सी महबूबा हो मेरी, झिलमिल सितारों का परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, सावन का महीना पवन करे शोर, बागों में बहार है,
मैं शायर तो नहीं, झूठ बोले कौवा काटे कोरा कागज था मन ये मेरा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, हमको हमी से चुरा लो, उड़ जा काले कावा, इश्क बिना क्या जीना यारो, जैसे एकदम बढ़िया बढ़िया गाने लिखे। और सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत फील करती थी इनके गानों को। और सबसे पहले शुरुआत करूँगी इनके एक ऐसे गाने की जिसके बारे में आज बात होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई हम सभी ने आज इश्क की बात करनी है, इश्क की कहानियों के सिलसिले शुरू होंगे। तो सबसे पहले एक गाना आनंद बख्शी का लिखा हुआ, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आगे भी बात होती होगी आनंद बख्शी की, लेकिन उससे पहले हम इस गाने को एंजॉय करते हैं। आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट फिल्म ताल से, और ताल के गाने हमेशा से हमारी जुबान पे रहें, लेकिन ये गाना खास है क्योंकि ये आनंद बख्शी की कलम के अल्फाज हैं। गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं आप? और आप बताएं कैसी हैं, और आनंद बख्शी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है?

तो चलते हैं अब आनंद बख्शी के जीवन पे थोड़ी सी थोड़ी सी क्या कहते हैं कि छाप देखने की, क्या है उनके जीवन में छाप संगीत की, कैसे उन्होंने संगीत को अपना बना लिया, कैसे उनकी ज़िंदगी में संगीत इतना कीमती हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि वो भारत के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में पैदा हुए, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और शुरू से ये एक गीतकार तो नहीं थे। आप सभी को पता है कि वो एक फौजी थे, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर, आर्मी में थे। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो लखनऊ में आके बस गए और यहीं से अपनी ज़िंदगी का कहते हैं ना कि गुजर बसर करने लगे। शुरू से इनके मन में था कि इनको कुछ लिखना चाहिए, पर कहते हैं ना कि अगर हम चाह लें तो दुनिया इधर उधर कर सकते हैं, पर क्या करें, हमारी ये चाहतें पूरी कहाँ होती हैं, चाह के भी हम अधूरे रह जाते हैं, उन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते जिन तक हमें यूजुअली पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो शुरू से ही बहुत आए। ऐसा नहीं था कि ये फौज से निकले और सीधे एक राइटर बन गए। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने फौज से कुछ दिनों का अवकाश लिया और ये मुंबई पहुंच गए। पर मुंबई में इनकी ज़िंदगी बड़ी ही दुखदर्द से चल रही थी, मतलब कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं। और बात 1952-53 की, जब ये मुंबई पहली बार गए, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ इनको कुछ नहीं मिल सकता, तो ये वापस से लखनऊ चले आए और इन्होंने कसम खाई कि वापस मुंबई नहीं जाएंगे और सोचा कि अब जल्दी से जल्दी शादी कर लूँ जिससे कि मेरी ज़िंदगी मुझे जाने ही ना दे, मैं खुद को इतना व्यस्त कर लूँ। पर कहते हैं ना, जब आपने सोचा हो कुछ बड़ा करने का तो आपकी ज़िंदगी आपको वहाँ तक पहुँचा ही देती है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ऐसे ही नहीं वो बन गए। एक समय ऐसा था जब फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा था और उनकी मेहनत की पहली कीमत महज 150 रुपये थी। उनकी यह छोटी सी शुरुआत थी। उन्हें बॉलीवुड में सबसे कामयाब और सबसे हिट गाने लिखने वाला गीतकारों का खिताब ऐसे नहीं मिला। उसे पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में हर वो दिन संघर्ष किया जब इंसान सोचता है कि अरे यार छोड़ो, हम और आप होते तो कब का गिवअप कर चुके होते, पर उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी को रुकने नहीं दिया। सबसे पहला दुख इनका ये था कि जिस बात से मोटिवेट हुए लिखने के लिए, इनकी माँ का निधन, फिर दूसरा देश का बंटवारा, ये दो बड़ी पीड़ादायक मतलब सिचुएशन थी इनके लिए। भारतीय सेना में नौकरी की, जबलपुर के सिग्नल कोर में भी तैनात रहे। सेना में रहते हुए उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, साथियों को रचनाएं अपनी सुनाते थे, नाटकों में हिस्सा भी लेते थे। कई बार इन्होंने कलाकार बनने का सपना भी देखा। मुंबई गए, पर मैं जैसा कि कहा कि वो वापस आ गए, हाथ में निराशा ही थी। 1956 में एक बार फिर उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया। कहते ना कि जो अब आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, उससे हटके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मौका जिंदगी दे या न दे, हम ढूंढेंगे मौका। उन्होंने तय किया कि वह एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनके पास कुछ कविताएं थी और खुद पर भरोसा था। मुंबई में संघर्ष के दिनों में उन्होंने कई मुश्किलें झेली, लेकिन हार नहीं मानी। उनका एक दोस्त था जो कि रेलवे में काम करता था, उसने बड़ा सहारा दिया इनको। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि वो उन्हीं के रूम पे रहते थे और पहली बार एक प्रोड्यूसर ने जब इन्हें बुलाया, वो बांद्रा में रहता था, दादर से बांद्रा की दूरी काफी दूर है, और 10 बजे का टाइम दिया और ये ठीक 10:00 पे पहुंच गए। प्रोड्यूसर देख के शॉक था कि कैसे भाई ये आदमी इतनी सुबह इतनी जल्दी आ गया, 10 बजे मतलब शार्प। तो बोले इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बोले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं वो मेरे लिए मेरी जिंदगी है। इसी संघर्ष के बीच भगवान दादा ने उन्हें अपनी पहली फिल्म भला आदमी में गीत लिखने का मौका दिया। आनंद बख्शी ने इस फिल्म के लिए 4 गीत लिखे। 4 गानों के लिए उन्हें 150 रुपये मेहनताना मिला। उनका पहला
रिकॉर्ड किया हुआ गाना था धरती के लाल, ना कर इतना मलाल, धरती तेरे लिए तू धरती के लिए। इस छोटे से मौके ने उनके लिए फिल्मी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी, भला आदमी के बाद उन्हें तुरंत काम नहीं मिला क्योंकि भला आदमी एक बड़ी फिल्म नहीं थी। उन्होंने धैर्य बनाए रखा, धीरे धीरे उनके गीत लोगों तक पहुंचने लगे। 1965 में मतलब 10 साल का पूरा इंतजार किया। 1956 से 65 तक का सफर काफी आसान नहीं था, मुश्किल था। फिल्म मिली जब जब फूल खिले और उन्हें बड़ी पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने गाना लिखा, परदेसियों से नाखियां मिलाना, वो फिल्म जिसका गाना उस जनरेशन के जुबां पे तो था ही बल्कि हम लोग की जुबां पे भी है, जेंजीज की जुबां पे भी है। तो ऐसे गाने लिखने वाला इंसान जो 100 सालों तक अपने लिखी हुई जो कहते हैं ना कि मेहनत को अमर रख सकता है, तो खुद सोचिए उसकी कलम में क्या रहा होगा। तो ये गाना उनकी पहचान बन गया। सबने पूछा, भाई किसने लिखा है, किसने लिखा है, किसने लिखा है ये गाना। फिर जुबान पे आया आनंद बख्शी।

गाना। भाई इस गाने ने अपनी पहचान तो बना ली थी, पर अभी और पहचान बनाना बाकी था। इसके बाद बैक टू बैक इनके सुपरहिट गाने आए। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, अब कहेंगे कि कौन सा गाना। अब मैं नहीं सुनाऊंगी ये गाना, आप खुद ही सुनिए। और अगर आपको याद है तो आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है, तो चलिए सुन के बताइए ये गाना कैसा है।

फिर आया ये समा, समा है ये प्यार का, इसके बाद ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ना जाने कितने गाने यूं ही वो लिखते चले गए। ये कड़ी उनके जीवन के संघर्ष को तो बता ही रही थी, पर उनके संघर्ष के साथ एक उजले भविष्य की जो कहते ना कि छाप हर तरफ दिख रही थी, वो सबके जुबा पे थी। जब भी प्यार की बात होती थी इन्हीं के गीत गुनगुनाए जाने लगे, इन्हीं की आवाज़, इन्हीं की लेखनी हर किसी की आवाज़ बन गई थी। इनकी खास बात ये थी कि ये आम सी भाषा में बड़े बड़ी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते थे, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसे इंसान की बात आज से पहले आरजू बीना ने क्यों नहीं की, बस इंतजार था उनकी जन्म जयंती का। आज दुनिया उनको याद करती है। मुंबई का संघर्ष, सफलता, प्रसिद्धि, सम्मान की जब बात करते हैं तो अपने शानदार करियर में आनंद बख्शी को 40 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर नामांकन मिला। उन्होंने 4 बार ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों के लिए 6000 से ज़्यादा गाने लिखे, साथ ही साथ एक से एक गीत गाने के बाद वो हर किसी के लिए, एक के लिए नहीं हर किसी के लिए खास बन गए। एक गाना जो साधना फिल्म में आया था उसे मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि उस गाने को ना सिर्फ मुझे गाना पसंद है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना हर किसी के जीवन का एक पन्ना है, हर किसी का जीवन इससे जुड़ा होगा मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं बात करूं कि चाहे कोई इंसान गरीब हो या अमीर, सबका अपनी जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, और अगर किसी का कोई मकसद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई जिंदगी में पॉइंट है जीने का। हमें अपनी पहचान अगर भगवान ने दी है तो उसे हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अपनी पहचान, अपने नाम के साथ जुड़े एक इतिहास को हमें बनाना चाहिए, उकेरना चाहिए, लिखना चाहिए, और वो तभी संभव है जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जैसा कि आनंद बख्शी ने किया। अगर किसी की जिंदगी में मकसद ना हो तो बिना पतवार ही एक जहाज की तरह वो रहेगा, जो हवाओं के थपेड़ों से यहाँ वहाँ तो चला जाएगा पर उसकी कोई मंजिल नहीं होगी। और अगर बात करें रास्तों की तो रास्ते भी उसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने बताया ना कि आनंद बख्शी का संगीत की दुनिया में अपना जो कहते ना आज़ादी से लिखने का सफ़र था वो उन्होंने अपने एक ज़िंदगी के मुकाम की तरह बनाया। 3 दशक से भी ज़्यादा उन्होंने लगभग ऐसे सुपरहिट गाने दिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपसे कुछ ऐसी भी चीजों के बारे में बात करूंगी जिनके बारे में शायद आपको और पता होना चाहिए। आनंद बख्शी के कुछ ऐसे अनरिलीज गाने जो कुछ रिलीज और अनरिलीज फिल्मों में हैं। उन्होंने संगीत के कदरदानों के लिए कुछ स्पेशल धुन और फिल्म है हे राम राज कपूर की, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरन जैसे कई गाने लिखे। तो मुझे क्या लगता है कि हम सभी को ना सिर्फ बख्शी साहब को सुनना चाहिए बल्कि उनके जीवन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो ये गाना बख्शी साहब के लिए मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट के तौर पे मैं गाना चाहूँगी, और इसके बाद कुछ ही देर में एक लव स्टोरी भी शुरू होगी। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा आनंद बख्शी के जीवन के बारे में जानना भी एक कहानी से कम नहीं था, तो चलिए सुनाती हूँ आपको गाना।

तो ये गाना मैं एज अ ट्रिब्यूट सुना रही हूँ आप लोग को, तो आप लोग भी बख्शी साहब की लिरिक्स को फील करिए। ना सिर्फ उनके लिरिक्स को फील करिए बल्कि उनकी जर्नी को भी फील करिए। कितनी बार उन्होंने अपने करियर को पाते पाते एक फुल स्टॉप लगाया, वापस चले आए मुंबई छोड़ के, लेकिन फिर जाने का जज्बा था।

तो चलिए इनकी जर्नी को मैंने तो ट्रिब्यूट दे दिया, अब एक और गाना सुनाते हुए एक अच्छा सा ट्रिब्यूट देते हैं। और इतने सारे गाने हैं जिनको अगर यहाँ मैं जिक्र करने लगूँ तो शायद मुझे लगता है कि शाम ढल जाएगी पर गाने नहीं। तो चलिए गदर फिल्म का एक गाना उनके नाम करते हैं और इसी के साथ मैं ये शाम भी उन्हीं के नाम करती हूँ। चलिए स्टैंजा भी सुनाई देती हूँ।

तो भाई आप सब भी अपने जीवन को कोरा कागज मत रहने दें, अपने जीवन को उजला बनाएं और हर गम को काले कौए की तरह उड़ा दीजिए और जिंदगी को शुगर की तरह, गुड़ की तरह मीठा बनाइए। चलिए ये गाना आनंद बख्शी की लिरिक्स आप लोग के लिए।

बस शब्दों को संगीत मिला और 2002 में ये जीवन छोड़ गए आनंद बख्शी। गुड इवनिंग सविता शास्त्री जी, गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग नयन जी, सबका स्वागत है। जुगल किशोर जी, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? और जैसे कहते हैं ना कि गाना

बस मुसाफिर बन के रह जाता है और इसी के साथ इस सफ़र को अलविदा कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लिरिसिस्ट, एक गीतकार हमारे बीच में अपने शब्दों, अपने गीतों के साथ किसी भी दौर में, किसी भी उम्र में हमारे साथ होता है। आप क्या मानते हैं? सबलू सावंत जी, शुभ संध्या। और आज आनंद बख्शी की जयंती पर हमें उन्हें याद करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे देश में इतने खूबसूरत गीत देने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसने कई मरतबा, कई नहीं 40 बार से ज़्यादा फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए और कई बार पुरस्कार जीता। तो चलिए आगे बात करेंगे। और आज जैसा कि लव स्टोरी डे है, तो मैं आपके साथ एक प्रेम की कहानी भी साझा करूंगी। मेरी एक श्रोता की लिखी हुई कहानी है और उन्होंने मुझे लिख के भेजी, तो मैंने सोचा आज आपको सुनाऊं। वैसे तो मैं रियल लव स्टोरीज़ आपको सुनाने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, रियल लव स्टोरीज़ मैसेज देती हैं, लेकिन आज की रियल लव स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा खूंखार सी हो गई हैं, तो मुझे आजकल की लव स्टोरीज़ थोड़ी सी कम पसंद आ रही हैं, उनमें लव से ज़्यादा लस्ट दिख रहा है। तो आज की कहानी एक श्रोता के द्वारा लिखी गई, जो मुझे लिख के उन्होंने भेजी। अगर आपके पास भी कोई प्यारी सी लव स्टोरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आपके 6393 वाले नंबर पे लिख के भेज सकते हैं, साथ में @RJPina भी लिख के भेजे, जिससे मुझे पता रहे कि ट्यूसडे को मुझे ये स्टोरी कवर करनी है। और अगर नहीं है, तो मेरी स्टोरी का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि ट्यूसडे इज़ योर डे एंड आपके लिए कहानी लेके आती है RJPina, जो प्यार से जुड़ी तो होती ही है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, रिश्तों के मायने समझाती है और जाने क्या क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप साथ दीजिएगा, ये कहानी आपको बहुत अच्छी फीलिंग दिलाएगी, ध्यान से सुनिए। राशि के दिल की धड़कन आज सुबह से ही बहुत तेज थी। कभी मीठी गुदगुदी होती तो कभी पेट में बटरफ्लाइज महसूस हो रही थी। वो आज के दिन के लिए पिछले कुछ दिनों से तैयार हो रही थी। कुछ तो खास था राशि की लाइफ में। वैसे उसे तैयारी की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। अच्छा ये बताइए, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि ये बताइए कि आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कब करते हैं? कोई ख़ास इवेंट हमारी ज़िंदगी में या कुछ स्पेशल होने वाला हो लाइफ में, जिसके बारे में हम किसी से बताना भी ना चाह रहे हों और लोगों को पता भी हो, क्या कहते हैं? ऐसा है कि नहीं है? मुझे भी लगता है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हमारे चेहरे पे एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का दिखता है। और ये एक्साइटमेंट कहाँ तक जाता है, ये तो हमारे सामने आने वाला वो इंसान या वो मौका ही बता सकता है। तो चलिए आगे ये जो गुफ्तगू है बरकरार रहेगी, लेकिन चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि क्या बात और होने वाली है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें और कुछ, बहुत कुछ सिखाने वाली है। बिना किसी देरी के, तो आज तैयारी तो हो।

रही थी, लेकिन उसे किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर वाले ने उसे तराश कर बनाया था। दूध में पड़े केसर सी रंगत, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, स्याह चमकीली और घुटनों तक झूलती घने केश थे राशि के। जो भी देखता कुछ पल के लिए थम सा जाता था राशि को। इतना खूबसूरत अंदाज और उस अंदाज से भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी अदा। जो भी देखता उसी का हो जाता। राशि स्वयं को अपने रूप में एक अभिनज्ञ नहीं थी, उसे इसका पूरा आभास था कि इसने उसे रूप गर्विता बना दिया है। इसके अतिरिक्त वो अपने उच्च मध्यम वर्गीय माता पिता की एकमात्र संतान भी थी। इसका एक साधारण अर्थ ये था कि वो ना केवल ऊंचे स्वप्न देख सकती है, वरन उन सपनों के यथार्थ में परिवर्तित करने की पूरी संभावना थी। उसकी सोच की इन्हीं उड़ानों में था उसका सपनों का राजकुमार। उसका राजकुमार सुंदर, सजीला और बांका जवान था, जिसकी धूमिल सी छवि सदैव उसके मन पर छाई रहती थी। आज वो सपनों का राजकुमार सच में आने वाला था। लड़का अच्छा, नौकरी में उच्च पदासीन है, बड़े परिवार से है, और सबसे बड़ी बात, राशि के पापा लड़के के परिवार को अच्छे से जानते हैं। यही तो सब बार बार खुद से कहकर वो पिछले कई दिनों से लगातार लड़के और उसके परिवार की तारीफों के पुल बांध रहे थे उसके घर वाले। जानती हो, आज के ज़माने में राम जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बाद वो बहुत सीधा साधा है। उसका परिवार पैसे वाला और संस्कारी है, और राम भी हमारी राशि की तरह इकलौता है। उन्हें बेटी मिल जाएगी और हमें बेटा। इतना कहते हुए पापा निहाल हो जाते और हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते। पापा की इन निरंतर की जाने वाली तारीफों और लड़के के नाम राम ने राशि के दिल में धड़कन बढ़ा दी थी। कितना प्यारा नाम था राम, हॉट एंड हैपनिंग टाइप। इसके अलावा टीवी सीरियल्स ने भी इस नाम की काफ़ी दिलकश बना दिया था, क्योंकि हर जगह राम नाम सुन सुन के एक अलग ही फीलिंग आती थी कि भाई इस नाम के लड़के तो अच्छे ही होते हैं। इस तरह राशि के सपनों के राजकुमार ने छवि के रूप में उसके दिमाग में घर कर लिया था, एक नायक बन गया था। और आज वही दिन था जिसका राशि को ना जाने कब से इंतज़ार था। धीरे धीरे दिन खिसकने लगा और तभी बाहर गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, घंटी बजी और फिर मेहमानों के कदमों की आहट कॉरिडोर से होकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। ड्राइंग रूम से उठती हंसी और आवाज़ों के बीच राम की आवाज़ को अनजाने होने पर भी राशि पहचान पा रही थी। आज उसकी चेतना उसके कानों में स्थिर हो रही थी। राम की आवाज़ शांत, गहरी और पौरुषपूर्ण थी। इस आवाज़ से राम की कल्पना और उसके बारे में सोचना राशि के लिए मन में साकार होती छवि जैसा था। तभी मम्मी की आवाज़ कानों से टकराई, उसके लिए बुलावा आ गया था। उसकी पूरी तरह से देह थरथरा उठी थी। भाई, थरथरा तो जाएगा इंसान, भाई आपको किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है तो ये बात लड़कियां बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, लड़के भी समझ सकते हैं। फर्स्ट मीटिंग में सबकी धड़कनें बढ़ी रहती हैं। उसकी पूरी तरह से देह थरथरा उठी और वो मुख पर सीमित मुस्कान लिए धीरे धीरे कमरे से बाहर पहुंची। उसके पहुंचते ही सभी की आंखें उसकी तरफ उठ गईं, और वो आंखें भी जिनके लिए उसके मन में सपने थे। उसके रूप का प्रभाव ऐसा था, कुछ ही पल में वो ठिठक गई। सबसे पहले राम की मम्मी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, विनायक जी, आपकी बेटी को देखकर लगता है आज चांद इस कमरे में उतर आया है। ऐसी कोई तारीफ कर दे तो इंसान तो उड़ने ही लगेगा। अगर आपको मंजूर हो तो इस चांद को अपने घर की शोभा बना दी, हमारे घर की शोभा बना दीजिए। ये सुनकर राशि के गुलाबी रंगत सुर्ख हो गई। वो राम की आँखों में अपने चेहरे को महसूस कर रही थी, पर वो स्वयं उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। विनायक जी ने शायद उसकी इस दुविधा को समझ लिया था, और हम लोगों ने भी समझ लिया था। अब तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत करो और देख समझ लो। इतना कहकर उन्होंने हंसते हुए राशि की माँ से चाय की व्यवस्था गार्डन में करवाने के लिए कहकर राम के मम्मी पापा को गार्डन में चले जाने के लिए कह दिया। अब ड्राइंग रूम में राशि और राम अकेले बैठे थे। दोनों
ही समझ नहीं पा रहे थे कि बात कहाँ से शुरू करें। राशि की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, जिस पल का इंतज़ार कर रही थी वो आज पल था, और उस पल में वो क्या ही बोले। उसके आते ही उसकी गर्दन शर्म से संकोच से झुक गई थी। खैर, जैसे तैसे बातचीत का सिलसिला शुरू राम ने ही किया। आपका नाम क्या है? अपने इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को जब तक सुधारता, राशि ने बिना सर उठाए खिलखिलाते हुए जवाब दिया। राशि, उसकी हिरक दंत पंक्ति युक्त हास्य ने राशि के सौंदर्य को दोगुना कर दिया। राम ठगा सा रह गया और उसने उसी मनस्थिति के साथ कहा, वैसे आपको पता है मेरा नाम तो रामदास है। रामदास पर आपका नाम तो राम है। उसने तुरंत अपनी भूल सुधारते हुए खुद को रोका और झटके से सिर उठाकर देखा और उसका दिल धक से रह गया। उसके सामने एक साधारण किंतु सौम्य व्यक्ति था, और मध्यम सा कहें दुबला पतला, दरमियान कद का, सांवली से रंगत, एक खूबसूरत से व्यक्तित्व का राजकुमार। ऐसा तो कभी उसने अनजाने में नहीं सोचा था। ये उसकी सोची हुई छवि से बिल्कुल विपरीत था। राम के पूरे व्यक्तित्व में सबसे आकर्षक थी उसकी आंखें, बिल्कुल साफ पारदर्शी, जिसमें राशि के लिए अपार स्नेह छलक रहा था। उस पर छलकते नेह सागर की कुछ छींटे राशि तक तो पहुंच ही चुकी थी। उसकी वो सहज हंसी एकदम अलग सा प्रभाव दे रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। तब तक बाहर से सभी अंदर आ गए। राम के चेहरे के उल्लास के बीच राशि की तरफ किसी को ध्यान नहीं गया। राम की मम्मी ने झट से अपना पर्स खोला और एक कीमती सेट और शगुन का नेक राशि के हाथ पे रख दिया। आज से आपकी बेटी हमारी, राशि मन ही मन उबल रही थी, पर सबकी खुशी पर आघात करने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप सारी औपचारिकताओं को झेलती रही और उसका ये आक्रोश लड़के वालों के जाते ही मम्मी पर निकलने लगा। क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी सब कुछ करने की? पूछना ज़रूरी नहीं था क्या? क्या राशि, क्या तुम्हें राम पसंद नहीं? मम्मी ने आवाज़ दबाते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं है, हाँ राम नहीं, आपका रामदास मुझे पसंद नहीं है, राशि चिल्लाई। प्लीज़ मम्मी प्लीज़। उसकी शक्ल भी उसके नाम के तरह आउटडेटेड है। उसका सांवला रंग राशि को पसंद नहीं आया। क्या कहेंगी सहेलियाँ, हंसेंगे सब मुझ पर, मेरा और उसका कोई मेल नहीं। राशि के मुंह से कभी घृणा और कभी दया के भाव आ जा रहे थे। ऐसा नहीं कहते बेटा, राम एक अच्छा लड़का है, मम्मी ने समझाते हुए कहा। पर मम्मी को जो कहते हैं ना कि समझाते हुए देख के राशि को और गुस्सा आ रहा था। मुझे आपके इस रामदास से शादी नहीं करनी, उसका आक्रोश आंसुओं के रास्ते बह गया। क्यों क्यों नहीं करनी, क्या कमी है लड़के में? विनायक जी ने अब बाहर खड़े सुन लिया था और तूफान की तरह कमरे में आके बोले, पापा वो आपका रामदास किसी काम का नहीं है, उसकी शक्ल तो देखिए। राशि ने सिसकते हुए कहा। बस राशि, बहुत हो गया, पापा फिर गुर्राए, और सिर्फ शक्ल से तय नहीं हो सकता किसी का रिश्ता। मेरे लिए होती है पापा, मैं ये शादी नहीं करूँगी, राशि ने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने जो किया तुम्हारा अच्छा सोच कर किया, अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मैं आज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी निर्णय में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे किए गए मेरे फैसलों में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। इतना कहकर विनायक जी वहाँ से चले गए, यानी कि उसके पापा चले गए। अब क्या था, राशि के लिए हाँ या ना दोनों ही समस्याएँ थीं। वो नियति और अपने माता पिता के फैसले के समक्ष बेबस महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें बहने लगी। मम्मी ने कई बार राशि को समझाने का प्रयास किया पर उसके कड़वे उत्तर सुनकर चुप हो जाती। पापा उन्होंने तो बोलना और बातचीत करना ही छोड़ दिया। कई दिन रोने और अफसोस करने के बाद राशि का जो मन विद्रोह पर उतर आया और उसने शादी से पहले अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीने का निश्चय कर लिया। उसने पास में कोचिंग सेंटर में अप्लाई किया और उसे वहाँ तुरंत नौकरी मिल गई। शुरू के दिन बोरिंग थे पर जब एक बार वहाँ बाकी लोगों से उसका परिचय हुआ तो वहाँ जाना अच्छा लगने लगा। वहाँ उसने सबसे अच्छा लगता था, अजीत उसके आसपास होता था, एक दोस्त था उसका, वो बहुत अच्छा लगता था उसे। लगभग 6 फीट का लंबा तगड़ी देह और चौड़े स्कंद और मतलब हल्की सी सांवली रंगत, मतलब गोरा था, छोटे मिलिट्री कट बाल,
मुख पर हल्की सी ट्रिम हुई दाढ़ी, कुल मिलाकर राशि को, सपने को राजकुमार वाली जो फीलिंग थी वो उसको देख के आई, जो पहली बार देखकर राशि ठगी सी रह गई। इसके बाद हर समय किसी न किसी बहाने वो आसपास रहने की कोशिश करती थी। अजीत बातचीत में बहुत अच्छा था, उसकी बातें इतनी मीठी और अपनेपन जैसी लगती, जैसे लगता है कि वो सबको अपना बना लेगा। धीरे धीरे वो राशि के मन में अपनी गहरी जगह बनाने लगा। जब उसकी तरफ देखा तो राशि को लगता कि उसकी आँखें उसे कुछ कहना चाह रही हैं। उसे लगने लगा कि अजीत जो कुछ भी कहता है वो सब उसी के लिए होता है, पर शायद वो सबके बीच होने के कारण इस तरह बातें घुमा फिरा कर करता है। अजीत कभी फिल्मी डायलॉग बोलता, कभी गाने गाता, कभी धीरे से मुस्कुराता, कभी ठहाका लगाकर राशि के दिल की धड़कन बढ़ा देता। अब वो हर पल इंतज़ार करने लगी कब अजीत इससे इजहार करेगा। वो उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छाने लगा था। वो सोचने लगी कि अजीत एक बार प्रपोज कर दे तो मामला सेट हो जाए, उसे तुरंत अपने दिल की बात कह देगी और फिर मम्मी और पापा को मिलवा देगी। वो अगर मान गए तो ठीक, वरना अब किसी की परवाह नहीं करेगी, अपने मन से शादी कर लेगी। दिन बीत रहे थे और राशि को हर पल अजीत में ही सब कुछ दिखता था। वो घर पे भी अजीत के बारे में सोचती थी, वो उसके प्रपोज करने का इंतज़ार कर रही थी, पर वो था कि कुछ कहता ही नहीं था। इस अंतहीन इंतज़ार में जब उसके सब्र का बांध टूटा तो उसने खुद ही से पहल करने का निर्णय लिया। वो मन ही मन सोचने लगी कि अजीत से अपने मन की बात कैसे कहे। वैलेंटाइन डे करीब था और इससे अच्छा दिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसी दिन अजीत को सब कुछ कहने का निश्चय किया। भाई ये बताओ, कोई लड़का आपके पास है, आसपास घूम रहा है, कैसे आप उसको जाके बिना सोचे समझे मतलब प्रपोज कर सकते हो? मेरा तो मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाए। फिलहाल राशि की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, चलिए देखते राशि क्या करती है। ठीक है, उसने निर्णय कर लिया कि वो प्रपोज करेगी। वो इस वी डे प्रपोजल की तैयारी करने लगी। कपड़े मेकअप कई बार चेक किए और आईने में सामने खड़े होकर डायलॉग कई बार दोहराए। आखिरकार वैलेंटाइन डे भी आ गया। उस दिन वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगी, पहले चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और आंखों में काजल और भाई वही मस्कारा, और फिर उसके बाद अपनी खूबसूरती के साथ खुद को ही मुग्ध होती महसूस कर पा रही थी वो। फिर आया कपड़ों का नंबर, फिर पलंग पर कपड़ों की ढेर लगा दी, फिर एक जोड़ा पहना, फिर दूसरा पहना, कई बार चेक किया, समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार क्या पहनूं। फिर एक गुलाबी रंग का सलवार कमीज़ तसल्ली से पहनकर उस सूट को चेहरे के साथ अपने कह रही थी कि हाँ भाई ये मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा, गुलाबी है तो मेरा गाल भी गुलाबी है, मतलब मैच कर रहा है, ये ठीक है। कहते हुए उसने अपनी साज सज्जा को फाइनलाइज किया, फाइनल टच दिया और फिर निकल पड़ी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि घड़ी तो दोपहर के 12 बजा रही थी। ये समय अजीत के शिफ्ट ख़त्म होने का था। वो मन ही मन घबराने लगी, ऐसा ना हो कि उसके पहुंचने के पहले अजीत वहां से चला जाए, अब क्या होने वाला है। वो आज का दिन खोना नहीं चाहती थी। उसने अजीत का अता पता लेने के लिए कोचिंग सेंटर फ़ोन किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद फ़ोन उठा तो उधर से प्रवेश की आवाज़ थी। हेलो जी, कहिए राशि मैडम। हेलो, हाँ प्रवेश, क्या फर्स्ट शिफ्ट के सभी लोग निकल गए? राशि ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हाँ मैडम, सभी लोग निकल गए हैं, बस मैं और अजीत सर अभी हैं, प्रवेश ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तो उसे रोकना, राशि ने अपनी खुशी दबाते हुए कहा। हाँ, इससे पहले कि प्रवेश कुछ जवाब देता पीछे से अजीत की आवाज़ सुनाई दी। कौन है जो हमें पूछ रहा है? राशि मैडम, प्रवेश ने बताया। कौन राशि मैडम? अजीत की आवाज़ बड़ी बेपरवाह सी लगी। अरे वही जो प्रवेश अभी अपनी बात पूरा ही कर पाता, अजीत ने उसे टोकते हुए कहा। अरे यार प्लीज़ जल्दी निपटा, कौन है तेरी राशि वाशि मैडम? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी अपनी वाइफ को लेने के लिए निकलना है। ये सुनते ही राशि जैसे सुन्न हो गई, फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, वो वहीं थम सी गई ज़मीन पर। वो अजीत जिससे वो सब कुछ कहना चाहती थी, जो सिर्फ उसका था, उसकी शादी हो चुकी है, वो अजीत जिसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो अजीत जिसे वो इतना प्यार करती थी, फ्लर्ट, धोखेबाज, चालू, ये सब कहना उसने शुरू कर दिया। और फिर ना जाने क्या क्या कह गई।
अपमान और तिरस्कार से उसका मन भारी हो गया। फिर जब ये भार वहन नहीं हुआ तो आंखों के रास्ते आंसुओं के साथ बह गया। उसे अपना सैंडल, ज्वेलरी सब कुछ निकाल कर फेंक दिया और पलंग पर रखे कपड़ों के बीच मुंह छिपाकर सिसकने लगी। जब रोकर मन भर गया, क्या कहें, जो भी कहें, तो उसने फिर से अजीत की छवि मन में उभरते हुए महसूस की। दिमाग दोनों पक्ष में था। उसके मन में सारी घटनाएं घूमने लगी। उसे ध्यान आया कि अजीत ने कभी अकेले में उसे कुछ महसूस किया क्या। वो कहता था पूरे ग्रुप के बीच, पूरी मस्ती में कहता था, शायद उसका अंदाज था। ये उसकी एक तरफा सोच या गलतफहमी थी जो वो इतना आगे तक पहुंचा चुकी थी। क्या होता अगर मैं प्रपोज कर देती, मेरी क्या इज्जत रह जाती। हे भगवान, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। ये सब कहते हुए आज पहली बार उसने भी पापा की तरह हाथ जोड़कर भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद कहा। अब उसकी आंखों के सामने मम्मी पापा के हताशा भरे चेहरे उभरने लगे। उसका मन ग्लानी से भर गया। इसके बाद राम की सरल छवि उसके सामने उभरने लगी, जिनमें उसके लिए अथाह प्रेम छलकता था, जो बिना कहे सब कुछ कहते थे। अब उसे याद आया, उसने पिछले दिनों कई बार ऐसा बहुत कुछ किया जिससे राम का मन दुखा होगा। उसकी कुछ हरकतें तो ऐसी थीं कि शायद उसके कारण वो अपनी शादी के फैसले को दोबारा सोच रहा हो। ये ध्यान में आते ही वो कांप उठी और उसने तुरंत अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। उसने मुंह को धोया, बाल और कपड़े ठीक करके पापा के पास पहुंची गई। वहां पापा चुपचाप कुर्सी पर बैठे रिमोट से टीवी चैनल बदल रहे थे। स्पष्ट था कि उनका ध्यान टीवी पे नहीं, कहीं और लगा हुआ था। पापा, उसने विनायक जी के कंधे पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, ये कौन है? पापा ने चौंकते हुए कहा, पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ठीक थे, मुझे राम पसंद है, पर मैं शादी से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, राशि ने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पापा को चुप देखकर मम्मी ने उत्साह से उत्तर दिया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसने राम को फ़ोन किया, कहाँ, कब, क्या कुछ ज़रूरी था? दूसरी तरफ राम का असमंजस भरा स्वर था, जी हाँ, हम कुछ लंच के लिए मिल सकते हैं। जी, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, राम ने संक्षिप्त उत्तर दिया। राशि ने जल्दी से मेकअप ठीक किया और लंच तक राम के पास पहुँच गई। एक औपचारिक मुस्कान के बाद दोनों चुपचाप बैठ गए। जब चुप्पी भारी लगने लगी तो राम ने धीरे से पूछा, आपको कुछ कहना था? जी जी जी नहीं, जी हाँ, राशि ने अटकते हुए कहा। राम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और राशि का चेहरा और सुर्ख हो गया। उसके होंठ और हाथ कांपने लगे। राम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। बी माय वैलेंटाइन, उसने पर्स से एक गुलाब निकालकर राम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। राम ने एक सुखद आश्चर्य के साथ गुलाब लेते हुए एक मीठी सी स्मृति माथे पर अंकित की और राम की आंखें झुक गई और दोनों अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने लगे। अब आप लोग बताइए कि राशि ने इतनी जल्दी जो जजमेंट की थी वो सही थी या नहीं, सोच के बताइए। फिलहाल के लिए राशि की जिंदगी में उसका वैलेंटाइन उसे मिल गया राम के रूप में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है राशि इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट थी। और ये आज की लड़की या लड़के की बात नहीं है, हर किसी की बात है। हम लोग किसी भी इंसान के लिए अपने मन में एक अलग ही कहानी बना लेते हैं। आप लोग बताइए, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए हमारे साथ देखिए, सबलू जी कुछ लिख रहे हैं, रावण जानते थे मेरी मौत राम के हाथ होगी, तभी तो लास्ट में हे राम बोले थे। लंका में रहते हुए माता सीता अपने पतिव्रत धर्म और पवित्रता पर अड़ग रहीं और राम की बर्पण था और सीता माँ को रावण छूते तो जल के राख हो जाते। एक छोटे से शहर में जहाँ समय मानो अपनी धुन से चलता था, आरव और मीरा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अरे वाह, एक और कहानी। आरव शहर में एक कॉलेज में पढ़ता था और मीरा पास के स्कूल में। उसकी पहली मुलाकात एक बरसात के दिन बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन शब्दों से ज़्यादा आंखें एक दूसरे से बात कर रही थीं। आरव की मुस्कान में मीरा को सुकून मिलने लगा था। मीरा की सादगी ने आरव के दिल को हमेशा के लिए अपना बना लिया था।
जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका परिवार प्यार परवान पे चढ़ने लगा। एक दूसरे को खत लिखने और शाम के समय एक पुराने रेडियो पर बजने वाले गानों के माध्यम से जज्बातों को साझा करने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा फूलों का बिस्तर नहीं होती। उनके परिवारों के बीच पुरानी सामाजिक दूरियां थीं जो इन दोनों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई। जब घर वालों को उनके रिश्ते का पता चला तो उन्होंने मीरा की शादी कहीं और तय कर दी। हालांकि सच्चे प्यार की निशानी सिर्फ पाना नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना भी है। मीरा की जिंदगी को किसी मुश्किल में ना देख आरव ने खुद को पीछे खींच लिया। भले ही फैसला उसके दिल को तोड़ने वाला था लेकिन प्यार की डोर इतनी मजबूत थी कि विपरीत परिस्थितियों में दोनों एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा और हमेशा एक दूसरे के लिए भलाई की दुआ की। और उन्होंने ये साबित किया कि दूरियां प्यार से कम नहीं होती। बिल्कुल सही। और एक दिन उसके परिवार दोनों को देखकर शादी भी कर दी। ओके, मतलब अगर हम अपने अंदर मैच्योरिटी को ले आए तो हो सकता है कि परिस्थितियां अपने आप बदल जाएं। देखिए, अगर अफड़ा तफड़ी में राशि ने राम को मना कर दिया होता तो शायद आज राशि के पास कुछ ना होता। उसने समय रहते राम का हाथ थाम लिया और शायद ये उसकी सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि, उपलब्धि थी। और जैसा कि सबलू जी ने लिखा कि एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छी बात होती है। और इसी दुआ से मुझे कविता याद आती है, बहुत प्यारी सी कविता है, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। आज लव स्टोरी डे है पर कविता भी साझा करने के लिए कोई मौका नहीं होना चाहिए। जब चाहे, जब मन कहे, अपनी फीलिंग्स को शब्दों के साथ बहा देना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी सी कविता है।

मगर मोहब्बत रहेगी कायम, जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात काटो भरी हो लेकिन।

जहाँ मिले थे वही मिलेंगे, हमेशा की तरह ये तय हुआ था। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त इस कहानी से, और अब और बातें करेंगे आप लोगों से बहुत सारी रूहानी सी, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ। और चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा स्पेशल लव सॉन्ग आप लोग के लिए।

भाई ये गाना तो अलग लेवल का है, जिसको सुनने के बाद दिल कहता है आहा क्या बात है। और बदली जवानी के छटते नहीं, पहले जवानी की बदली छटे या ना छटे, फिलहाल आसमान में काले बादल छाए हैं, बारिश होने की संभावना है परिपूर्ण है। आज तो अच्छी खासी बारिश भी होगी गोंडा शहर में, लेकिन दिल हमें सोने देता है आराम से, क्योंकि तनहा सोने में मजा आता है।

समझते नहीं। भाई राही नवाबों के शहर के आहा क्या बात है, नाम बड़े गजब गजब के। महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से, गुड इवनिंग दीपेंद्र जी, महेंद्र जी। गुड इवनिंग अनुष्का, कैसी हैं? आशु कैसी हैं? आप सबका स्वागत है। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला इतनी म्यूजिकल शाम थी, आप लोग काफी देर से आए। दो दो कहानियां आप लोगों ने मिस कर दी। अगर आपने सुनी है तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगर नहीं सुनी तो अगले मंगलवार रेडी रहिएगा अगली कहानी के लिए।

इतने प्यारे से गाने के साथ मैं यही कहूंगी कि मुझे अब इंतजार नहीं करना, अब मुझे आपसे इजाजत लेनी है, क्योंकि अब आपके लिए आपकी फरमाइशी गाने सुनने का भी समय हो रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। हाय जोर करे कितना शोर करे बेवजह बातों पे ऐसे जोर करे। अगर आपका दिल ऐसा कर रहा है तो आप लोग घबराइए मत, आपको प्यार होने की संभावना है, मन है तो करिए, नहीं तो मत करिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, सुनिए बेहतरीन सा गाना आरजे बिना की प्लेलिस्ट से, चांद बालियां फॉर यू ऑल। बाय, टेक केयर, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, सिटी ऑन। मुश्किलों में है ये दिल मेरा, तो किसी की चांद बालियां देख के आपको प्यार हो रहा है तो बिल्कुल इंतजार मत करिए, एक चांद बालियां खरीदिए और गिफ्ट करिए।

0: पीछे।
1: Hi guys, this is Aditya.
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना।

सत्याकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की कटरी को नहीं खोली है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। और आज की शाम को बनाना है सूफियाना और इश्क भी होता है सूफियाना। सो चलिए फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी अर्जी सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय कर लेते हैं पहले बहुत ही खूबसूरत सा इश्क सूफियाना मेलोडियस।

सो दोस्तों, इस गाने की तरह जैसे किसी के लिए किसी का इश्क सूफियाना होता है, आप सभी के लिए क्या सूफियाना है मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, महेंद्र राजस्थान से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, बबीता गोंडा से, सविता दुबे जी गोंडा से, कार्तिक कश्यप आपका भी स्वागत है, श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी गोंडा से आपका भी स्वागत है, और राही नवाबों के शहर लखनऊ से, रितेश, कार्तिक धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी सबलू सावंत मुंबई से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल कमल लैन। स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों, एंजॉय करते हैं अब बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। सो पहली फरमाइश हमारे पास में प्रमुख कुमार के लुधियाना से, उनको सुनना है डिवोशनल गाना। सो एंजॉय करते हैं ये श्री कृष्ण जी का भजन सिर्फ और सिर्फ प्रमुख की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 90.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

तो दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारे प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर। ये डिवोशनल सॉन्ग था और आप लोग भी जानते होंगे मेरी तरह आप लोग भी अवगत ही होंगे कि अगर किसी शुभ काम को स्टार्ट करना है अगर वो थोड़ा भक्तिमय तरीके से हो तो उस चीज में चार चांद लग ही जाते हैं, वो चीज सक्सेसफुल हो ही जाती है ना, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी कूट कूट के भर जाती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं डेफिनेटली हमारी आज की अगली फरमाइश जो की है अनुष्का की श्रावस्ती से, उनको सुनना है गाना चिटिया कलाइयां। सो एंजॉय करते हैं ये जैकलिन फर्नांडिस का बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा और वाव वाला, आई मीन गर्लिश वाव वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: वाव, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा दोस्तों अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। अब चलिए चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। बढ़ेंगे फरमाइशों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने आजकल के मौसम के बारे में ना तो कोई टिप्पणी की है, ना फिर आप लोगों ने आजकल जो मीडिया में चल रहा है उसकी टिप्पणी की है, ना ही आपने सेलिब्रिटीज़ के बीच में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी की है। आज आप लोगों ने किसी बात पे कोई टिप्पणी नहीं की, आज कोई गॉसिप ही नहीं हो रहा है, और अगर गॉसिप नहीं हो रहा है ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है ही। सो क्या लोचा है ये तो मैं फिगर आउट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। आप लोग अगर फिगर आउट कर सकते हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, रितेश साहू आपका स्वागत है और इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और लखनऊ मींस नवाबों के शहर से आशु मिश्रा जी को सुनना है गाना कुछ भी ना कहो। सो एंजॉय करते हैं बॉम्बे का ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सुर में गाना सीखिए पद।

बस एक मैं हूँ और बस एक तू है। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी आशा मिश्रा जी की डिमांड पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगला ट्रैक भी एंजॉय करेंगे दोस्तों, लेकिन देरी किस बात की है, ये प्रोग्राम ये शो तो सीधे के सीधे 9:30 बजे तक चलने वाला है। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगी, हमारे गीत भी यहीं रहेंगे, हमारे जज्बात भी यहीं रहेंगे। बस ये वक्त कम बखत वक्त ये नहीं ठहरने वाला है, तो हम क्यों ठहरे, चलेंगे ना, चलते हैं ना। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, ओह माय गॉड। और हमारे एमपी के जग्गू दादा जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है लता मंगेशकर जी की आवाज में हिना पिक्चर का गाना बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। आय हाय, पहले प्यार दीवाना करता है, फिर मस्ताना करता है, फिर पागल कर देता है, क्यों सही ना, कोई पागल बन जाता है, कोई देवदास बनता है ना, सही कहा ना मैंने। और किसी किसी की नैया तो भाई किसी ना किसी तरीके से लहरों के दम पर या फिर किसी ना किसी चीज बलबूते नैया पार हो ही जाती है। लेकिन ये ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो तो ऑब्वियसली पछताता है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मत कर दिया ना, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जी। हाँ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही कमाल का गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कुछ। मेरा कहना है कि सफर का मजा तो तब है मेरे दोस्त जब रास्ते में कोई मंजिलों की बात ना करे। सफर का मजा तब है मेरे दोस्त जब रास्ते में कोई मंजिलों की बात ना करे, बस साथ हो एक चाय का प्याला और एक तेरा अक्स। फिर कोई हमसे कायनात की बात ना करे। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। हमारे पास में है महेंद्र दीपिन राजस्थान की, और उनको सुनना है गाना चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी। तो एंजॉय करते हैं नसीब मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा हमारे महेंद्र की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, नागेश्वर धाकर आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है ये आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड।

तो जिंदगी भर तुम मेरे साथ हो। हम एंजॉय करेंगे ये सुपर डुपर हिट नगमा हमारे महेंद्र की फरमाइश पे जो की है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू देवली डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले महेंद्र ने राजस्थान से कुछ कहा भी है दोस्तों, क्या आप सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है? महेंद्र का कहना है राजस्थान से कि दिन तो ढल गया पर शाम हसीन बना दी। दिन तो ढल गया पर शाम हसीन बना दी, आरजे सिंपल मैम ने आज महफिल ही जमा दी। गोंडा स्टेशन से बजा जब चंदा सितारे का नगमा, चाय की चुस्की के साथ शाम को नसीब बना दी। थैंक यू सिंपल जी और थैंक यू महेंद्र जी। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। उस्मान खान आपका स्वागत है और नीना वेलकम इन योर शो, स्टे ट्यून्ड। और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से। दीपक जी को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना राम जाने राम जाने। और वैसे भी सबके नैया पार तो राम ही लगाते हैं, तो वैसे भी कि राम ही जाने। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में SRK और जूही चावला का ये गाना सिर्फ और सिर्फ दीपक जी की फरमाइश पे जो की है हथियागढ़ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। ये गाना भी एकदम लल्लन टॉप है दोस्तों, तो इसके लिए क्या रेटिंग्स होंगी ये भी आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।

ने हमें एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट नगमा अलका याग्निक सोनू निगम और उदित नारायण की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश है बबीता जी की गोंडा से और बबीता जी को गोंडा से सुनना है गाना यार बदलना जाना मौसम की तरह। वैसे मौसम अगर बदलते हैं मौसम बदलते हैं तो यार नहीं बदलेगा। ये किस पन्ने में लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी रिटर्न हो तो मुझे ला के दिखा दो। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यार नहीं बदलते। सो एंजॉय करते हैं डेफिनेटली ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा तलाश मूवी का सिर्फ और सिर्फ बबीता की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो वंशिका। आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनमा तलाश मूवी का हमारी बबीता जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। और इसी के साथ में हमारी एक लिसनर है, उनका कहना है कि बिल्कुल बदलते हैं, बट इसलिए तो वो रिक्वेस्ट कर रही है कि यार बदलना जाना मौसम की तरह। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिसके फितरत में ही हो बदलना, जिसकी फितरत में ही हो बदलना, उससे रिक्वेस्ट करें, चाहे भीख मांगे, चाहे खुली छोड़ दें, चाहे जो भी कर लें, भाई उसको बदलना ही बदलना है ना। ये भी तो सही है। सो काहे के लिए इतना टाइम वेस्ट करने का कि किसी से रिक्वेस्ट करने का, अगर आप इतने ज्यादा वैल्यूएबल हो उनके लिए तो ऑब्वियसली वो ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट होगा। वो अपने और आपके रिलेशन को कभी बदलने नहीं देंगे, फिर वो चाहे जो हो, मम्मा हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कजिन्स हो, फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की, और कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में हमारे कार्तिक की फरमाइश पर। और कार्तिक के गाना मुझे भी बहुत पसंद है, तो चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने का आनंद लेती हूँ। और इस गाने का आनंद लेने के लिए मैं अपने सभी लिसनर से रिक्वेस्ट भी करूंगी, क्योंकि ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। जिसको नहीं अच्छा लगता ध्यान से सुनो प्लीज, एक एक शब्द प्यारा है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

और किसी दिन मुस्कुराकर ये तमाशा हम भी देखेंगे। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा शमशाद बेगम और लता जी का सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। लेकिन उसके पहले इस गाने को सुन के बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि ख्वाब बुनने की सजा दी है जमाने ने हमें, ख्वाब बुनने की सजा दी है जमाने ने हमें, हम परिंदों की तरह कैद से डरते नहीं हैं, आंधियों का हो मुकाबला तो हट और बढ़े, हम वो दिए हैं जो तूफान से भी बुझते नहीं। So enjoy करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन इसके पहले हमारे एक लिसनर हैं जिनका कहना है, वंशिका ने जो मैसेज अभी किया था उस पे इन्होंने रिप्लाई किया है। इनका कहना है कि जहां तक मेरा मानना है, आप सब बुरा मत मानना, पर बदलना लड़कियों की आदत होती है। समाज में इसका प्रभाव आप देख सकती हो, वही तो समाज में हम इसका प्रभाव देख रहे हैं। और वैसे भी मैं ऐसी कुछ टिप्पणियां करना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं बस ये थोड़ा सा इतना सा कि समाज में इधर बीच जो प्रभाव हम देख रहे हैं स्त्रियों को लेकर, जो आप बात कर रहे हैं वो प्रभाव जो हम देख रहे हैं वो इधर बीच देख रहे हैं, लेकिन ये जो पुरुषों को लेके जो प्रभाव पड़ता रहा है, इतना डोमिनेटिंग पुरुषों को लेके हमारा ये देश रहा है, उस हिसाब से क्या, उस हिसाब से बताइए उसका प्रभाव, जिस चीज का प्रभाव लड़कियां मतलब पता नहीं कब से जन्मों जन्मों से जन्म जन्मांतर से चुका रही हैं, उस प्रभाव को थोड़ा सा क्या आप लोगों ने झेल लिया, आप लोगों को तकलीफ होने लगी। यहाँ सिर्फ मेल फीमेल की बात हो ही नहीं रही है दोस्तों, सॉरी बुरा मत मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंसानियत की बात हो रही है। यहाँ इंसानियत तो जिंदगी में लोगों के पास में दिल में बची ही नहीं है, सब इतने स्वार्थी हो गए हैं अपने प्रति, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि दूसरे मतलब अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो चाहे मेल हो फिर वो चाहे फीमेल हो। ये मेरा ओपिनियन है। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राही की, और राही को नवाबों के शहर लखनऊ से सुनना है गाना गैरों से कहा तुमने। सो एंजॉय करते हैं ये गजल अनुराधा और जसवंत सिंह की आवाज में हमारे राही की फरमाइश पे, जो की है नवाबों की शहर लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मैं इतना कहना चाहूंगी कि स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया है। अनुराधा जी की आवाज में और जसवंत सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सैड वाला गजल। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। सो एंजॉय करते हैं हाउ लवली लवली लवली लवली वाला गाना, लवली वाला सॉन्ग, लवली वाला निगम निगम नगमा और लवली वाला गीत। जी हाँ दोस्तों की फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से और उनको सुनना है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सो एंजॉय कर लेते हैं ये फरमाइश। लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी बहुत ही बहुत ही बहुत जल्दी से कि जमी बिक गई आसमां बिक गया, जमी बिक गई आसमां बिक गया, सियासत की मंडी में इमां बिक गया, परिंदों को क्या हक है आजाद रहने का, यहाँ तो परिंदों का मकान बिक गया। ये है इंसानियत, ये है आज की सच्चाई। तो यही कहते हैं ना कि जो भोगे वही काटोगे। सो हम बहुत अच्छे नेक दिल वाले हम सभी इंसानों ने इतना अच्छा अच्छा बोया है प्रकृति के लिए, इतना अच्छा अच्छा बोया है कि प्रकृति वही इतना अच्छा अच्छा काट के हमें दे रही है। कितना मजा आ रहा है ना दोस्तों। एंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज़ विकास गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है दबंग थ्री का गाना। एंजॉय करेंगे ये फरमाइशी गीत, और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे, पेट पूजा करके आना प्लीज, क्योंकि तुलसी धनदाम शरीर लय, ये मेरे पापा का कहना है, और मेरे पापा का ये भी कहना है कि पहले आत्मा फिर एवरीथिंग। तो ओवरऑल कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालात में पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो जाके फटाफट से पेट पूजा करिए और दुनिया भर की खबरों से रूबरू हो जाइए, और फिर आ जाइएगा हमारी फरमाइशी की महफिल में सिर्फ और सिर्फ।

0: कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
5: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच UCC विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
6: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
7: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
8: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
9: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वेलकम बैक इन योर शो फरमाइशी वीडियो आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो फरमाइशी में जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से आपकी अपनी खट्टी मीठी और कड़वी आरजे के साथ में हु इज नॉट सो सिंपल मीन सिंपल। सो कैसे हैं आप सब और क्या आप सभी ने पेट पूजा किया मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा आज का फरमाइशी का अगला गाना। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ एंड दोस्तों यू नो व्हाट अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है बहुत ही दर्द भरा सा नगमा ओ माय गॉड और निशा को सुनना है गाना जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती मींस नहीं हो लगता दिल तेरे बिना शायद यही वाला गाना है। सो एंजॉय करते हैं बचपन से पचपन तक एवरग्रीन रहने वाला सॉन्ग उदित नारायण और अनुराधा जी की आवाज में हमारी निशा की फरमाइश पे जो की है पटेल नगर गोंडा से और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली आपका बहुत ही खूबसूरत सा फरमाइशी का सेगमेंट रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा की शहर की धड़कन पर स्टेशन एवरीवन।

कोई बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, और वैसे दिन भी गुजरता है और रात भी होती है, बस ये खाली बहलाने और फुसलाने के तरीके होते हैं कि किसी तरह से सामने वाला मान जाए कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमसे रूठिए मत, आई मीन हमको बहुत सा प्यार दीजिए, हमको बहुत सा अटेंशन दीजिए, है ना। ऐसी ही तो बातें होती हैं, नहीं तो ऐसा सच में थोड़ी होता है दोस्तों कि दिन नहीं होता रात नहीं होती। आखिर दिन और रात नहीं होता है तो हम लोग को तो कैसे पता चलता है कि दिन हो गया कि रात हो गई। ये इश्क मोहब्बत में ना सारी बातें सिर्फ और सिर्फ फेंकने वाली होती है। वो हो गया ना कि पतंग हम उड़ा रहे हैं, आप पतंग उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ, और हम उसकी डोरी खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों कमल नैन की। कमल नैन को सुनना है गाना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। सो एंजॉय करते हैं बंटी और बबली गई बहुत ही खूबसूरत सनंगमा, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे कमल नैन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना। बढ़ते हैं फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रितेश साहू की, और रितेश साहू को सुनना है गाना टिप टिप बरसा पानी। से एंजॉय करते हैं आजकल की मौसम पर एकदम से जचने वाला गाना और हर एक के शरीर में गूज बम्स ला देने वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ रितेश साहू की फरमाइश पर।

सजन मैं क्या करूं और टिप टिप बरसा पानी। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा मॉनसून वाला और हाउ रोमांटिक नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की और नागेश्वर धाकड़ को एंड इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। स्टे ट्यून्ड। फरमाइश है इट्स कुमार और नागेश्वर धाकड़।

से दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सौरभ की गुड़वा घाट गोंडा से, और सौरभ मौर्य को गुड़वा घाट गोंडा से सुनना है गाना ओले ओले। सो एंजॉय करते हैं ओले ओले सॉन्ग्स के। क्यों ना अभी वाली फरमाइश है सौरभ की।

मेरा दिन दीवाना बोले ओले ओले हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना याद आ रही है तेरी याद आ रही है। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना हमेशा, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं फिर से कल कुछ नए जज्बात के साथ में, कुछ नए गीत के साथ में और कुछ नए बात के साथ में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ। नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत तो सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। जी हाँ, आप सभी के ही कार्यक्रम बहारे गजल में इस्तकबाल है, अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। और तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कमल के समान नैन वाले कमल नैन जी, शुभ संध्या आपको। और पांडे एग्रीकल्चर गोंडा से हेलो सर। जी हाँ, हेलो आपको भी। और जी, हम बात करते हैं उन ईंटों की जो महल हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो ईंट होती है वो न्यू की ईंट होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। तो जो अनदिखा है उसको सामने लाने की कोशिश होती है बहारे गजल में, क्योंकि हम बात करते हैं शायरों की, बात करते हैं कवियों की, बात करते हैं उन दानिश्वरों की जिन्होंने अपनी अजीम कलम से गजलें लिखी, नगमे लिखे, और वो नगमे हमेशा के लिए अमर हो गए। आज जिस कलमकार को हम आपके बीच लेकर आए हैं उनका नाम आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत ही प्यारा सा नाम है, लेकिन वो नाम कौन सा है ये नाम हम आपको बताएंगे इस गजल के उस पार। एक छोटा सा संकेत आपको दे रहा हूं कि उनका नाम, उनके नाम के अंत में फराज आता है, पहले क्या आता है जरा देखते हैं। हमारे कितने श्रोता ऐसे हैं जिनको उस कलमकार का नाम पता है जिसके सर नेम में फराज है और मुख्य नाम क्या है। उम्मीद करते हैं कि जब हम इस प्यारी सी गजल के बाद लौटेंगे तो आपका उत्तर हमें अपने इस संदेश वाले खाने में मिल चुका होगा। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल मखमली आवाज में आप सभी के लिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं

जी हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और ये वो जानता होगा जिसने खत लिखा होगा। किसी की पंक्तियां मुझको याद आई कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो वास्तव में वक्त लगता है, और पहला खत, और पंक्ति देखिए कितनी अच्छी है कि जिस्म की बात नहीं है उनके रूह को छूना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। मतलब हम चाहते हैं कि हमें उनका शरीर न हासिल हो, हम चाहते हैं कि हम उनकी रूह में शामिल हो जाएं, और ये लंबी दूरी है। किसी को तन से पा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि किसी भी इंसान को मन से जीत लेना, मन से पा लेना, ये शायद दुनिया के सबसे दुश्वार कामों में एक है, क्योंकि इसमें शत प्रतिशत समर्पण चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, इबादत होती है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, क्या मतलब जो लिख गए, मतलब वास्तव में ईश्वर ने उनको भेजा था कि जाइए और आप ऐसा लिख आइए और लोग इस तरीके से गा जाएं कि सदियां याद करें, और वास्तव में सदियां याद करेंगी। हम बात कर रहे हैं आज अहमद फराज साहब की। फराज का मतलब ये होता है बुलंद या बड़ा, तो वास्तव में अपने नाम के मुताबिक उन्होंने बड़ा नाम किया। उन्होंने लिखा कि उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ, उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ, अब क्या कहें ये किस्सा पुराना बहुत हुआ। उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ, अब क्या कहें कि किस्सा पुराना बहुत हुआ, ढलती न थी किसी भी जतन से शबे फिराक। फिराक बोलते हैं रात को, और शब बोलते हैं, फिराक बोलते हैं जुदाई को, और शब बोलते हैं रात को, यानी रात की जुदाई। ढलती न थी किसी भी जतन से शबे फिराक, ऐ मर्गे नाग महा तेरा आना बहुत हुआ। मर्गे नाग मतलब आना, मतलब यहाँ पर मृत्यु का आना, लगता था कि अभी जान चली जाएगी। हम खुल्द, खुल्द बोलते हैं स्वर्ग को, हम खुल्द से निकल तो गए हैं पर ऐ खुदा, हम खुल्द से निकल तो गए हैं पर ऐ खुदा, इतने से वाकिये का फसाना बहुत हुआ, अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी, अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी, उससे जरा सा रब्त बढ़ाना बहुत हुआ। रब्त मतलब वास्ता रखना, हमने उनको सिर्फ वास्ता रखा, उससे उनको चाहा और दुनिया भर से दुश्मनी ले ली। किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई नेमत, मतलब नेमत मतलब उपहार, मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई नेमत, मगर शर्त यह है कि दुनिया न जाने। प्यार से बड़ा ईश्वर का कोई उपहार नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि लोग जान न पाए। तो उन्होंने लिखा कि अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी, उससे जरा सा रब्त बढ़ाना बहुत हुआ, अब क्यों ना जिंदगी पे मोहब्बत को वार दें, अब क्यों ना जिंदगी पे मोहब्बत को वार दें, इस आशिकी में जान से जाना बहुत हुआ। मतलब हम दिल से भी गए और जान से भी गए, अब तक तो दिल का दिल से
ताजुफ न हो सका। माना कि उससे मिलना मिलाना बहुत हुआ। क्या बात है, मतलब कई बार मिले लेकिन समझ नहीं पाए उसे। प्रोफेसर वसीम बरेलवी की पंक्तियां हैं कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। आपसे अपने दिल की बात कहने वाला व्यक्ति, आप उससे कितनी बार मिलोगे तब उस पर उसका यकीन आप जीत पाओगे, इस बात को हम गारंटीड नहीं कर सकते। क्या इतनी बार मिल लेंगे तो हम उनके मन की बात जान लेंगे, या वो हमसे अपनी वो बात भी शेयर कर लेंगे जो शायद उन्होंने किसी के साथ न बांटी हो। वो अपना गम हो, दर्द हो या कोई राज हो। तो उन्होंने कहा कि अब तक तो दिल का दिल से ताल्लुक न हो सका, माना कि उससे मिलना मिलाना बहुत हुआ। क्या क्या न हम खराब हुए हैं मगर ए दिन, ए याद यार तेरा ठिकाना बहुत हुआ। तुम्हारी याद में हम बर्बाद कर लिए अपने आप को। कहता था नासेहों से मेरे मुंह ना आइयो। नासेहों मतलब होता है कोई शुद्ध चीज या पवित्र चीज। कहता था नासेहों से मेरे मुंह ना आइयो, फिर क्या था एक हूँ का बहाना बहुत हुआ। अब कोई बात उनसे पूछो तो खाली हूँ कर देते हैं। इस हूँ का क्या मतलब है? तो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र। अब अहमद फराज आते हैं, मोहब्बत का किस्सा पुराना हो गया, वो बिछड़ गए। तो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र, अहमद फराज तुझसे कहा ना बहुत हुआ। उन्होंने अंत में कह दिया कि अरे भाई अब क्या, जो जा चुका है वो जा चुका है। आपको समझाया कई बार, लेकिन यहाँ एक मन है जो शायद नहीं मानता। जी हाँ, जगजीत सिंह की एक बहुत प्यारी सी गज़ल आपने सुनी। और भाई जगजीत सिंह को जब हम सुनते हैं, मखमली आवाज़ के मालिक हैं वो, तो कम से कम उनकी दो गज़लें तो बनती हैं। जी हाँ, हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। भाई प्रणाम करते हैं आपको। और विशाल बेदर्दी जी हैं, ताहिर फराज। जी हाँ बिल्कुल, ताहिर फराज जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर गेस। और अनिल शास्त्री जी हैं दादा चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और सविता शास्त्री जी हैं, आपको भी चरण स्पर्श। उप संध्या सर जी, आपको भी। और आइए अब आपको ले चलते हैं उसी मखमली आवाज़ में, फिर उसी मखमली आवाज़ में, मतलब जगजीत सिंह की बहुत ही प्यारी गज़ल आप सबने सुनी होगी, और जितनी बार भी सुनिए उतनी बार लगता है कि कम है। और जब आप इस गज़ल को सुन रहे हैं तो इसी के साथ आपको एक होमवर्क भी दे देते हैं, इसे ध्यान से भी सुनिएगा और दिल से भी सुनिएगा, क्योंकि दिल से सुनेंगे तो आप शायद इसकी गहराई में उतरेंगे। और ध्यान से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा होमवर्क आपको देते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस गज़ल में जैसे शब्द कितनी बार आया है। एक बार प्रश्न पुनः दोहराता हूँ मैं कि इस गज़ल में जो हम बजाने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं, इस गज़ल में जैसे शब्द कितनी बार आया है। आप भी काउंट कीजिए, हम भी काउंट करते हैं और देखते हैं कि भाई जैसे शब्द कितनी बार आया है, इसको कौन सही सही बताता है। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई जैसे आपके हृदय से निकले ना। तो गिनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, काउंट डाउन करते हैं शुरू। और अब आपको बताना है कि जगजीत सिंह की इस प्यारी सी गज़ल में जैसे शब्द कितनी बार आया है।

जी हाँ, जरा देखते हैं भाई कितने लोगों का उत्तर आया, जरा देखते हैं। जी बिल्कुल, क्या बात है, हम भी काउंट कर रहे थे, जोड़ रहे थे, और बिल्कुल दादा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया जी, 17 बार। इस पूरी गजल में जैसे शब्द 17 बार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये तो अच्छा हुआ हमारी आपकी काउंटिंग एक हो गई। हमको लगा कहीं एक आदम से छूट जाएगा तो शायद परेशानी होगी, लेकिन आप भी वहीं हैं और हम भी वहीं हैं, ये अच्छा लगा। और यही तो गजल की खूबसूरती है कि वो तो अच्छा है, ये तो अच्छा है गजल, तेरा सहारा है मुझे। ये तो अच्छा है गजल, तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। और गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गंवारा है मुझे। जी हाँ, यही मोहब्बत है साहब, और यही गजल है। आइए एक गजल आपको और सुनाते हैं, थोड़ा सा ऊंचे पिच की, और उसके पश्चात आपसे फिर मिलते हैं ताहिर फराज के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और जी, ताहिर फराज नहीं, अहमद फराज के साथ। जी हाँ, ताहिर फराज आपने लिखा था और अहमद फराज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

जी हाँ भाई, जैसे शब्द सत्ता पर आया और हमारे दर्द कुमार उर्फ सुरेश कुमार जी ने भी फोन करके हमको बताया कि आई एम चैट बॉक्स से तो जुड़ नहीं पाते, मेरे पास छोटी वाली मोबाइल है, लेकिन सत्ता बाद आया, क्या बात है जी। अब चलते हैं अहमद फराज की ओर। अगर हम जिंदगी में कुछ बातों को देखें तो कुछ बातें, कुछ प्रश्न अभी तक ऐसे हैं जो अनुत्तरित हैं। मतलब जिस प्रश्न का उत्तर शायद अभी तक मिल नहीं पाया। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने जब आप निकलते हैं, जो अनुत्तरित होते हैं, तो दो कंडीशन होती है, या तो आप वैज्ञानिक बनते हैं और अगर आपके अंदर कहीं फिलॉसफी आ गई तो आप दार्शनिक बनते हैं। अनुत्तरित प्रश्नों की खोज ही हमें वैज्ञानिक या दार्शनिक बनाती है। जैसे जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, सिर पर उनके, गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे, तो सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने कहा ये सेब नीचे क्यों गिरा। सवाल तो अच्छा, सोची जरा उस दौर में अगर वो किसी से पूछते कि ये सेब गिरा और नीचे क्यों गिरा, तो उनको उत्तर क्या मिलता कि आपने पौधा कहाँ लगाया, जमीन पर, खाद कहाँ दिया, पानी कहाँ दिया, जमीन पर, पौधा उगा कहाँ, जमीन पर, पेड़ है कहाँ, जमीन पर, फल किसमें लगे, पेड़ पर। तो उसने कहा जब सब काम जमीन पर हुआ है तो क्या जब सेब चुएगा तो ऊपर की ओर जाएगा। और लोग इस प्रश्न को लेकर हंसते, लेकिन इस अनुत्तरित प्रश्न की उन्होंने खोज की और वो न्यूटन, द ग्रेट न्यूटन बने, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है और एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद ये बल नहीं लगता है, इसलिए दुनिया का कोई भी पहाड़ 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि धरती उसे खींच लेगी अपनी ओर। माउंट एवरेस्ट

0: जिसको हम नेपाली भाषा में सागर माथा कहते हैं, उसकी ऊंचाई भी 9848 मीटर ही है। 10 किलोमीटर तक नहीं, उससे ऊपर धरती की किसी भी चीज का होना लगभग लगभग असंभव सा है। कल्पना कीजिए कि दो भाइयों ने जब मिलकर ये सोचा होगा कि हम हवा में उड़ा देंगे साइकिल के स्पेयर पार्ट्स को, लोहे को, तो लोग उनके ऊपर हंसे होंगे, कहोगा वाह क्या बात है, मतलब हवा में उड़ेगा, क्या उड़ेगा, लोहा, लोहा हवा में उड़ाएंगे भाई ये दोनों भाई, और लोग उन पर हंसे होंगे। वो प्रश्न अनुत्तरित था कि गया कहाँ, मतलब कैसे उड़ सकता है। दुनिया का, पूरी दुनिया का एक सच था कि अगर हमको किसी इंसान से बात करनी हो तो हमको हमारा उस इंसान के पास होना आवश्यक है, जरूरी है। और दुनिया के एक व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता कि ऐसा होना आवश्यक है। लोग उसके ऊपर भी हंसे, लेकिन उसने टेलीफोन बनाकर ये बता दिया कि वो अपनी जगह पर सही था। ऐसे ही जैसे विज्ञान की दुनिया में कुछ प्रश्न अनुत्तरित थे जिनका उत्तर खोजा गया, ऐसे ही साहित्य की दुनिया में, नगमों की दुनिया में, गजलों की दुनिया में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी गई सागर में, सागर का पानी कहाँ, नहीं पता। किसी कलमकार ने इस पानी को भी देखा होगा और पानी को देखने के पश्चात उन्होंने बहुत ही विचार विमर्श किया होगा, और विचार विमर्श करने के बाद वो नगमा लिखा होगा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, बात तो है, लॉजिक तो है। तो भाई जब बात तर्क की चली है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर तर्क नहीं चलते, जहां केवल श्रद्धा होती है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है, क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। जी हाँ, बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन आंखों से कहेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आवाज़ विकास से आपका स्वागत है बहारी गज़ल में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ भाई बहन जी प्रीति जी को, जी हाँ, सादर चरण स्पर्श, शुभ संध्या आपको। और जी हाँ बिल्कुल, ऐसी गज़ल सुनाएंगे कि मेरे दिल से आपका दिल मिलेगा धर्मेंद्र जी, निश्चिंत सही है। और ताबिश खान जी ने कहा गुड नाइट, अरे नहीं, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि कहने की का जो हक है वो मैंने आपसे ले रखा है, और अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। साहब 10:15 हो गया है, ताबिश बाबू 15 मिनट का समय हमारे साथ और स्पेंड कीजिए, और इसके साथ हम आपके साथ बोलेंगे कि हाँ भाई अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ हमको अगले 15 मिनट तक मिलेगा। आइए चलते हैं साहित्य की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में, और एक अनुत्तरित प्रश्न की खोज में प्रश्न किया गया है, और अगर आपके पास कोई उत्तर होगा इस प्रश्न का तो ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप एनालिसिस करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलेगा। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
1: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखें।

0: जी हाँ, दर्द आंखों से क्यों निकल जाए, पत्थर बना लिया। एक मुझे पंक्ति आ जाती है कि सुना है कि यहां पत्थरों को पूजते हैं लोग, इस वास्ते इस दिल को पत्थर बना लिया। तो रोने नहीं दिया, क्या बात है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने दिल का गम अपने दिल में ही रख लें। जी हाँ, शुभ संध्या। अरे क्या बात है भाई शिल्पी जी, चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? और कल तो बुधवार है भाई, प्रतीक्षा रहेगी आप सभी की कल। और सर जी, यही वाक्य सुनने के लिए आप लोग गुड नाइट कहते हैं, मतलब कौन सा वाक्य समझ नहीं पाए हम। और जी हाँ, नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से, कल इनको भी हम देखेंगे भाई, आपके सुनेंगे, मतलब नेहा जी को आदाब करते हैं आपको, और सलामत रखे अल्लाह आपको। वाह वाह सर जी, आपने तो मेरी आत्मा खुश कर दी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पांडे एग्रीकल्चरल भी लिखते हैं प्यारी सी गज़ल, बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, अब आते हैं अहमद फराज की तरफ। उन्होंने लिखा कि जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके। जब आपकी याद आई तो रोए बहुत। जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके, सख्त तारीक है दिल की दुनिया। मतलब तारीक मतलब अंधेरा, सख्त तारीक है दिल की दुनिया, ऐसे आलम में अगर तू चमके। हमने देखा सरे बाजार वफा, हमने देखा सरे बाजार वफा, कभी मोती कभी आंसू चमके, आंख मजबूरे तमाशा है फराज। आंख देखना चाहती है तमाशा, आंख मजबूरे तमाशा है फराज, एक सूरत है कि हर सू चमके। सू मतलब होता है चारों ओर। आपने वो गीत सुना होगा, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, वही चीज यहाँ पर है। आंख मजबूरे तमाशा है फराज, एक सूरत है कि हर सू चमके। उसके अलावा मुझको कुछ दिखाई नहीं देता, और इंसान चाहता भी यही है। जब आप कहीं से रूट कर जा रहे होते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि कोई वसीम बदील साहब की पंक्तियां हैं कि मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मना कर मुझको ले जाए। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल कालीन प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, अपने खजाने को रखिएगा तैयार, और अगर आसमान वाले ने चाहा तो कल हम यहीं मिलेंगे ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहारी गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और चलते चलते आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी झलक। अपनी कंजूसी की आदत पर अब अमन को गुस्सा आने लगा था। जब कंपनी ने उसे रिजर्व्ड कोच का खर्चा दिया था तो वो नाहक ही अनरिजर्व्ड कोच में जाकर बैठ गया था। और पिसो मक्खी चूस, खुद को कोसते हुए अमन ने एक नजर पूरे डिब्बे पर डाली। एक से बढ़कर एक अजीब किस्म के लोग बैठे हुए थे, ना बैठने की तमीज ना खाने पीने की। सामने बैठा धोती वाला आदमी आधे घंटे से चबर चबर की तेज आवाज करते हुए चने खाए जा रहा था। खाए तो ठीक, लेकिन खाने का ये भी कोई ढंग हुआ? गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि उठकर दो चार तमाचे लगा दे। डिब्बा अनरिजर्व था, हर स्टेशन पर मुसाफिर भी दर्जे के हिसाब से ही चढ़ते उतरते। तकरीबन दो घंटे से कोई भली सूरत नजर नहीं आई थी। कुछ नहीं तो एक आध जनाना शक्ल ही दिख जाए। बीड़ी पर बीड़ी फूकते इन अखड़ मर्दों की शक्लें देख देख कर तो अमन का मन ऐसा होने लगा था जैसे अगले स्टेशन पर उतरकर रिजर्व्ड कोच में जाके चढ़ जाए। जाना भी उसे बहुत दूर था, लंबा सफर था। रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। चाय, समोसे और ठंडा वगैरह की तेज आवाजों से किसी तरह अपना ध्यान हटाते हुए अमन नजरें अपने नॉवल पर गड़ाए हुए था। अचानक परफ्यूम की भीनी खुशबू उसके नाक से टकराई। चौंकना लाजमी था। नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो रेशमी बुर्का पहने हुए एक औरत उसी की तरफ चली आ रही थी। वो सीधे आई और धम्म से अमन के पास पड़ी खाली जगह पर बैठ गई। इत्र की खुशबू से आसपास का माहौल सराबोर हो उठा। उसने हाथ के बैग को अपने पैरों पर रखा और दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए उसे पकड़ लिया। ना जाने क्यों उसका आना अमन को अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगता? उस बदबूदार बदसूरत लोगों के डिब्बे में रेशमी कपड़े पहने, इत्र लगाए और उस पर कोई औरत उसके पास जो आकर बैठ गई थी। गाड़ी चल चुकी थी। अब अमन का मन उपन्यास पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे बंद भी नहीं कर सकता था। उसकी बाईं तरफ वो बुरके वाली औरत बैठी थी, दाईं ओर खिड़की थी। पढ़ना बंद करने के बाद यही चारा रहता कि खिड़की के बाहर का नजारा देखता रहे। बाईं तरफ चेहरा घुमाता तो उस बुरके वाली पर अच्छा असर नहीं पड़ता।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है झलक। अब तक आपने सुना अमन अपनी कंजूसी के चलते कंपनी से रिजर्व्ड कोच के पैसे मिलने के बावजूद अनरिजर्व्ड कोच में सफर कर रहा था और वहां का माहौल देख देख कर खुद पर ही गुस्सा कर रहा था। तभी उसका गुस्सा अचानक से शांत हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास इत्र की महक से सरा बोर बुरके में मुंह छुपाए एक मोहतरमा जो आकर बैठ गई थी। अब आगे क्या पता वो कुछ और ही सोचने लगे। चेहरे पर गिरे पर्दे की जाली से कहीं उसकी तिरछी नजरों ने मेरे चेहरे को उसकी ओर ताकते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी? यही कि बदमाश है, मेरी सूरत देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखने में मैं कोई बदमाश थोड़े ही लगता हूँ। बदमाश लगता तो वो मेरे पास क्यों बैठती? और जगह भी तो खाली थी। पन्ने पर आंखें गड़ाए अमन ये सब सोचे जा रहा था। लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? हिम्मत करके उसने उपन्यास बंद किया और उसे बैग के हवाले कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर देखते हुए अमन इस ताक में था कि किसी तरह एक बार उस ओर के हालात का जायजा ले ले जहां वो औरत बैठी थी। 5 मिनट तक यूं ही बाहर देखने के बाद अमन ने तेजी से अपना चेहरा बाई तरफ घुमाया और कुछ इस तरह का स्वांग करने लगा जैसे वो उसे नहीं बल्कि डिब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों को देख रहा है। अचानक अमन की नजरें बैग थामे उस औरत की हथेलियों पर पड़ी। पल भर को वो ठगा सा रह गया। गोरी गोरी नरम मुलायम हथेलियां और उस पर सोने की अंगूठी, कुल मिलाकर नजारा देखने लायक और आंखों को अच्छा लगने वाला था। जब उसकी हथेलियां ये गजब ढा रही थीं, तो शक्ल सूरत के लिहाज से वो 2 मिनट तक उसकी हथेलियों पर टकटकी लगाए जाने क्या सोचता रहा। उसके बाद अचानक अमन के सोचने की कड़ी तब टूटी जब उस औरत ने अपना हाथ साथ लाए बैग में डाला। अमन ने झटपट अपनी नजरें खिड़की की तरफ फेर ली। उसे ऐसा लगा कि शायद उसके देखते रहने के चलते ही उसने अपना हाथ बैग में डालकर उसका ध्यान कहीं और बांटने की कोशिश की थी। अमन को अपने आप पर थोड़ा गुस्सा भी आया। क्यों वो उसकी हथेलियों को एकटक निहार रहा था? सचमुच बुरा लगा होगा उसे। कहीं ये तो नहीं सोच लिया उसने कि मेरी नजर उसकी सोने की अंगूठी पर है? नहीं नहीं, मैं भी अजीब हूँ, इतनी देर से न जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा हूँ। हो सकता है उसने मेरी हरकतों पर गौर ही ना किया हो। लेकिन उसके गोरे रंग और कोमल हथेलियों की याद ना चाहते हुए भी बार बार दिल पर बिजली गिरा रही थी। ये सोचकर भी अमन का मन खुश हो रहा था कि वो सुंदरी जरूर एक ना एक बार पर्दा उठाएगी और उसका चांद सा चेहरा देखने को मिल ही जाएगा।
1: जहां मौत जिंदगी पर हंसती है,
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे?
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है झलक। अब तक आपने सुना, अमन अपनी कंपनी के काम से कहीं जा रहा था और कंपनी ने उसे रिजर्व्ड कोच में ट्रैवल करने के लिए फुल अलाउंस दिया था, लेकिन कंजूस राम अनरिजर्व्ड कोच में सफर कर रहे थे और वहां के माहौल से बैठे बैठे चिढ़ रहे थे। तभी उनकी चिढ़ शांति में बदल गई क्योंकि उनके पास एक बुर्के वाली आके बैठ गई। अब शुरू हुआ इंतजार कि कब बुर्का उठे और मोहतरमा की एक झलक मिले। अब आगे, उस औरत के आने से पहले इस कोच में सफर करने को अमन कोस रहा था। अब वही सफर उसे अपार खुशी का एहसास करा रहा था। अमन फिर उसे देखने का मौका ढूंढने लगा। अब की बार उसने डिब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों की ओर नजर दौड़ाई। देखते ही वो चौंक गया। तकरीबन हर आदमी की निगाह उस बुरके वाली की तरफ थी। तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखा तो वो किताब पढ़ रही थी। यकीनन लोगों की घूरती नजरों से बचने के लिए उसने किताब खोली होगी। अब आदमी तो आदमी है, दूसरों की गलतियों को ढूंढने में अक्सर अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता। अमन भी तो उस बुरके वाली का चेहरा देखने की फिराक में था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसके चेहरे से अमन धीरे से पर्दा उठाकर कहेगा, वाह क्या खूबसूरती पाई है। जवाब में वो सिर झुकाकर शर्माते हुए कहेगी, जी तारीफ के लिए शुक्रिया। उसी अंदाज में अमन का सिर भी नीचे झुका तो आंखें चौंधिया गईं। क्या बेजोड़ रेशमी जूतियां पहनी थी उसने। चिलचिल करता बुरका, चमकती अंगूठी, कढ़ाईदार जूतियां पहने उसकी मनमोहक वेशभूषा देखकर चेहरे की खूबसूरती के बारे में अमन की सोच और बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसका चेहरा देखे तो कैसे, कमबख्त पर्दा भी तो नहीं हटाती। अच्छा है नहीं हटाती, हटा दे तो शायद कयामत आ जाए। क्या पता दो चार कश खाकर गिर पड़े। इधर उधर की बातें सोचने का अमन का सिलसिला टूटा तो देखा गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी। प्यास लगने के बावजूद वो अपनी जगह से नहीं उठा। क्या पता इधर वो उठे उधर कोई और आकर इस अनमोल जगह पर कब्जा कर ले जाए। क्या आप ये पानी की बोतल भर लाएंगे, उस बुरके वाली ने अमन से कहा। आवाज क्या थी, मानो शक्कर घोल रखी हो। अमन के मना करने का सवाल ही नहीं था। अभी लाया, आप जगह का ध्यान रखिएगा, कहते हुए अमन उठ खड़ा हुआ। चिंता मत करिए, ज्यादा हुआ तो कह दूंगी कि आप मेरे साथ हैं, उसने सलीके से कहा। मेरे साथ हैं सुनकर मन ही मन अमन इतना खुश हुआ कि होठों पर बरबस गीत आ गया और बोतल लेकर डिब्बे से नीचे उतर गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है झलक। अब तक आपने सुना ट्रेन के सफर के दौरान अमन के बगल में एक बुरके वाली आकर बैठ गई और अमन जी का सारा ध्यान इस बात पर कि कब वो बुरका हटे और कब एक झलक मिले। बातों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्होंने अमन से पानी भरकर लाने को कहा। अब आगे पानी लेने जाने से लेकर आने तक उसकी मीठी आवाज कानों में रस घोलती रही। ये लीजिए, भरी बोतल देते हुए अमन ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने अमन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पर्दा नहीं हटाया। अमन को बड़ा गुस्सा आया। कुछ कहना है तो कम से कम पर्दा तो हटा देती, कौन सी नजर लग रही थी। गाड़ी चल पड़ी थी, वो औरत फिर से किताब पढ़ने में मगन हो गई। अमन उससे बात करने का जुगाड़ बैठाने की फिराक में था। कैसे शुरुआत करूं, ये कहूं कि किस लेखक का उपन्यास है? नहीं, कुछ इस तरह से कि आपको उपन्यास पढ़ने का शौक है? नहीं, मेरे पूछने पर उसे अच्छा नहीं लगा तो? या वो यही कह दे कि आपको इससे क्या, अपना काम कीजिए। लेकिन पिछले स्टेशन पर जब पानी मंगाया था तब तो बड़े अपनेपन से बोली थी। इसी उधेड़ बुन में अमन उंगलियां चटकाने और बार बार दांतों से नाखून काटने लगा। हिम्मत करके अमन बोलने ही वाला था कि उसकी रसभरी आवाज कानों से टकराई। आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है क्या? एकदम से पूछे जाने के चलते अमन से जवाब देते नहीं बना। हाँ, है ना, कहते हुए बैग से उसने उपन्यास निकाल लिया। पूरा पढ़ चुके हो? तभी अंदर रखे हुए थे? कुछ सवालिया लहजे में उसने कहा। अमन ने कहा, बस यूं ही, अच्छा नहीं था। लाइए दिखाइए तो, कहते हुए उसने बेझिझक उपन्यास अमन के हाथों से ले लिया। इस दौरान उसकी नाजुक उंगलियां अमन की हथेली से छू गईं। एक पल को तो अमन को जैसे जन्नत का एहसास हो गया। पन्ने पलटते हुए उस भुरके वाली ने कहा, आपको दिक्कत ना हो तो मैं ये उपन्यास पढ़ लूं? अमन ने कहा, जरूर पढ़िए, वैसे भी अभी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि वैसे कोई खास नहीं है। अमन नहीं चाहता था कि बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो उसे उपन्यास पढ़ने में डूब जाने के चलते खत्म हो जाए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है झलक। अब तक आपने सुना, ट्रेन के एक सफर के दौरान अमन के बगल में एक बुरके वाली आकर बैठी। उसके हाथों की खूबसूरती,

हाँ जी जी, कहता हुआ अमन खड़ा हुआ। तो वो बोली, कहाँ जा रहे हैं? अमन बोला, रसमलाई लेने। दोस्त ने कहा था उधर से निकलो तो एक आध किलो लेते आना। तो वो मोहतरमा बोली, अच्छा ऐसा करिए, किलो भर मेरे लिए भी बंधवाते लाइएगा। ये कहकर उसने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला। अमन बोला, चेंज दे दीजिए। तो वो बोली, अभी तो चेंज नहीं है। खैर आप दे दीजिए, अभी किसी से चेंज करवा कर आपको देती हूँ। अमन मिठाई लेकर आ गया। तो वो बोली, कितने हुए? अमन ने तुरंत कहा, 400। जी छुट्टी कराते ही देती हूँ, वो बोली। तो अमन ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, दे दीजिएगा। इतने में नोट गिनते सामने बैठे सज्जन पर अमन की निगाह पड़ी तो बुरके वाली से रसमलाई के पैसे लेने का ख्याल दिमाग में आया। अरे मैं तो भूल ही गया, अभी मांग लूं, 500 का नोट तोड़वाने के लिए पर्दा जरूर उठाएगी और मैं चेहरा भी देख लूंगा। उसका छिपा चेहरा देखने की अमन की इच्छा इतनी जोर पकड़ती जा रही थी कि अमन को हर बात में अब यही लग रहा था कि कैसे उसका चेहरा सामने आ जाए। मांग तो लें, लेकिन उसे ठीक नहीं लगेगा, सोचेगी बड़ा अजीब आदमी है, एक आध घंटे के लिए भी धीरज नहीं रख सकता, पैसे लेकर भागे थोड़ी ही जा रही थी। ये सब सोच के अमन ने पैसे नहीं मांगे और चुपचाप बैठा। किसी पल उस बुरके के हटने का और चेहरे के दीदार का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी की रफ्तार धीमी होते देख बुरके वाली ने खिड़की से सिर बाहर निकाल कर देखा और फिर जल्दी जल्दी अपना बैग जमाने लगी। अमन को उसका स्टेशन आने का शक हुआ, पूछा तो उसने सामान समेटते हुए जवाब दिया, मैं यहीं उतरूंगी। तो क्या मैं इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा? मन में निराशा सी छा गई। ची की तेज आवाज के साथ ब्रेक लगे और गाड़ी सुल्तानपुर स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। आइए मैं आपको छोड़ दूं। उसके उठने के साथ ही अमन भी खड़ा हो गया। हालांकि उसके पीछे अमन का लालच था कि हो सकता है इस बार चेहरे से पर्दा हटा दे। अमन आगे आगे उसका सामान लिए और वो अमन के पीछे पीछे चल दी। अब की बार अमन ने पक्का इरादा कर लिया था कि चेहरा देखने की जिस इच्छा को वो घंटों से सजाए था उसे यूं ही खाक नहीं होने देगा। ज्यों ही वो दरवाजे के पास आई, हिम्मत बटोर कर शायराना अंदाज में अमन ने कहा, आप बुरा ना माने तो आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार करके मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगा। एक पल के इंतजार के बाद झटके से उसने पर्दा ऊपर खींच लिया। चेहरा देखकर अमन हक्का बक्का रह गया, हद से बदसूरत, दाग वाला, कंजी आंखों वाला चेहरा उसके सामने था। अलविदा की औपचारिकता निभाकर उसने पर्दा गिराया और स्टेशन के मेन गेट की ओर बढ़ गई। डिब्बे के दरवाजे पर बदहवास सा खड़ा अमन उसे जाते हुए देखता रहा। गाड़ी चलने के बाद अमन लड़खड़ाते कदमों से भीतर आया तो कुछ याद आते ही दिल पर बड़ा सा झटका महसूस हुआ। उसके चांद सरीखे खूबसूरत चेहरे के ख्यालों में मिठाई के 400 रुपए और अधूरे पड़े उपन्यास के 100 रुपयों की बलि चढ़ गई थी। अमन निढाल होकर अपनी सीट पर आ गिरा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी झलक। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोहर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला फिल्म।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रही। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश
0: और मैं हूँ अर्जिक गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।